ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। मुनीश जौली ये कार्यक्रम लेकर आएंगे। इसके बाद श्रोता सुनेंगे 7:05 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR निखिल कुमार के साथ।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुनेंगे मुनीश चौली के साथ और इसके बाद होगा दिल के तराने गाने नए पुराने 9 बजे। निहारिका आपके साथ होंगी 10:05 पर और आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। हमारे श्रोता सुनेंगे 11 बजे बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता के साथ और इसके बाद होगा वेस्टर्न म्यूजिक 12:05 पर और इसके बाद श्रोता सुनेंगे 1:05 पर रेनबो हेल्पलाइन बबीता त्रिपाठी के साथ। प्रियंका लेकर आएंगी 2 बजे कार्यक्रम आशियाना। श्रोता सुनेंगे 3 बजे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सबीहा कमाल नकवी के साथ में और प्रियंका के साथ आप सुनेंगे अल्फा जैन कार्यक्रम और सिटी लाइट होगा 5:05 पर।

शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स मुक्ति सैनी के साथ, और इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक होगा 7:05 पर, और 9 आप सुनेंगे आपकी याद आती रही प्रज्ञा के साथ, 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम, और 11:05 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे रंगे महफिल, और साथी होंगी प्रज्ञा। तो श्रोताओं, ये थी नजर हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह का 6 जा रहा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग

मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात भारत की इस प्यारी सी सुबह का नमस्कार स्वीकार करें। हम आकाशवाणी रेनबो हैं। यूं तो हम दिल्ली में बैठे हैं और जानते हैं कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हमें सुना जा रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों के अलावा भारत के कई राज्यों में, भारत के कोने कोने में हमें सुना जा रहा है आकाशवाणी के माध्यम से। और देश की सरहदों के पार फिजी आइलैंड से लेकर ब्राजील तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, अफ्रीका से लेकर एशिया के सभी देशों में न्यूज ऑन एआईआर इस ऐप के माध्यम से आप हमें सुन पा रहे हैं। भारत में सुबह हो चुकी है। हम भारतवासियों का नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात में हम आपका दिन शुभ बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर रोज सुबह हिंदी समाचारों के बाद 6:05 पे 7 बजे तक आपके बीच आ जाते हैं इस प्रोग्राम को लेकर सुप्रभात। और अपने दिल की तमन्नाओं से, अपनी दिल की दुआओं से आपका दिन सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ हैं ना? सुप्रभात में हम कहानी के माध्यम से आपको जिंदगी की कुछ विशेष बातें, उनसे रूबरू कराते हैं, परिचित कराते हैं। वो बातें जो आप जानते हैं शायद हमें आज पता लगी हूं, वो बातें शायद हम सदियों से जानते हैं, सुनते आ रहे हैं इस जहान

इस देश में हर जगह। कोशिश यही है कि हमारी ये पृथ्वी और बेहतर कैसे बनाई जा सके। तो आज हम फिर से आधुनिक काल के गुरु के पास चल रहे हैं। ये आधुनिक काल के गुरु हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और इनके शिष्यों की एक टोली है, आधुनिक काल के मॉडर्न टाइम्स के स्टूडेंट्स हैं। और आज इनके सामने एक बार फिर से इनकी एक शिष्या सृष्टि इनके पास आ चुकी हैं, और वो मिलकर मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी से पूछती हैं कि गुरुजी, हमने सुना है कि परमात्मा जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, इस बात में कितना सत्य है? और क्या वाकई में ऐसा होता है कि परमात्मा जो करते हैं बहुत अच्छा ही करते हैं? आधुनिक काल के गुरु की एक खास बात है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते हुए सृष्टि से वो कहते हैं कि अगर तुम कहो तो एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए मैं तुम्हें ये बात बताऊं। सृष्टि मुस्कुराकर हां कहती है और आधुनिक काल के गुरु शुरू हो जाते हैं एक कथा, एक कहानी सुनाने के लिए। आधुनिक काल के गुरु सृष्टि से कहते हैं, सुनो सृष्टि, मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि तीन छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री के साथ चिपकी हुई थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, चीख रही थी, पुकार रही थी मां को, और एक रोते रोते तो सो ही गई थी। उसके आंसू उसके आंखों के पास सूख गए थे। तीन छोटी बच्चियां और स्त्री का निधन हो गया और कोई देखने वाला नहीं। बच्चों के पिता पहले ही परलोक से धार चुके थे और परिवार में कोई भी नहीं। इन तीन छोटी बच्चियों का अब क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वो खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि देव, मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। तीन छोटी छोटी बच्चियां, दूध पीती बच्चियां, एक अभी भी बिलक बिलक कर रो रही है, एक रोते रोते सो गई, दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा उन बच्चियों की मां को यहां ना ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई देखने वाला नहीं है इनको। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, ये तो पाप कर दिया तूने, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ये दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। सजा ये है कि तू पृथ्वी पर चले जाए, और जब तक तू तीन बार हंस नहीं लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक तू वापस यहां नहीं आ पाएगा। वो दूत थोड़ा घबराया और मृत्यु के देवता ने एक बार फिर से कहा, इसे थोड़ा समझना, तीन बार हंसना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है, जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वो राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया और एक कारीगर के घर सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, और उसके घर उसे भेज दिया गया। ये कारीगर बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे कर रहा था। जब वो शहर जा रहा था, उसने राह के किनारे एक आदमी को देखा जो बगैर कपड़े के था और ठंड से ठिठुर रहा था। वो आदमी यही देवदूत था जिसे पृथ्वी पर भेजा गया था मृत्यु के देवता के द्वारा। आगे क्या होता है

ये हम जानेंगे बस कुछ ही देर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात। आज इस कहानी में ये पूछा गया कि क्या परमात्मा जो करते हैं वो हमेशा सही होता है। जवाब थोड़ी देर।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप, और आज एक प्रेरणादायक कहानी आपको सुना रहे हैं, जहां एक आधुनिक काल के गुरु हैं अपने शिष्य सृष्टि को एक कहानी सुना रहे हैं। सृष्टि का सवाल है कि क्या परमात्मा जो करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, और

गुरु, आधुनिक काल के गुरु सृष्टि को कहानी सुनाते सुनाते एक उस सिचुएशन में ले जाते हैं, परिस्थिति में ले जाते हैं, जहां पर मृत्यु के देवता अपने दूत को भेजते हैं कि एक महिला की जान जो है वो जाने वाली है, इसलिए उस महिला को वापस लाना है। जब देवदूत वहां जाते हैं तो तीन छोटी छोटी बच्चों को रोते हुए देखते हैं। उनका मन नहीं करता कि प्राण जो छोड़ने वाली महिला है उसे वापस अपने मृत्यु के देवता के पास लिया जाए, इसलिए वो वापस आते हैं और कहते हैं कि आपको पता नहीं कि वहां परिस्थिति क्या थी, इसलिए मैं उस महिला को ला ना सका। मृत्यु के देवता थोड़ा सा गंभीर रूप में आके दंड देने की बात करते हैं और देवदूत को कहते हैं कि दंड के लिए तुम्हें फिर पृथ्वी पे जाना पड़ेगा और तीन बार तुम्हें अपनी मूर्खता पर हंसना पड़ेगा, तभी तुम वापस यहां आ पाओगे। देवदूत नीचे जाते हैं और जैसे ही पृथ्वी पर आकर एक स्थान पर होते हैं तो वो सर्दी में ठठोर रहे होते हैं, बदन पे कपड़े कम होते हैं इसलिए ठंड बहुत लग रही होती है, और वहीं पे एक कारीगर शहर की तरफ जा रहा होता है जहां वो उस देवदूत को देखते हैं और फिर उनसे आगे कुछ बातचीत करते हैं। आगे सुनते हैं। तो ये कारीगर सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहे थे। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वो शहर की तरफ गए तो रास्ते में किनारे में एक आदमी को पड़े हुए देखा जो ठिठुर रहा था, कपड़े नहीं थे और ये वही देवदूत थे। तो इस कारीगर को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए और उस आदमी को कुछ खाने पीने को भी दिया अपने पैसों से खरीद कर। वो कहीं घर बार नहीं था उसका, कहीं रह नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप क्यों ना मेरे साथ आ जाओ और मेरे घर पे रहो। ये कारीगर जानता था कि घर में उसकी जो पत्नी है वो ये जानकर बहुत नाराज होगी और निश्चित बात है क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने वो शहर की तरफ जा रहा था और पैसे जो थे वो खर्च हो गए। तो उस कारीगर ने देवदूत से कहा, उस कारीगर को मालूम नहीं था कि ये देवदूत हैं, पर उनसे कहा कि अगर मेरी पत्नी नाराज हो जाए चिल्लाए तो आप परेशान मत होइएगा, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो उस देवदूत को लेकर ये कारीगर घर आता है और इस कारीगर को पता नहीं कि एक देवदूत घर में आ रहे हैं, ना उसकी पत्नी को पता था। जैसे ही देवदूत इस कारीगर के घर में पहुंचते हैं, निश्चित बात थी कि उनकी पत्नी एकदम से बौखला उठी और गुस्से में आकर उनको कुछ कहने लगी। वो चीखने चिल्लाने लगी कि बच्चों के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो तुमने खर्च दिए। देवदूत वहां हंस पड़ते हैं क्योंकि कारीगर ने कहा था कि आप परेशान मत होना अगर मेरी पत्नी कुछ कहे। कारीगर ने देवदूत से पूछा, हंसते हो, बात क्या है? तो देवदूत ने कहा, जब मैं तीन बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसे क्योंकि उन्होंने देखा कि कारीगर की पत्नी को पता ही नहीं कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी क्योंकि वो देवदूत हैं। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है, पत्नी को इतना ही दिख पा रहा था कि कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं आ पाए। जो खो गया वो देख पा रही थी, जो मिला है उसका उसे अंदाजा भी नहीं था। घर में देवदूत आ गए थे जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा, उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही थी और क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वो देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सारा काम सीखा और साथ ही साथ उस कारीगर के घर में आके उस कारीगर के हाथ बटाने लगा। कारीगर जानता ही नहीं था कि जिस कारीगरी में वो माहिर हासिल कर चुका था, देवदूत उससे भी बड़ा कारीगर था। जब कारीगरी करने लगा तो ऐसा सामान बनने लगा कि बस देवदूत का किया हुआ काम सबको पसंद आने लगा। कारीगर ने कहा कि क्यों ना हम

एक ऐसी चीज बनाएं जो दक्षिण की तरफ गांव है वहां पर बेची जाए। देवदूत ने कहा, दक्षिण की तरफ नहीं, अगर तुम उत्तर की तरफ जाओगे तो ये कारीगरी जो मैंने की है वहां पे तुम्हें खरीदार मिलेंगे। कारीगर इस बात को बिल्कुल ना समझ पाया क्योंकि इतने सालों में उसे उत्तर दिशा में कभी कोई काम ही नहीं मिला, नुकसान ही उठाना पड़ा। लेकिन न जाने क्यों वो तैयार हो गया। कारीगर ने कहा, तुम कह रहे हो तो मैं चले जाता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे नुकसान होगा, पर फिर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करने का मन कर रहा है। लेकिन उत्तर की दिशा में जंगल भी आता है और वहां पर जानवर भी हैं। देवदूत ने कहा, जानवर बगैर किसी भय के किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जंगलों के पार ही एक गांव बसा है जहां पर जानवरों के डर के मारे कोई भी कारीगर पहुंचता नहीं। तुम अगर वहां जाओगे तो जाके तुम्हारा बहुत भला होगा। कारीगर अपना सामान लेके आगे बढ़ता है। रास्ते में जंगल आता है। डर डर के एक एक कदम रखना, फूंक फूंक पर पांव रखना और फिर आगे बढ़ना। जैसे ही कारीगर उस गांव की तरफ बढ़ते हुए पहुंचता है, गांव के लोग भाग कर उसका पास आते हैं और आकर एक कारीगरी देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए हों तुम ले जाओ, ऐसी कारीगरी का तो हम इंतजार कर रहे थे। हमें मालूम था कि एक विशेष कारीगर इधर जरूर आएगा और आकर हमारे को ऐसा सामान देगा जो आज तक हमने देखा नहीं होगा। भरपूर पैसे लेकर वो कारीगर घर वापस आता है। आते ही देवदूत उस पर हंसते हैं क्योंकि कारीगर को मालूम ही नहीं था कि जिस दिशा में जाने के लिए वो सबसे ज्यादा भयभीत हो रहा था, वहीं पर उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। देवदूत दूसरी बार हंसते हैं। कारीगर फिर पूछते हैं, फिर क्यों हंसे? और फिर देवदूत ने कहा, जब तीसरी बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। इसी के बाद कारीगर को हुआ कि मैं एक प्यारा सा घर बनाता हूं इस कच्चे घर की जगह एक प्यारा सा घर, क्योंकि पैसे आ गए थे, पत्नी भी बहुत खुश थी, और एक विशेष लेप लगाने के लिए कारीगर को देवदूत कहते हैं कि अगर तुम ये लेप अपने घर पे लगाओगे तो घर और मजबूत हो जाएगा। कारीगर और उसकी पत्नी उस खास मिट्टी के लेप को लगाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रहे थे, लेकिन देवदूत ने फिर कुछ ऐसा कहा जिससे कारीगर और उसकी पत्नी वो लेप लगाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद क्या हुआ? क्या उनका घर बहुत प्यारा सा बना या तूफान आते ही घर ढह गया? ये जानेंगे थोड़ी देर में।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात। तो एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब एक शिष्या ने अपने गुरु से सवाल पूछा कि परमात्मा जो भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, क्या ये बात सही है? तो आधुनिक काल के गुरु हैं जो मुस्कुराते रहते हैं, एक कहानी सुना रहे थे जहां पे देवदूत को एक मृत्यु महिला को वापस अपने मृत्यु के देवता के पास ले जाना था। तीन बच्चियां बिलखती हुई रो रही थी। देवदूत का मन नहीं किया कि उस औरत के प्राण लेकर मृत्यु के देवता के पास वापस जाए। मृत्यु के देवता दंड रूप में देवदूत को पृथ्वी में भेज देते हैं और कहते हैं, तुम वापस तभी आओगे जब मूर्खता पर तीन बार तुम हंस पड़ोगे। नीचे जाते हैं, दो बार हंस पड़ते हैं, कारीगर और उसके परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और जब दो बार हंस पड़ते हैं तो कारीगर फिर पूछते हैं उनसे कि आप हंसे क्यों? तो देवदूत ने कहा, मैंने प्रण लिया है कि तीन बार जब हंस लूंगा तब तुम्हें पूरा राज बताऊंगा। जानते हैं कि दो बार हंसने के बाद देवदूत ने क्या कहा?

हंसे इसलिए क्योंकि देवदूत को मालूम था कि भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और इंसान तो अतीत के आधार पर निर्णय ले लेता है। भविष्य का हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम आकांक्षाएं रखते हैं जो कि व्यर्थ हैं, हम आशाएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती, हम मांगते हैं वो जो कभी नहीं घट सकता क्योंकि कुछ और ही घटना तय है, हमारे और हमसे बिना पूछे हमारे जीवन में हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए कि हम सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें, लेकिन कहानी पर फिर वापस लौटते हैं। और जब कारीगर अपना घर नया बनाने की सोचता है, एक महल की तरह, देवदूत जो उसके घर पे हैं, जिनकी वजह से हजारों खुशियां आ गई हैं, ज्ञात ही नहीं था कारीगर को कि एक महान देवदूत उसके घर में आ गया। उसके चरण पर पड़ते ही चीजें कैसे बदल रही हैं।

घर बनाने की बात आई और मिट्टी का ये खास मिट्टी का लेप करने के लिए देवदूत ने एक सुझाव दिया। कारीगर और उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, ये मिट्टी तो थोड़ी महंगी है, सस्ते में ही गुजारा हो जाएगा। देवदूत ने उनको आश्वासन दिया कि अगर आप इस मिट्टी का लेप लगाएंगे तो आपका घर वैसा बन जाएगा जैसे किसी और का ना बना हो। न जाने क्यों कारीगर को उस देवदूत पर विश्वास करने का मन कर गया और उसने देवदूत के कहने पर उस मिट्टी को खरीदने की ठान ली। वो मिट्टी उनके गांव में नहीं बल्कि कोसों दूर पहाड़ों के पास एक व्यक्ति बेचा करता था जो बहुत ही अक्खड़ मिजाज का था। कारीगर को डर लग रहा था कि न जाने वो मिट्टी किस भाव में देगा और देगा भी कि नहीं। देवदूत उसे आश्वासन देते हैं कि उस व्यक्ति के पास तुम जब जाओगे तो सिर्फ मुस्कुराना और वो जितना भी पैसा मांगे वो दे देना। कारीगर ऐसा ही करता है। जब वो उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसे मिट्टी मिलेगी, वो जाते ही सबसे पहले मुस्कुराता है। मिट्टी बेचने वाला कभी मुस्कुराया नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग उसके पास आए उससे तू तड़ाक करके बातचीत किया करते थे और जब कारीगर उसके पास जाते ही बगैर कुछ कहे मुस्कुरा दिया तो उस व्यक्ति के मन में थोड़ी सी नरमी आई। उसने पूछा, क्या चाहिए? कारीगर को देवदूत ने समझा कर भेजा था कि विनम्रता के साथ ही बात करना, इसलिए कारीगर ने कहा, आप तो इतने प्रख्यात हैं कि आपकी चर्चाएं तो कोसों मील तक हो रही है, दूर दूर तक हो रही है, और मैं आपके पास अपने घर के लिए वो मिट्टी लेने के लिए आया हूं जिस मिट्टी से मेरा घर बहुत मजबूत बन जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारा घर मजबूत बनेगा कि नहीं, लेकिन मुझे एक भाव चाहिए, अगर वो भाव तुम मुझे दो तो ये मिट्टी ले जा सकते हो। कारीगर ने कहा, आप जो भी कहेंगे महाशय, मुझे मंजूर है। उस व्यक्ति को इतनी इज्जत, इतना मान कभी मिला नहीं था। जिस भाव पे वो लोगों को माल दिया करता था, उसके लगभग आधे भाव में ही उसने वो मिट्टी उस कारीगर को दे दी। उसकी विनम्रता पे वो मोहित हो गया। वो भी प्यार का प्यासा था, भूखा था, लेकिन तू तड़ाक की भाषा सुनकर उसकी बोली में भी कड़वाहट आ गई थी। वो मिट्टी आधे दाम में लेकर कारीगर अपने घर पहुंचता है। मिट्टी का लेप किया जाता है, घर महल की तरह बन जाता है, बहुत ही मजबूत। कुछ ही दिन के बाद तूफान आता है, बहुत भयंकर तूफान। गांव के लगभग सारे घर ढह जाते हैं सिवाय उस कारीगर के। घर वैसा का वैसा ही चमकता हुआ। कारीगर अपने आप पर नाज करता है कि देखो, हमने वो खास मिट्टी अपने घर पे उसका लेप करवाया, इसलिए हमारा घर बच गया। देवदूत तीसरी बार हंसता है। ये देखते ही कारीगर देवदूत की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं? देवदूत ने कहा कि कभी कभी किसी की मूर्खता पे हंसना अपमान माना जाता है, मैं अपनी मूर्खता पे हंस रहा हूं। ये कहना ही था कि उसी समय एक और घटना घटती है। तीन युवतियां अपनी मां के साथ उस कारीगर के घर आती हैं।

वो युवतियां वही तीन बच्चियां थीं जिनको वो देवदूत मिला था बहुत समय पहले, और उनकी मां के प्राण मृत्यु के देवता के पास ले जाना चाह रहा था। उन लड़कियों के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जो जमींदार साहब की बीवी थी। जमींदार साहब का निधन हो गया था और इन तीन बच्चियों के सहारे उस बूढ़ी औरत ने अपना जीवन काटा। देवदूत उन तीनों लड़कियों को देखकर पहचान गए और कहने लगे, आप यहां, आप कौन हैं? कारीगर भी हैरान था। जमींदार के घर पे भी उस तूफान का असर हुआ था, क्योंकि वो जमींदार की बीवी थी। इसलिए उन तीन बच्चियों के साथ उस कारीगर के घर आई और आके बोला, क्या हम तुम्हारे साथ थोड़े दिन रुक सकते हैं बेटा? कारीगर बहुत खुश हुआ कि जमींदार की पत्नी मेरे घर आ रही हैं शरण मांगने इन तीन बच्चियों के साथ। इतना पैसा होने के बावजूद उनका घर ढह गया था। देवदूत ने उस औरत से पूछा कि ये तीन बच्चियां कौन हैं? तो उस महिला ने कहा, जो जमींदार की पत्नी है, कि बेटा देखो ना, ये मेरी बच्चियां नहीं हैं। इनकी मां का बरसों पहले देहांत हो गया था। बच्चियां बिलक बिलक के रो रही थी। मैं रास्ते से गुजर रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। मैं इन बच्चियों को अपने घर ले आई जब तक मेरे पति जिंदा थे। खूब देखभाल और खूब पाल पोस के इन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। देखो तीनों कितनी सुंदर लग रही हैं। ये मेरे बुढ़ापे के सहारा हैं तीनों। तीनों बच्चियों ने कहा, मां हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उस जमींदार की पत्नी ने कहा, अरे पगली, शादी के लायक हो गई हो और तुम सबको ब्याह के अपने ससुराल तो जाना ही है। लड़कियां बिलक बिलक के रोने लगी, नहीं मां, हम तुम्हें नहीं छोड़ के जाएंगे। देवदूत फिर से हंसते हैं और इस बार हंसे इसलिए क्योंकि अपनी मूर्खता पर उन्हें हंसी आ रही थी। उन्हें याद आ गया कि परमात्मा ही सारे निर्णय लेते हैं इस जहां में। ये जमीन, ये धरती उस परमात्मा की है जिसे हम अपना कहते हैं। हर एक एक पौधा, हर एक वृक्ष, हर एक फूल, हर एक पौधा पत्ती, हर इंसान इस धरती मां का कर्जदार है, क्योंकि ये धरती है परमात्मा की। वो परमात्मा जो आपका और हमारा जीवन तय करते हैं हर लम्हा, हर क्षण। और हम कहते हैं कि हम अपनी तकदीर बनाते हैं। तकदीर बनाने वाले हैं परमात्मा। हर हर महादेव।

शाबाश नाम धर्म के पांगो जो देखे कैनाल के आत्मचरित का।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुप्रभात, सुन रहे थे आप। आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया हो। आप जहां कहीं भी हों, हमारी प्रार्थना, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और यही कामना है कि आपका दिन बहुत शुभ हो। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार होंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा

अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे आकाशवाणी केएफएम रेनबो चैनल पर, और इस चैनल पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग डेलियंस यार, आपके दोस्त आर्यन निखिल के साथ में। और जब हम इतिहास की बात करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में, तो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं हुई हैं जिन्होंने अपनी खास पहचान दर्ज की हुई है। तो आपको बता दें कि आज का ही वो दिन था जब वर्ष 1935 में टोक्यो में रेडियो जापान से हिंदी प्रसारण को शुरू किया गया था। वर्ष 1964 में आज के

ही नया पैसा से नया शब्द हटाकर केवल पैसा किया गया। वर्ष 1992 में आज के दिन ही भारत और इसराइल के बीच में हवाई समझौता हुआ था। और आपको बता दें कि आज का ही दिन था जब वर्ष 2006 में चीन में आदि मानव के पदचिन्ह मिले थे। और आपको बता दें कि आज का ही वो दिन था जब वर्ष 2005 में अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 15वीं बार एक सफल चढ़ाई की थी। और आपको हम ये भी बता दें कि आज का ही दिन था जब वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। और आपको बता दें कि आज का ही दिन था जब 2010 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए बालाकृष्णन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ये दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव भी माना जाता है, जो 1950 से मनाया जा रहा है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था, और इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में किया गया था। और आपको बता दें कि ये जो दिन मनाने की परंपरा, इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता और लोगों का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है। और यही वजह है कि ये दिन बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और आपको बता दें कि आज ही मनाया जा रहा है विश्व दुग्ध दिवस, जिसके बारे में थोड़ी सी बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पर आपसे बातें होंगी और भी। आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: और फिलहाल आइए सुनते हमारी ये खास प्रस्तुति।
7: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। अठारह मई 1988 को दिल्ली से आकाशवाणी के नेशनल चैनल का आगाज हुआ, जिसका उद्देश्य देश के दूरदराज के श्रोताओं को एक साथ मंच पर जोड़ना था। ये एक विशेष रात्रिकालीन सेवा थी जो शाम 6:50 से अगली सुबह 6:10 तक यानी संध्या से प्रभात तक निरंतर प्रसारित होती थी। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रसारित इस चैनल में राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन, शास्त्रीय संगीत, नाटक, खेल और विविध वार्ताएं शामिल थीं। ये पहल आकाशवाणी की 3 स्तरीय प्रसारण व्यवस्था राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। करीब 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद इस नेशनल चैनल को जनवरी 2019 में बंद कर दिया गया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक

0: के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और श्रोताओं को बता दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस, जो प्रत्येक वर्ष पहली जून को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसको जो मनाने का एक उद्देश्य है वो इसलिए है ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक काम किया जा सके और दूध, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जो हमारे स्वस्थ शरीर, मजबूत हड्डियों और बेहतर विकास के लिए आवश्यक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ने वर्ष 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी ताकि दूध और इससे संबंधित जो दुग्ध के उत्पाद हैं उनके पोषण महत्व और डेयरी क्षेत्र में आर्थिक योगदान के प्रति इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। और आपको बता दें कि ये जो दिवस है ये दुग्ध उत्पादकों, डेयरी किसानों और डेयरी उद्योग के योगदान को सम्मान देने का भी काम करता है और साथ ही लोगों को अपने दैनिक जीवन में एक संतुलित आहार के रूप में दूध को किसी भी फॉर्म में शामिल करने के लिए प्रेरित भी करता है। और आपको बता दें कि आज ही मनाया जा रहा है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अवसर है जो माता पिता का सम्मान करने, बच्चों के पालन पोषण और उन्हें बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए समर्पित है। ये दिन बच्चों के विकास, उनकी भलाई, उनके कल्याण के लिए माता पिता के मार्गदर्शन, सहयोग और उनके प्रेम के महत्व पर भी जोर देता है। और आपको बता दें कि ये दिन माता पिता द्वारा अपने परिवार के लिए किए गए समर्पण, उनके बलिदान का भी उत्सव मनाने का अवसर हमें देता है। ये एक ऐसा वार्षिक कार्यक्रम है जो बच्चों की भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में माता पिता की अनिवार्य भूमिका को भी रेखांकित करता है। फिलहाल एक और खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए रेनबो पर एंजॉय कीजिए इसे।

हर्षो, तो अब समय हो चला है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो आपको बता दें कि आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी जी को, जो कि भारतीय राजनीति के एक प्रतिष्ठित नेता और भारत के छठे राष्ट्रपति थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और फिर देश की सेवा की। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद वे आंध्र प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्रियों में से एक थे और राज्य के विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया। वे आंध्र प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार में भी कई विभिन्न पदों पर काम किया। और आपको बता दें कि 1967 में लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 1977 में भारत के छठे राष्ट्रपति बने और देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें निर्विरोध चुना गया। उन्हें अपने सादगीपूर्ण जीवन, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रति वचनबद्धता और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए जाना जाता है।

और शो तो आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं ख्वाजा अहमद अब्बास को, जो हिंदी उर्दू साहित्य, पत्रकारिता और भारतीय सिनेमा की दुनिया में एक बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, पटकथा लेखक, निर्देशक और सामाजिक चिंतक थे, जिन्होंने अपने लेखन और फिल्मों के माध्यम से आम आदमी के संघर्ष, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया था। उन्होंने लंबे समय तक ब्लिट्ज में लास्ट पेज नामक एक लोकप्रिय स्तंभ लिखा, जो अपने निर्भीक और प्रगतिशील सोच के लिए जाना जाता है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने राज कपूर की कई चर्चित फिल्मों जैसे कि आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में पटकथा लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल एक और ट्रैक आपके लिए, इसे सुनिए।

और श्रोता आपको बता दें कि आज जयंती है बलदेव वंशी की, जो कि हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, आलोचक, शोधकर्ता और संत साहित्य के एक गंभीर अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। आज उनकी जयंती, उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता, संत परंपरा और भारतीय सांस्कृतिक चिंतन पर महत्वपूर्ण काम किया था। उनकी प्रमुख कृतियों की हम बात करें तो कहत कबीर कबीर, कबीर की चिंता, पूरा कबीर, दादू जीवन दर्शन, संत कवि दादू, मलुक दास, आधुनिक हिंदी कविता में विचार और धरती हाँप रही जैसी रचनाएं शामिल हैं। वे कविता, आलोचना, जीवनी, शोध और संपादन जैसे अनेक साहित्यिक क्षेत्रों में सक्रिय रहे। संत साहित्य के संरक्षण और उसके अध्ययन के लिए भी उन्हें साहित्य जगत में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे बातें होंगी, आप बने रहें रेनबो पर।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

और श्रोता आपको बता दें कि आज जयंती है नरगिस की, जो भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्रियों में से गिनी जाती हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्म जगत में प्रवेश किया और अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली से दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया था। 1940 से 1950 के दशक में उन्होंने राज कपूर के साथ बरसात, आवारा और श्री 420 जैसी अनेक सफल फिल्मों में काम किया था। उनकी सबसे यादगार फिल्म मदर इंडिया मानी जाती है, जिसमें निभाए गए उनके राधा के किरदार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। आपको बता दें कि उन्हें भारतीय सिनेमा और समाज के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। एक और ट्रैक आपके लिए रेनबो पर। आपको बता दें कि फिलहाल शिवेंद्र स्टूडियो में पहुंच चुके हैं लेके तमाम खेल खबरों को, जो बस थोड़ी देर बाद आपके साथ जुड़ेंगे। आप रहें FM रेनबो पर, हम फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करें। नए सप्ताह का वैसे साथियों आज तो पहला दिन है, स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। स्पोर्ट्स पल्स यानी खेल दुनिया की हर उस धड़कन को आप तक ले जाने की कोशिश का नाम है जिसके बारे में आप जानने और सुनना चाहते हैं। और समय बहुत कम रहता है तो बहुत सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। इनफैक्ट पिछला जो सप्ताह था वो कह सकते हैं थोड़ा सा उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आज सोमवार के दिन हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, सोमवार हफ्ते का पहला दिन है, लेकिन पिछला सप्ताह जो था वो 2-2-2 यानी नंबर 2 के नाम था। टाइटल ऑफ कोर्स लोगों ने जीते लेकिन संयोग है कि 2 उनके साथ जुड़ा रहा। अब आईपीएल की बात कर लीजिए, आईपीएल में दूसरी बार लगातार टाइटल जीता आरसीबी ने। उन्होंने फाइनल में पराजित किया गुजरात टाइटन्स को। यह भी एक संयोग है कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दोनों ही टीमें अपना दूसरा खिताब तलाश रही थीं और दूसरा खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की आरसीबी की टीम ने। चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, हंगरी में बुडापेस्ट में खेला गया यह मुकाबला, जहां पर पेरिस सेंट जर्मैन यानी पीएसजी की टीम सामने थी और उनके सामने थी आर्सेनल की टीम।

0: अरे पेरिस सेंट जर्मेन की टीम ने ISSF वर्ल्ड कप चल रहा था म्यूनिख में जर्मनी में, जहां पर भारतीय टीम भी शिरकत कर रही थी, यहां पर तो दो का जो आंकड़ा था वो भारतीय टीम के साथ लगातार जुड़ा रहा, क्योंकि मेडल टैली में भारत दूसरे पायदान पर रहा। भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते और 2 रजत पदक जीते, यानी 2 गोल्ड 2 सिल्वर, और मेडल टैली में भी वो दूसरे पायदान पर रहे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम, साल का सबसे कठिन ग्रैंड स्लैम जिसे माना जाता है, वो इस समय चल रहा है। और वहां पर भी वैसे तो कार्लोस अल्काराज पहले ही हट गए थे, लेकिन खिताब के जो सबसे तगड़े 2 दावेदार थे पुरुष वर्ग में, यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच, वो दोनों ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और आखिर में बात करते हैं बैडमिंटन की, शायद उसकी बात सबसे पहले करनी चाहिए, लेकिन चूंकि नंबर 2 की जो संख्या है उसको हम रिलेट करने का प्रयास कर रहे थे, तो बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा था, जहां पर भारत के डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिन्हें हम सेट चाई के नाम से भी आज जानते हैं, और जो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हैं, दुनिया में नंबर 1 रह चुके हैं 2 साल से अपना पहला खिताब तलाश रहे थे, और 2 साल का वो इंतजार सिंगापुर ओपन में पूरा हुआ, जहां पर इस जोड़ी ने खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। बहुत ही संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबला रहा, और सिंगापुर ओपन साथियों सुपर 750 टूर्नामेंट है, यानी टूर्नामेंट की कैटेगरीज में अगर हम देखें जो BWF यानी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन परिसंघ द्वारा जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनमें दूसरा सबसे हाईएस्ट डिग्री का टूर्नामेंट है, क्योंकि इसके ऊपर सुपर 1000 के टूर्नामेंट होते हैं। तो सुपर 750 का खिताब जीता, फाइनल में इंडोनेशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी फजार अल्फियान और मोहम्मद फिक्री को 18-21, 21-17, 21-16 से हराया। सात्विक और चिराग ने आखिरी खिताब थाईलैंड ओपन 2024 में जीता था, जहां वो पिछले सप्ताह फाइनल तक पहुंचे थे। इसके बाद भी वो कड़ी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीत सके थे। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का ये 9वां BWF टाइटल है, और फाइनल में उन्होंने नंबर 3 सीड पेयर को हराया, वो खुद चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी थी। और एक और खास बात साथियों इस टूर्नामेंट में ये थी कि सेमीफाइनल में वो जिस जोड़ी से खेल रहे थे, कोरियाई जोड़ी, वो पिछले 35 मैचेस से कोई मैच नहीं हारी थी। 2026 में उन्होंने 3 टाइटल जीते हुए थे और उन्होंने एक भी टाइटल हारा नहीं था, एक भी टूर्नामेंट में वो हारे नहीं थे। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि सात्विक और चिराग इन खिलाड़ियों के खिलाफ, यानी कोरियाई जोड़ी के खिलाफ, उस सेमीफाइनल से पहले सिंगापुर ओपन के कोई गेम तक नहीं जीत सके थे। तो कमाल का प्रदर्शन रहा, बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस रहा भारतीय जोड़ी का, और उस जीत को शब्द दे रहे हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के अभिन्न अंग सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। आइए सुने विजेता के शब्द, सात्विक आपके साथ हैं।
1: I was telling myself not to think so much. We have been playing the same way from the first game here. We lost in the first game as well with the USA. Then we came back from there. I was telling myself it's just a matter of one strike. In the second game, I think 8-all something. Then from there, 14-8 something, I got the strike. So I got pretty much confident that I have to focus only this area, not to focus on the behind. Because in these matches, you don't get so much of smashes to hit. So you have to prove yourself like you can play at the net as well. So my job is to serve and catch one stroke, then let Chirag take over. Felt they were under pressure when we are chasing up and when we are playing pretty much simple. But I think in the third game again, it's always 50-50, 11-12, 13-11. I think few net courts here and there helped us. I think today is our day. Yeah, so happy with that.
0: जी हाँ, टुडे इज आवर डे, ऐसा कहा सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने, लेकिन सच्चाई यही है कि साथियों कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत पसीना बहाना पड़ा इस टूर्नामेंट का खिताब हासिल करने के लिए सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। और जाहिर सी बात है कि ये जो टूर्नामेंट उन्होंने जीता है 2 साल के अंतराल के बाद जीता है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि बड़े सही समय पर जीता है, क्योंकि सिंगापुर के बाद अब इंडोनेशिया मास्टर्स की बारी होगी और अगस्त के महीने में दिल्ली में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके बाद एशियाई खेलों का आयोजन होना है जहां पर ये जो जोड़ी है मौजूदा चैंपियन है। तो सही समय पर पीक फॉर्म में आती हुई ये जोड़ी दिख रही है सात्विक और चिराग की। चिराग शेट्टी अपनी जीत के बाद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं।
2: Really happy. 2 years we knew for a fact that eventually the win will come. We had that belief. It was just a matter of time, and finally we've got it. So yeah, really happy. We knew when we got onto the court that it will be a cracker of a game. Both sides will give their best, and I knew for a fact that the match will go until the very end. For the audience especially, it was a very good game, and for us as well. So yeah.
0: जी हाँ, सभी के लिए बहुत ही यादगार।

0: बहुत ही दमदार रोमांचक मुकाबला था जहां पर भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की और खिताब जीता। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी आपसे बातचीत कर रहे थे अपनी जीत को शब्द देते हुए। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप म्यूनिक में साथियों चल रहा था शूटिंग का जर्मनी में, जहां पर भारत मेडल टैली में जैसा हमने आपको बताया वो दूसरे पायदान पर रहा। भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत की ईशा सिंह ने 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीता एक नए विश्व रिकॉर्ड के साथ। और उसके बाद उन्होंने सुरुचि फोगाट जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, जो कि मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड कप में खिताब जीत चुकी हैं, इस साल का उनका पहला वर्ल्ड कप था, उसमें ही उन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। इनफैक्ट 10 मीटर एयर पिस्टल में पोडियम फिनिश 1-2 हुआ भारत के लिए, क्योंकि ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता और सुरुचि ने स्वर्ण पदक जीता। तो ईशा सिंह ने 25 मीटर में जीता स्वर्ण और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल। उसके अलावा भारत की ओर से मनु भाकर जो कि भारत की डबल मेडल विनर है ओलंपिक खेलों में, उन्होंने सम्राट राणा के साथ 586.6 अंक हासिल किए और मिक्स टीम इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और साथियों जिस जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता उनका स्कोर था 586.9 और भारतीय जोड़ी का स्कोर था 586.6, यानी 0.3 अंक के अंतराल से भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक हासिल करने से चूक गई। लेकिन मनु भाकर और सम्राट राणा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और ये भी जो परफॉर्मेंस है वो इस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल एशियाई खेलों का आयोजन होना है और अब जुलाई के महीने में अगला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बहुत ही यादगार वर्ल्ड कप रहा ईशा सिंह, मनु भाकर, सुरुचि फोगाट, सम्राट राणा के लिए। और ईशा सिंह इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन को कैसे समप कर रही थी आइए सुनते हैं।
1: I'm feeling so grateful. I don't know what to say. I mean, this is my second medal, that too in Munich. Knowing how tough Munich is, I'm beyond grateful to God and my family. Like my efforts paid off. So really happy.
0: जी हाँ, बहुत ही यादगार प्रदर्शन रहा ईशा सिंह का इस टूर्नामेंट में, जहां उन्होंने 2 मेडल जीते म्यूनिख में और जिसमें एक स्वर्ण था और वो भी नए विश्व रिकॉर्ड के साथ और एक सिल्वर मेडल। और भारत की सुरुचि फोगाट, उनको तो ऐसा लगता है कि गोल्ड मेडल उनके लिए बिल्कुल जैसे बच्चों का खेल जैसा हो गया है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 3 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीते थे और अब उन्होंने नए साल की एक जो शुरुआत 2026 की है वो स्वर्ण पदक से की है। ये है सुरुचि फोगाट। क्या जब उनसे पूछा गया कि कुछ दबाव रहता है उनके ऊपर, तो आखिर में उन्होंने क्या कहा था, सुनना दिलचस्प होगा। आइए सुने सुरुचि को।
1: This is my first World Cup of this year and starting is very good. So I did not have any pressure. In starting, my starting was not so good. After that, I got my flow and I got settled down. So that's why I was following my techniques. I did not have any pressure and I don't have.
2: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में। बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दोबारा से विजेता बने हैं और बहुत ही शानदार टीम का प्रदर्शन रहा। 5 विकेट से उन्होंने जीत दर्ज की कल खेले गए मुकाबले में। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। जैसा हमने बताया था दोनों टीमें दूसरे खिताब की तलाश में थी। तो रजत पाटीदार जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ नेतृत्व कर रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने एक बहुत ही सक्षम कामयाब नेतृत्व दिया आरसीबी की टीम को और टीम की जीत को शब्द देते हुए ये हैं विजेता कप्तान रजत पाटीदार।
3: It feels superb when we came here. There are a lot of memory of last year, the way we played last year. But at the same time, we have to be more in the present. Feeling good. I think I don't have words to express, but I'm feeling good.
0: जी हाँ, किसको अच्छा नहीं लगता लगातार दूसरा टाइटल जीतना और लगातार दूसरी बार आईपीएल जीता, 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। कोहली 75 रन पर नाबाद लौटे। बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। बेंगलुरु ने 2025 में, ये भी साथियों संयोग की बात है, इसी मैदान पर पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता था। लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली वो तीसरी टीम बन गई है आरसीबी की। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें ऐसा कर चुकी हैं। विराट कोहली का हमने आपसे जिक्र किया था लेकिन उनसे जरूर उनकी बातचीत आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन एक खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया और वो थे टीनेजर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 776 रन इस पूरी प्रतियोगिता में बनाए, राजस्थान रॉयल्स को सेमीफाइनल तक लेकर के आए। और जैसे खेल के मैदान पर कहते हैं, अक्सर कहते हैं, सो नियर येट सो फार, कितने दूर कितने पास, वही कहानी राजस्थान रॉयल्स के साथ दोहराई गई। लेकिन वैभव सूर्यवंशी क्या महसूस कर रहे थे, ऑरेंज कैप

0: हासिल करने के बाद आइए सुनते हैं।
1: प्राउड मोमेंट है और अच्छा लग रहा है, और इस सीजन प्रेशर्स के गेम में कैसे खेलना है, अपने गेम को कब किस तरीके से चेंज करना है। हर गेम में आप एक मोड से नहीं खेल सकते हो, आपको गेम के सिचुएशन को रीड करके खेलना पड़ेगा और टीम का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। तो ये चीज काफी सीखने को मिला प्लेऑफ्स के गेम्स में भी। ट्राई करूंगा और अच्छा करूं नेक्स्ट सीजन भी।
0: जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका वैभव हर तरफ फैल रहा है और बहुत ही दमदार, यादगार, रोमांचक, शानदार प्रदर्शन रहा। शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान थे, उन्होंने माना कि फाइनल मुकाबले में शायद उनकी टीम को थोड़े कुछ और रन्स चाहिए थे अगर जीत के नज़दीक पहुँचना था या जीत हासिल करनी थी। ये हैं शुभमन गिल।
2: If we would have gotten close to 180, 190 would have been a good match. Whenever we are playing in the first three or four overs, there is a little bit of movement for the fast bowlers. We lost a couple of early wickets and then we kind of lost the momentum in the middle. Couldn't really get going. We knew, you know, we are playing the finals, you know, 150, 160. We get a couple of early wickets in the power play, we are always in the game.
0: शुभमन गिल कई बातें बता रहे थे टीम के प्रदर्शन के बारे में, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल में पहुंची और उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। और हालांकि खिताब से वो बहुत मामूली अंतर से चूक गए। और अगर साथियों बात करें इस सप्ताह की अन्य खेल गतिविधियों की, तो फ्रेंच ओपन के बारे में हमने आपको बताया ही था। फ्रेंच ओपन में खिताब के जो बड़े दावेदार हैं दो, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर। महिला वर्ग में भी डिफेंडिंग चैंपियन कोको गफ बाहर हो चुकी हैं। भारतीय चुनौती भी बहुत कमज़ोर नजर आई। मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी जो थी वो बाहर हो गई। श्रीराम बालाजी हालांकि जीते थे, तीसरे दौर में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन यूकी भामरे दूसरे दौर में हार गए थे। बर्थडेज की बात करें, दिनेश कार्तिक आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। जस्टिन हैना हार्डन जो कि टेनिस की खिलाड़ी हुआ करती थी। भारत की कर्णम मलेश्वरी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक खेलों में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारोत्तोलन में, वो आज अपना बर्थडे मना रही हैं। 3 जून को दीप ग्रेसिक का हॉकी खिलाड़ी बर्थडे मनाएंगी। राफेल नडाल और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों का बर्थडे होगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। शिवेंद्र को अनुमति दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।
3: India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
4: Sports Pulse.
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। ये प्रोग्राम शुरू तो हुआ था 7 बजे, लेकिन इसकी दूसरी कड़ी शुरू हो रही है अब। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश जॉली।

गुड मॉर्निंग दिल्ली, इनसे आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 42 रुपए महंगा हो गया है दिल्ली में और 53.5 रुपए कोलकाता में। और वहीं 5 किलो FTL सिलेंडर 11 रुपए महंगा हुआ है। कुछ महंगा नहीं हुआ है तो वो है आपको और हमारा मिलने का सिलसिला, वही है।

गुड मॉर्निंग दिल्ली, सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मुनीश जॉली। जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज से किसी को भी आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करेंगे, उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यूपीआई का परिचालन करने वाली सरकारी एजेंसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से ये कदम धोखाधड़ी को कम करने के लिए उठाया गया है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप और मेरा नाम है मुनीश जाली। दोस्तों आज 1 जून है और सोलर पैनल लगाने के जो नियम हैं वो सख्त हो जाएंगे आज से। सरकार ने तय किया है कि सरकारी योजनाओं की जो सब्सिडी है उस सब्सिडी वाले सोलर प्रोजेक्ट्स और नेट मीटरिंग से जुड़े सिस्टम में अब केवल उन्हीं सोलर पैनल और सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाएगा जो सरकार की स्वीकृत सूची यानी ALMM में शामिल है। प्लान कर रहे थे सोलर प्रोजेक्ट्स का, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे शान की आवाज में क्लिंटन सरेजो के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ एक खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। और वजह यह है कि यूनिसेफ ने आज लॉन्च किया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून आज, और थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। दोस्तों, पेरेंट बनना कोई आसान बात नहीं होती, और जो सपोर्ट केयर गिवर्स देते हैं बच्चों को देते हैं, जो पेरेंट अपनी पेरेंटिंग के जरिए उस बच्चों की जर्नीस को आगे, मैं कहता हूं कि एक स्वरूप देते हैं, वो कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए इस थीम को सपोर्ट करने के लिए यूनिसेफ ने ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आज लॉन्च किया। और मेरे साथ नेहा सिंह यहाँ मौजूद है फोन लाइन पर। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हाँ जी, नमस्ते, थैंक यू।
0: मेरी आवाज सही पहुंच रही है आप तक?
1: जी, आ रही है।
0: ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक यंग मदर हैं, और मदर बनने के बाद आपकी भी आवाज और ज्यादा सुरीली हो गई। कितना बड़ा दायित्व है पेरेंट बनना।
1: और आजकल की जनरेशन को संभालना ही बहुत टफ है। हम मिलेनियल जनरेशन पे हैं, तो हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी आते हुए हमने देखी है। और आज की जनरेशन, मेरी बच्ची है 2 साल की, वो अल्फा जनरेशन की है।
0: ओके, तो पेरेंट बनने के बाद आपको भी नया पता तो लग ही गया होगा कि आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके से आपको पाला पोसा, बड़ा किया, वो एक इजी जॉब नहीं है ना।
1: जी जी जी सर, पेरेंट होने के बाद ही हमें पता लगा कि हमारी माँ ने, हमारे पापा ने कितना सैक्रिफाइसेस किए होंगे हमारे लिए।
0: जी एब्सोल्युटली। तो क्या, अगर मैं कहूँ कि क्या चैलेंजिंग चीजें पेरेंट बनने के बाद आपने महसूस की जो आपको पहले पता नहीं था?
1: जी जी सर, चैलेंजिंग ये है कि पहले मैं अपने रूटीन से जीती थी, अभी बच्चे के अकॉर्डिंग सारी रूटीन सेट करनी पड़ती है। और पहले क्या था, पहले हम अपने लिए टाइम निकाल पाते थे, अभी तो मैं हर चीज कुछ भी करने से पहले बच्चे के बारे में सोचती हूँ कि उसको डिस्टर्ब ना हो, उसकी टाइमिंग, उसका खाने का टाइम, सोने का टाइम सब फिक्स।
0: ऑलराइट, आपकी बिटिया का नाम क्या है?
1: सर, उसका नाम है निकारा सिंह।
0: और कितनी बड़ी हो गई अभी?
1: 2 ईयर्स की कंप्लीट हुई है अभी अप्रैल में।
0: अरे वाह, तो
1: हाँ सर, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी इंटेलिजेंट रही होंगी, आप लोग को तो दो नहीं, लेकिन अभी आज के बच्चे, अभी 2 ईयर्स की मेरी बेटी है, लेकिन उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है खुद से।
0: ओके,
1: उसको बोलो कि बेटा 0 बनाओ, 0 1 सब डिफरेंसेस पता है, लिख लेती है।
0: ओके, मुझे पता नहीं ये कह के आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या क्या कर रहे हो, बच्चे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। आपने कहा आजकल की जनरेशन बड़ी इंटेलिजेंट होती है, मैं अपनी जनरेशन को सोचने लग गया कि भाई हम लोग क्या थे।
1: सर नहीं, एक्चुअली क्या था, हम लोग हमारे टाइम पे ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो हम उसी में इतनी सारी ये जो डिजिटल दुनिया है उसमें नहीं थे। अब अभी क्या है, बच्चे ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो रहे हैं, डिजिटल दुनिया से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने तो मोबाइल आते हुए देखा है, हमारे टाइम पे स्टार्ट हुआ मोबाइल, हमने तब देखा। अब ये तो पैदा हो रहे हैं कि हाथ में मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, सारी चीजें हैं।
0: ये मोबाइल भी बड़ी अजीब चीज है शानी सेठ, कोई भी डिस्कशन हो तो मोबाइल बीच में आ ही जाता है। पर नेहा, ये बात बताइए, वो पहला भाव आपको कैसा लगता है जब आपने अपने यंग किड के दांत आते हुए देखे, पहले उसको पहले चलना देखा, चलते हुए देखा, या 2-3 कदम लेते हुए देखा, वो वाला भाव, वो मुस्कुराते हुए जो आपको देख के मुस्कुराती है, कभी कभी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा ना
1: सर। बच्चे को, छोटे से बच्चे को पहले दुनिया में लाना, फिर उसका एक एक विकास का क्षण देखना कि कैसे कैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, ये सारी चीजें तो ऐसी है कि सर मैं बता ही नहीं सकती, बहुत ही। और मुझे लगता है कि पेरेंट बनने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ, पहले मैं इतनी ज्यादा वो नहीं थी, लेकिन अभी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ।
0: देखो, यूनिसेफ का एक और यूनाइटेड नेशंस का एक, दोनों का एक

0: एक मैं कहूंगा रोल है कि वो बताना चाहते हैं कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो फैमिलीज हैं उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक बच्चे को नर्चर करने के लिए, उसको एक शील्ड देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, उसी के लिए आज का दिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है लॉन्च किया गया है। पर इससे पहले कि मैं एक प्यारा सा गाना सुनाऊं और यहाँ पे अपने चैनल पे ये गाना बजाऊं जो बहुत प्यारा सा है, बच्चों के साथ ही शुरू होता है, मैं चाहता हूँ कि आप भी जब मदर बनी नेहा, आपने बहुत कष्ट झेले उस जिंदगी को, इस दुनिया को दिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ वो एक्सपीरियंस आप शेयर करें और फिर ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।
1: सर एक्चुअली जब 9 महीने तक मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल थी, डॉक्टर ने बताई, तो मैं 9 महीने तक मैंने कुछ भी मतलब कहीं नहीं गई, कहीं जर्नी नहीं की, डॉक्टर ने सारी चीजें मना कर रखी थी। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो फिर 7 डेज तक तो हमें पता नहीं चला, डॉक्टर्स ने बताया कि सब नॉर्मल है। जब घर लेके उसको आए तो उसके बाद में उसकी हार्ट सर्जरी होने को बोला उन्होंने कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हार्ट सर्जरी होगी, और उसका वेट बहुत ही कम था, 2 केजी की हुई थी। फिर उसके बाद में हमने हर जगह पता किया सर, बहुत सारे मतलब मेरी सी सेक्शन से हुई थी बेटी, लेकिन मैंने उसी फेज में उस बच्चे को लेके दिल्ली के सारे हॉस्पिटल जितने भी जहां जहां उन लोगों ने बोला था हो सकता है, हर जगह ट्राई किया, लेकिन सारी डॉक्टर यही बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा रिस्क पे है क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। फिर उसके बाद में एक डॉक्टर है, डॉक्टर राजेश शर्मा सर, अपोलो के, उन्होंने वो सर्जरी की। तो उसके बाद भी बहुत मैं 6 मंथ तक के नर्स की तरह मैंने काम किया है, बच्चे को घर पे लाना सर्जरी के बाद, फिर उसको सारी चीजें उसको मैनेज करना बहुत ही टफ
0: और अनगिनत इंजेक्शंस आपने अपने शरीर पर लिए होंगे ना उस बच्ची को, इस प्यारी सी जिंदगी को
1: दिखाने के। हर दिन एक इंजेक्शन लिया, मैंने 280 इंजेक्शन अपनी बॉडी पे लिए हैं, स्टार्टिंग में तो डॉक्टर नर्स के थ्रू, फिर मैंने खुद से ही स्टार्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि डेली नर्सेज आना पॉसिबल नहीं था।
0: ऑलराइट, शायद ये सारा सैक्रिफाइस देख के ही यूनिसेफ ने लॉन्च किया द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आज। और ऑफ कोर्स वो जो सपोर्ट और जो केयर पेरेंट्स देते हैं वो कहीं छिप ना जाए, और ये
1: हाँ, लेकिन
0: प्रयास।
1: बच्ची की मुस्कान के बाद ये सारे दर्द दुख सब भूल जाते हैं।
0: एक प्यारा से गीत मैं चला रहा हूँ नेहा, लेकिन आपकी लाइफ से जुड़ी एक खास बात आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू।
0: राइट देन, इट्स द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स टुडे, लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने पेरेंट्स की कद्र करते रहिए।

ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है आज और इसे विश्व भर में मनाया जा रहा है। कभी कभी सोचता हूं कि वो जो फौलाद तैयार करते हैं हमारे पेरेंट्स, जो फौलाद हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं, या वो इंटेलिजेंट बच्चे जो देश की तरक्की में हाथ देते हैं, वो साइंटिस्ट्स, वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें बनाने वाले, और पेरेंट्स को वो श्रेय याद दिलाने के लिए द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। और सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, वो केयर गिवर्स को भी, जो पूरे विश्व में अपनी सेल्फलेस कमिटमेंट और अपनी सैक्रिफाइस के द्वारा बच्चों का, उनकी देखभाल, उनका पोषण करते हैं और वो संस्कार उनमें डालते हैं। इस साल की थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। और कभी कभी मन में विचार आता है कि कितना बड़ा योगदान, बड़े होने के बाद हम अपने पेरेंट्स का वो योगदान भूल जाते हैं। कभी कभी कैजुअली भी कोई कड़वी बात मुंह से निकलती है तो कितना ठेस पहुंचाती होगी ना उन माँ बाप को। न जाने माँ ने कितने इंजेक्शन लिए होंगे हमें ये सुंदर दुनिया दिखाने के लिए। आज उसी का एहसास कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। आप सबके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे पेरेंट्स को भी।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली। नौ तपा चल रहा है और उसके बीच में अगर बारिश की वो बौछारें आ जाएं दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तो मेरा भी मन कर रहा था कि बारिश में झूमूं, नाचूं, गाऊं। तोड़ा भी कर रहा है।

प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आप सुन रहे हैं सुबह के ये हसीन गाने। आशा कर रहा हूं आप अपनी सुबह एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर की ये उड़ान जो है इसे जारी रखते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में ये हिट सुपर हिट सॉन्ग।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

तो मैं मुनीष जौली आप सब लोग से इजाजत ले रहा हूँ। निखिल आ गए हैं अगला प्रोग्राम लेकर, जो है दिल के तराने, गाने नए पुराने। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो यही कामना करते हैं। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लो।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

और फ्रेंड्स आपको बताओ तो मेरे जाने के बाद आप कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे। तो भाई आपको बता दें 10:05 पर निहारिका आपके साथ होंगे, लेक की वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम एचलेस म्यूजिक आर। इसके बाद फिर आप बबीता त्रिपाठी को सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स में 11:05 पर, और निहारिका एक बार आपके साथ फिर होंगे वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम प्लेट कूल के साथ में 12:05 पर, और बबीता लेकर के आएंगे रेनबो हेल्पलाइन 1:05 पर। तो फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक की फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय

और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग। यू आर विद मी निहारिका ऑन द मैचलेस म्यूजिक आवर 10:05 AM बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड इट्स द 1st of June, मंडे, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू वीक, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू मंथ ऑल टुगेदर, विच मीन्स दैट इट्स टाइम टू ब्रिंग इन सम फ्रेश एनर्जीज इन टू योर लाइफ। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट अस और द इंटायर वर्ल्ड फील्स दिस वे, बट इट रियली फील्स लाइक द 1st 5 months ऑफ 2026 वेंट अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। बट यू नो दैट्स हाउ ऑलवेज इट इज, टाइम इज जस्ट लाइक दैट रनिंग अवे। द इंपॉर्टेंट थिंग is that we need to live the present moment to the fullest, and one way to do that in the new month is to introduce more gratitude into our lives, because you know what they say, right? Joy and gratitude are the simplest forms of being happy, and a grateful heart is always a magnet for miracles. So today I want to ask you, what is it that you will do from today onwards to introduce more gratitude into your life? Perhaps you can start with a journal, you can start maintaining a gratitude jar, or maybe you can just try some lines of gratitude on the notes app on your phone. That's also a good idea as well. So write away to us on 9868107070 about how you're planning to introduce more gratitude into your life from this month onwards, and also see your life flip and change for the better when you do that. While we wait for your messages, well, up first, Engelbert Humperdinck with my special inspiration on today's Matchless Music Hour. Stay tuned.

0: लिरिक्स बाय गुलशन बावरा, म्यूजिक डायरेक्टेड बाय आरडी बर्मन एंड संग बाय शैलेंद्र सिंह. हमने तुमको देखा फ्रॉम द 1975 फिल्म खेल खेल में, अडैप्टेशन ऑफ द फ्रेंच नॉवल गुड चिल्ड्रन डोंट किल, एंड दैट नॉवल वाज रिटन बाय लुई थॉमस. नाउ दिस फिल्म इज ऑल अबाउट फन एंड फ्रॉलिक इन द फर्स्ट हाफ एंड इट क्विकली टर्न्स इनटू अ थ्रिलर इन द नेक्स्ट हाफ. सो द वे दिस फिल्म चेंजेस शेड्स इज वर्थ नोटिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सीन इट रिसेंटली परहैप्स यू माइट जस्ट वॉन्ट टू सिट डाउन विद इट एंड रिलैक्स एंड just soak yourself in nostalgia. It'll be worth it. And up next, we've got a short commercial break on the Matchless Music Hour. Post that, there'll be more music, of course. Stay tuned.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है.
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये है जनगणना का अभियान. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है. आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी. आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं. जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है. यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है. बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं. इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती. समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है. साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है. साथियों, देश की जनगणना

सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

लता मंगेशकर एंड मन्ना डे विद ये रात भीगी भीगी फ्रॉम द 1956 फिल्म चोरी चोरी पिक्चराइज्ड ऑन राज कपूर साहब एंड नरगिस जी. सो टुडे वी आर आल्सो फॉन्डली रिमेम्बरिंग नरगिस ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. आई मीन हर लेगेसी, द लेगेसी दैट शी इज लेफ्ट बिहाइंड इज एविडेंस इनफ ऑफ दैट. एंड शी वॉज नोन फॉर पोर्ट्रेइंग

0: चूज की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.50 रुपए तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेहंदी लगा लीजिए, थोड़ा तैयार हो जाइए, एकदम नहा धो के फ्रेश पाउडर ऑर्डर लगा के मस्त हो जाइए। और अगर आपने ऐसा नहीं करने का इरादा किया है, मतलब थोड़ा लेट चल रहे हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो भी आपको बता दूं कि आपका मूड एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश होने वाला है, क्योंकि शुरू हो चुका है बीटी विद बीटी, यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। तो रोला तो पै जाने दो फिर।

अब व्हाट टू डू आप पूछ ही रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एंजॉय करते रहना है। आकाशवाणी रेडबो दिल से दिल तक, बीटी विद बीटी चल रहा है, यानी बॉलीवुड ट्रेल्स, बबीता त्रिपाठी के साथ। बॉलीवुड में क्या कुछ खास चल रहा है वो सब यहाँ पर होता है, और साथ में होता है एक आपके लिए सवाल जिसका जवाब आसान होता है, और वो आसान सा जवाब आप अगर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमको 11:30 बजे के आसपास जब सवाल पूछा जाएगा तब दे देंगे, तो क्या होगा कि बॉलीवुड सरताज आप बन सकते हैं, और नहीं भी बने तो आपका नाम तो शामिल होगा ही। तो उसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, और बॉलीवुड सरताज अगर बन गए आप तो क्या होगा वो भी मैं बताते चलती हूँ, कि तब आप हमसे बात करने का आपको मौका मिलेगा, और हमें आपसे बात करने का सौभाग्य मिलेगा, और ऐसे सौभाग्य के लिए का मौका आप खोना नहीं चाहेंगे। उसके लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, और उस बात में एक छोटा सा जवाब छुपा होगा जिसका सवाल मैं पूछूंगी 11:30 बजे, और व्हाट्सएप मैसेज करना है, बता ही चुकी हूँ, इतनी सी बात है, और इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बहाना नहीं चलेगा। आप सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स और इन्जॉय करते रहिए धमाकेदार गाने। अब खबरें आएंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, इस गाने को एंजॉय कर लेते हैं, लौट कर आते हैं बीटी विद बीटी में, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ चलता है।

देखिए जी, ये तो हुई मेरी बात, लेकिन आप फिल्मों की बात अगर जानना चाहते हैं तो आने वाली फिल्में कौन सी हैं उसके बारे में आपको एकदम अपडेट रखते हैं, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कोई चीज़ मिस कर दे अपनी फेवरेट टॉपिक यानी बॉलीवुड के बारे में। तो फिलहाल आपको बता दूं कि मासूम का सीक्वल आ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो जान जाइए, और शेखर कपूर बना रहे हैं, और शेखर कपूर के दिमाग में क्या आ रहा है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर जानिए, क्योंकि उनको ना अभी बहुत सारी चीज़ें फाइनल करनी है। तो अभी फाइनल करते वक्त उनके दिमाग में क्या आया कि उनकी जो मासूम का जो सीक्वल आ रहा है ना, उसमें कौन

होना चाहिए, ऐसा कुछ वो सोच ही रहे होंगे शायद, तभी उनको लगा कि वैभव सूर्यवंशी उनको बड़े फिट नजर आ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी, अब आपको जान आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त, लेकिन शेखर कपूर उनके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उनका कहना है कि मासूम में कास्ट करने के बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट ने उनको अपना बना लिया है। इतने बड़े वो क्रिकेटर ना होते तो मासूम द न्यू जनरेशन जो उनकी आने वाली मूवी है ना, उसमें वो एकदम फिट बैठते। अब इससे लग रहा है कि ये फिल्म जो है कुछ खास तो होने वाली है, कुछ मासूम जैसा होने वाली है, और मासूमियत झलकती है उनको ऐसा लगता है कि इस क्रिकेटर में, शायद इसी वजह से वो इनको लेना चाह रहे थे। और फिल्म के बारे में बात करें तो इसमें फिल्म पहचान, परिवार, प्यार और पलायन जैसे विषयों को कवर करती दिखाई देगी, काफ़ी भावुक होगी ये भी पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है, और क्या जानना चाहते हैं आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में? नहीं, फिल्म के बारे में। फिल्म जो आने वाली है मासूम द न्यू जनरेशन, शबाना आजमी उसमें दिखेंगी, मनोज वाजपेयी दिखेंगे और नसीरुद्दीन शाह भी दिखेंगे, यानी पुरानी जो कास्ट है उसमें से ये लोग दिखेंगे। साथ में नित्या मेनन, मनोज वाजपेयी भी दिख रहे हैं और कावेरी कपूर भी नजर आएंगे। अब प्री प्रोडक्शन स्टेज में ये मूवी है, बनकर कब तैयार होगी पता नहीं, लेकिन साल के आखिर में उम्मीद की जा सकती है कि इसकी शूटिंग जरूर शुरू हो जाएगी। बाकी की अपडेट्स के लिए आप और हम कहां ही जा रहे हैं, सुनते रहिए बीटी विद बीटी, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी यहीं ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: दिला दे घर।
1: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।
2: देखिए जी, ये जो गाना है ना, इतनी बार मैं बजाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंडीगढ़ में मैं घर मैनिफेस्ट ना कर लूँ। तो चलिए, इससे पहले कि इस गाने को हम प्ले करें, मैं सोच रही हूँ आपको बता दूं कि जून आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। जून का पहला वीक तो खास तौर पर अच्छा जाने वाला है। फिल्मों के लिहाज से अगर बात करें तो वैसे तो मुझे लगता है कि आप आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े हैं, तो आपका हर वीक हर दिन 2400 घंटे बेहतरीन जाते हैं जब भी आप इससे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन है दिल से दिल तक। लेकिन आपको बता दूं कि 5 फिल्में कौन सी आने वाली हैं, रिलीज होने वाली हैं। एक्शन, स्पोर्ट्स, ड्रामा और रोमांस का धमाका होने वाला है, तो आपको बताना बनता है। मूवी कौन सी आ रही है बता दूं, पेड्डी। इस समय पेड्डी की चर्चा गरम हमेशा से थी, और इस समय जब रिलीज होने वाली है तो भाई इसकी गर्माहट दिल्ली के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो रही है और खूब बात हो रही है, क्योंकि सुपरस्टार, साउथ की सुपरस्टार रामचरण इस फिल्म में है, साथ में जानवी भी हैं, जानवी कपूर लीड रोल में इनके साथ नज़र आ रही हैं, तो भाई इसकी चर्चा तो होनी ही थी। और अब इस फिल्म के साथ साथ ये मूवी बता दूं 4 जून को रिलीज होगी, और उसके बाद कौन सी मूवी आ रही है बता दूं, अनुराग कश्यप की बंदर आ रही है। बंदर में बॉबी देओल भी हैं, बॉबी देओल हीरो हैं भी क्या कह सकते हैं, लीड एक्टर यही हैं। समीर मेहरा नाम के टीवी स्टार का ये किरदार निभा रहे हैं, और समीर मेहरा कैसा टीवी स्टार होगा जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। कब देखेंगे, ये 5 जून को थिएटर में रिलीज होगी, तब देखेंगे। और है जवानी तो इश्क होना है, ये गाना नहीं फिल्म का नाम है, और ये वरुण धवन की फिल्म का नाम है जो आने वाली है, है जवानी तो इश्क होना है। और वरुण इस किरदार, वरुण के किरदार में ये मूवी इर्द गिर्द उनके ही किरदार पर घूमती है, और बाकी कहानी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये बता दूंगी 5 जून की ये भी आ जाएगी। और मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ये अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, और इस मूवी को भी आप थिएटर में देख सकते हैं। और अगर आपको भाई हॉलीवुड मूवीज़ का शौक है तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो थिएटर्स में है तो मैंने आपको बता दिया, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप इन्जॉय करने वाले हैं मूवीज़ को गर्मियों में ठंडी ठंडी एसी की हवा के साथ। तो देखिए, प्लान कर लीजिए जब आपको जाना है, फिलहाल तो आप यहीं रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, बहुत कुछ चल रहा है, बॉलीवुड ढेर सारी अपडेट्स देता है और हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, चंडीगढ़ में घर एक लेके डाल ही देते हैं, किराए पर उठा देंगे।

बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती हैं, लेकिन इसी बीच आपको बहुत सारी जब खुश करने वाली खबरें आती हैं तो कई बार गमगीन करने वाली, खुश करने वाली या दुखद खबरें कह सकते हैं उनके बीच में आ जाती हैं, जब खुशियों के बीच में, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, बॉलीवुड से प्रेम है, आपसे बात तो करेंगे ही, आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। आज महान सिंगर सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही, तो उनकी बात ना करें कैसे हो सकता है। स्वर साम्राज्ञी से इनको नवाजा गया था और स्वर सामग्री लता मंगेशकर को भी कह सकते हैं और कहते ही हैं, लेकिन उन्होंने भी जो जिस तरह से मतलब इनको अप्रिशिएट किया हमेशा, और एक टाइम था जब लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और आशा भोसले, इनका एक टाइम था 50s और 60s का दौर था जब यही सुर सुनाई देते थे, यही आवाज़ें सुनाई देती थीं और एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने सुनाई देते थे, और लगभग सभी जो मेल सिंगर्स हैं उनके साथ इन्होंने गाना गाया है। सुमन कल्याणपुर 31 मई 2026 को 89 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। हाल ही में हमने आशा भोसले को खोया और कुछ साल पहले ही हमने लता मंगेशकर को खोया, उसके बाद इतनी महान गायिका सुमन कल्याणपुर भी आज हमारे बीच नहीं रही, तो ऐसे में हम उनको याद करते हैं। उनके महान गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम उनके हिंदी गाने के अलावा हम उनको याद कर सकते हैं बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़ीसा, पंजाबी जैसे कई भाषाओं के गीतों में भी, क्योंकि वो लगभग हर जो मेन भाषाएं हैं उनमें गाया करती थी। और आज ये आवाज़ खामोश भले ही हो गई है, लेकिन उनके जो गाने हैं वो हमेशा हमें एंटरटेन करते रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे और हमेशा बने हुए हैं। ये टाइम बहुत पुराना हो गया जब इनके गाने आए थे, लेकिन आज भी जब ये गाने बजते हैं तो हम उसी तरह से झूमते हैं, उसी तरह से गुनगुनाते हैं जैसे वो गाने शुरुआत में आए थे, उतने ही रिफ्रेशिंग लगते हैं ये गाने। और कई बार लता मंगेशकर को और सुमन कल्याणपुर को सुनते थे ना तो समझ ही नहीं पाते थे, कि एक बार कंफर्म तो ज़रूर करना पड़ता था कि ये वाकई सुमन कल्याणपुर हैं, ऐसा लगता था कि लता मंगेशकर गा रही हैं। ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा मिलती थी, बेहतरीन क्वालिटी की आवाज़ें। लेकिन क्या करें, अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो हम उनको रोते रोते विदा नहीं करेंगे, उनके गानों के साथ, उनके जो ज़बरदस्त नटखट गाने थे उनको प्ले करके उनको खुशी खुशी विदा करें तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया है बॉलीवुड के लिए वो हमेशा हमको खुश करने के लिए किया है, हम एंटरटेन करने के लिए किया है, तो हमें लगता है कि हम उनके गानों के ज़रिए उनको अगर अपने दिल में बसाएं तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती है। एक गाना लौट कर आती हूँ और बातें करते हैं।

सुमन कल्याणपुर ने बॉलीवुड में लगभग 740 गाने गाए हैं, 740 गाने, और मोहम्मद रफी के साथ तो लगभग 140 गानों में ड्यूएट किया। तो एक गाना तो आपने सुन ही लिया, और मुझे लगता है एक और गाना बनता है। और अगर बात करें और जो उनके साथ गाने वाले मेल सिंगर्स की, तो लगभग सभी के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं, और उनमें नाना करते प्यार तुम ही जो आपने सुना, तुमने पुकारा हम चले आए, अजहुन आए बलमा बालमा, इतना है तुमसे प्यार मुझे, तमाम गाने हैं। ये तो मोहम्मद रफ़ी के साथ हम कह सकते हैं, लेकिन और भी जो सिंगर्स हैं उन सब के साथ उन्होंने ज़बरदस्त डुएट गाने गाए और हिट थे, सुपर डुपर हिट थे। और हम कई बार ये सोचकर भी उनको सुनते थे कि ये शायद लता मंगेशकर की आवाज़ है, लेकिन वो हुआ करती थी सुमन कल्याणपुर की आवाज़। और ज़बरदस्त ये आवाज़ हम सब के बीच हमेशा गुनगुनाएगी, हम हमेशा उनको याद करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम मिस करेंगे फिजिकली उनको, हमेशा मिस करेंगे। मन्ना डे के साथ अगर बात करें तो उनके युगल गीत ना जाने कहाँ हम थे, और एक ये किसने गीत छेड़ा, आँखियों का नूर है तू, मेरा प्यार भी तू है, दिल ने फिर याद किया, कई गाने हैं जो उन्होंने गाए हुए हैं। और बेहतरीन गीतों की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं होगी, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, और मैं चाहती हूँ कि हम उनको हमेशा खुशी खुशी उनको याद करें, उनके गानों को याद करें। फिजिकली वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में हमेशा वो रहेंगी और उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे। तो उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ में ये गाना भी सुनते हैं जो मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर का डुएट है।

कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि बबिता ने आज धोखा दे दिया। हाँ, बॉलीवुड सरताज का सवाल ही नहीं पूछा। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल याद है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि आज का जो सवाल है वो बिल्कुल आने के लिए तैयार है। आप सब अपना मोबाइल उठा लीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। अगर आंसर सही कर दिया तो आप बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं और हमसे बात करने का मौका मिल सकता है। अगर नहीं भी बात करने का मौका मिला तो आपका नाम शामिल जरूर होगा, ये तो बात पक्की है। तो फिलहाल आपको फॉलो करना है जैसा मैं कहूँ वैसा। तो अपकमिंग फिल्म बंदर की मैंने बात की और इसमें बात की कि बॉबी देओल मुख्य किरदार में है, और साथ में आपको ये भी बता दिया था मैंने कि इस किरदार का नाम क्या है। बस यही आपको लौट कर हमें बताना है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि अपकमिंग फिल्म बंदर में बॉबी देओल के किरदार का नाम क्या है। और इनका नाम यानी किरदार का नाम लिखने से पहले सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम, ताकि आपका मैसेज शामिल हो। उसके बाद आंसर लिखकर ये लिखिए जो किरदार का नाम है उनका, और उसके बाद भेजना है 9868107070 पर। 9868107070। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी।

देखिए जी, ऐसे ऐसे एक्टर्स हमारे बीच में हैं और हर दौर में कुछ एक्टर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके बिना गुजारा नहीं होता। मतलब कुछ भी अगर एक वैरायटी अगर आपको चाहिए ना, तो एक एक्टर होगा जिसका नाम आपको लगेगा कि ये एकदम फिट बैठेगा, और उनमें से एक है हमारे मन्नू भैया। मन्नू भैया किस तरह के किरदार में फिट हो सकते हैं आप इमेजिन करिए, जब इस वक्त धुरंधर में ज़बरदस्त धुआंधार उन्होंने जो एक्टिंग करके दिखाई और साथ में एकदम डिफरेंट रोल में, तो मतलब मज़ा ही आ गया देख कर। ऐसा लगा कि क्या डिफरेंट रोल्स ये कर सकते हैं, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है। और ना सिर्फ उसमें, बल्कि हम मन्नू भैया की बात कर रहे हैं तो तनु वेड्स मनु को कैसे भूल सकते हैं। तनु वेड्स मनु हो या तनु वेड्स मनु रिटर्न्स हो या फिर थ्री इडियट वाले हमारे मतलब जो एक्टर हैं, मतलब एक से बढ़कर एक आर माधवन के जो रोल्स हैं वो याद करेंगे। रंग दे बसंती हो, गुरु हो, थ्री इडियट्स हो, मतलब एक से बढ़कर एक नाम है। और कई सारी भाषाओं में वो एक्टिंग करते हैं, सिर्फ हिंदी मूवीज की मैं बात कर रही हूँ। और जब इतने ज़बरदस्त एक्टर का बर्थडे आए तो आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स चल रहा हो, उनको विश नहीं किया जाए, हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम अपने मन्नू भैया को कुछ उन्हीं के अंदाज में, मतलब चुलबुले अंदाज में, जिसके लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं, विश करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आने वाली फिल्मों के लिए, और चाहते हैं कि वो हमारा एंटरटेनमेंट इसी तरह से अलग अलग किरदारों के जरिए करते रहें। तो मन्नू भैया ढेर सारी शुभकामनाएं, आई मीन आर माधवन जी, आपके जन्मदिन की। अब मन्नू भैया का करी है फिल्मों में पता नहीं, बताएंगे, बॉलीवुड ट्रेल सुनते रहिए, सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, उनली ऑन आकाशवाणी रेनबो। दिल से दिल तक एंजॉय करते रहिए।

0: देखा। अरे काहे को जानना है आपको कि मन्नू भैया का करी है, आप अपने काम से काम मतलब रखा ना। चलो आगे बढ़िए। तो मैं ये कह रही थी कि बॉलीवुड रेल्स चल रहा है और आपके लिए जो सवाल पूछा है, और रिपीट कर दूं क्या? चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, तो उससे पहले मैं आपको सवाल एक बार फिर से बता देती हूं। वैसे जवाब मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी। अपकमिंग फिल्म बंदर में बॉबी देओल के किरदार का नाम क्या है, ये आपको आंसर लिखना है। लेकिन उससे पहले अपना नाम, अपना शहर का नाम लिखना है ताकि आपका मैसेज शामिल हो सके। व्हाट्सएप मैसेज करना है 9868107070 पर। एक ब्रेक, लौट कर आते हैं, आपके नाम शामिल करते हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तो जैसा कि मैंने कहा था कि लौट कर आऊंगी, आप सबके नाम शामिल करूंगी, लेकिन आपको मैंने ये भी कहा था कि सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम लिखना है। कैसे भूल जाते हैं, हर बार जब भूल जाएंगे तो सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी, आपका नाम शामिल क्या पता ना भी हो। तो देख लीजिए, अब आप आगे से ध्यान रखा करिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं आप सबके मैसेजेस शामिल करने की पूरी कोशिश करती हूं, दिल ही मेरा बहुत अच्छा है, क्या कर लूं अब मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं भाई, कंप्यूटर हमारा बढ़ता ही जा रहा है आगे और दिखाता ही जा रहा है इतने सारे मैसेजेस। कौन करता है भाई? आप लोग करते हैं, आप लोगों का प्यार है। हैरी सिंधु बठिंडा से कर रहे हैं, बसंत तोमर मेरठ से, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, और समीना शेख मुंबई से, और दिनेश अजय और भी आगे नाम, अमर कॉलोनी कहाँ पर है पता नहीं, हमारा कंप्यूटर उतना ही दिखा रहा है। सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम लिखते तो आज आपका आपके शहर का नाम भी शामिल हो चुका होता। ये सुनील कुमार यादव और मिंटू यादव कहाँ से लिख रहे हैं, ये भी इन्होंने बाद में लिखा है। और ये कौन है भाई, अपना नाम ओम प्रकाश पहले लिखते हैं उसके बाद शहर का नाम, उसके आगे की बातें नहीं लिखते हैं। और आंसर के बाद लिखा हुआ है सलीम मलिक मेरठ से सही जवाब के साथ, और उसके बाद सही जवाब भटिंडा से मिसेस धर्म भाटिया भी कर रही हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कर रहे हैं, और इरशाद कहाँ से कर रहे हैं, राजस्थान से, उपेश शर्मा जम्मू कश्मीर से, कुरेश रिजवान का मैसेज दिख रहा है, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर दिल्ली से, चितरंजन सक्सेना का भी मैसेज आ रहा है, और नाम नहीं लिखा तो कैसे कॉल करेंगे, कॉल करने की बात कर रहे हैं आप और उसके बाद नाम भी अपना नहीं लिख रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। सही जवाब दिया है आपने, थैंक यू सो मच, नाम भी लिखिए तो अच्छा लगेगा। राजकुमार गुप्ता मेरठ से लिख रहे हैं, और जिन्होंने भी लिखा है उनका नाम नहीं दिख रहा है, बाद में लिखा है, गलत जवाब। पटना बिहार से प्रिंस का मैसेज है, और दानिश कतौली से मैसेज कर रहे हैं, जाहिद मुजफ्फरनगर से मैसेज कर रहे हैं, और नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है भाई, ये सब ने गलतियां की है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं देखने वाली किसी का।

क्या पता कॉल आप ही को जा रही हो बॉलीवुड से ताज बनाने के लिए। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, लौट कर आती हूँ होपफुली बॉलीवुड सरताज के साथ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी

0: ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सब कह रहे हैं हमारे बॉलीवुड सरताज कहाँ है भाई, और टाइम बता रहा है कि बॉलीवुड सरताज अब नहीं तो कब आएंगे भाई, टाइम तो इतना ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हम ऐसे कैसे हार मानने वाले हैं, हम तो ढूंढ कर ही लाते हैं। और आज के बॉलीवुड सरताज कौन है वो हमेशा की तरह खुद ही बताएंगे। हेलो
1: जी मैम,
0: कौन Hello. बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं आबिद बोल रहा हूँ, खान आबिद मेरठ से।
0: मेरठ से खान आबिद का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
1: आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: सो स्वीट, सो स्वीट।
1: मेरा भी दिल करता है मैं भी ऐसी एंकरिंग करूं।
0: ऐसे ही मेरा एक बार दिल करता था और फिर मैं आरजे बन गई। आप भी कोशिश कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, है ना? यही जुनून जोश होना चाहिए, और अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए। क्या पता आप भी बॉलीवुड सरताज बनने के बजाय बॉलीवुड सरताज बनाने वाले हो जाए।
1: बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: सो स्वीट
1: आपकी वॉइस वगैरह।
0: तो आबिद, चलिए हम जो फॉर्मेलिटी वो पूरा कर लेते हैं कि हमने जो सवाल पूछा था, बंदर फिल्म में बॉबी देओल के किरदार का नाम क्या है, आपने सही जवाब दिया है। एक बार ऑन एयर बता दीजिए।
1: बॉबी देओल का नाम है समीर मेहरा।
0: समीर मेहरा, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ बनते हैं आबिद आज के बॉलीवुड सरताज। कॉन्ग्रेचुलेशंस खान आबिद जी। आबिद, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, आप क्या करते हैं और कैसे आकाशवाणी रेनबो के साथ दिन भर जुड़े रहते हैं?
1: जी मैं तो डेली सुनता हूँ उसको, डेली ऑन एयर आपका आपको प्रोग्राम सुनता हूँ डेली।
0: कैसे सुन पाते हैं, मतलब आपकी जॉब है, आप कुछ अपना काम करते हैं?
1: शॉप है मेरी अपनी क्रिकेट की।
0: ओके,
1: उसमें क्रिकेट का सामान होता है मेरे पास।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। तो आबिद, मुझे लग रहा है कि आपके पास आना चाहिए, मेरठ में ही तो है, ज्यादा दूर नहीं है आपसे।
1: जो क्रिकेट आइए, वो मोस्ट वेलकम मैम।
0: क्रिकेट के आइटम्स है
1: ये तो बहुत अच्छा लगेगा,
0: उस पर कुछ कंसेशन तो दे ही देंगे, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? और बॉलीवुड सरताज के बनने के लिए एक बार फिर से मुबारकबाद। थैंक यू, बाय बाय।
1: बाय बाय।
0: तो ये थे मेरठ वाले खान आबिद जो आज बने बॉलीवुड सरताज। आप भी जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ और एक से एक शोज एंजॉय करते रहिए। प्ले इट कूल लेकर थोड़ी देर में निहारिका आ जाएंगी, उसके बाद फिर एक खास प्रोग्राम आता है रेनबो हेल्पलाइन। एक बार फिर से आपके साथ होंगी मैं बबीता त्रिपाठी, और साथ में होंगे हमारे साथ आज के एक्सपर्ट अनिल सेठी जी, जो आज आपको किस तरह से रिलेशनशिप को मैनेज किया जाए उस पर बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना किसी भी रिलेशनशिप को निभाने में, तो आप उनसे कांटेक्ट करिएगा फोन लाइंस के जरिए या फिर मैसेजेस के जरिए, अपनी बात जरूर करिएगा। दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाइए। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, लौट कर आती हूँ एक घंटे बाद। बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।

0: के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी है और आपके साथ मैं हूं बबिता त्रिपाठी। शो है रेनबो हेल्पलाइन और हमेशा की तरह रेनबो हेल्पलाइन में एक हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो किसी खास टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ना सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपको गाइड करेंगे, आपको राह दिखाएंगे और कहीं आपके रिश्तों में ब्लॉकेज आ रही है तो उसको खोलने का काम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ इस तरह से है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल सेठी से जो कि हैं लाइफ कोच। तो सबसे पहले कहते हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी, एक बार फिर से।
2: लक्ष्मी जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है
1: जी। तो मेरा नाम वैसे बबिता त्रिपाठी है

0: लेकिन उन्होंने राजलक्ष्मी बताया मेरे को, सॉरी।
1: अच्छा वो हमारे बॉस का नाम है। और तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। और फोन नंबर्स आप सबके लिए हमेशा की तरह खुले हुए हैं और उनका उपयोग करिए। और अगर रिश्तों में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आ रही है तो उसके लिए आप गाइडलाइंस इनसे ले सकते हैं। किस तरह से वो गाइड करेंगे अभी थोड़ी ही देर में आप देखिएगा, और आपके जो रिश्ते हैं वो एकदम मधुर हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 2342-1080 या 2342-1084 ये लाइंस खुली हैं, इनका लाभ उठाइए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। बहुत सिंपल है, एक नंबर है 9868107070, इस पर अपनी बात लिखकर भेजिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है रिश्ते में तो उसका हल यहाँ पर जरूर निकलेगा। तो अनिल जी, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? ये रिश्तों में इतनी सारी उलझने क्यों हैं?
0: देखिए, ऐसा है कि आज भाग दौड़ की जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे पीछे रह गई तो वो रिलेशनशिप ही रह गए।
1: हाँ, ये बात है।
0: सब कहते ना, कमर्शलाइज हो गए सब कुछ। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम पैसा कमाने की दौड़ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि रिलेशंस के लिए समय नहीं देते। और जब आप किसी चीज को समय नहीं देते, देखिए, आप एक बीज भी कहीं डालें, पौधा लगाएं और उसको हवा पानी ना मिले, उसको खाद ना मिले तो मुरझा जाएगा, वो कभी फल फूल नहीं सकता। उसी तरह से रिलेशनशिप्स भी हैं। आज देखिए ना, आप शादियों का हाल क्या हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट एट डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति वो फेथ बन ही नहीं पाता, क्योंकि हम एक दूसरे को समय नहीं देते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, और उसमें फिर जो है उल जलूल हम उसमें डिसीजन ले लेते हैं और रिएक्शंस ज्यादा आते हैं, रिस्पॉन्सेस कम है। आजकल आदमी के अंदर पेशेंस कम हो गया है और रिएक्टिव बहुत हो गया है।
1: और ये पेशेंस की कमी भी तो कुछ मतलब ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से हो रहा है, और उनको हम दूर करें, कोशिश करें, कैसे करें?
0: देखिए, समय कम है, इंसान ज्यादा अचीव करना चाहता है कम से कम समय।
1: मतलब लोग एम्बिशियस ज्यादा हैं,
0: बहुत ज्यादा, और मतलब एक्सपेक्टेशन कैपेबिलिटीज और अपनी उसको देख के शायद आगे नहीं बढ़ते, वो दूसरों से कंपेरिजन ज्यादा कर रहे होते हैं। मुझे उससे ज्यादा कमाना है, उसका मेरे से ज्यादा कैसे, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है। आज इंसान अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है।
1: ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं रही थी
0: ना, पहले नहीं थी। पहले लोग आपके खुश में खुशी, सुख में खुशी होते थे और आपके साथ सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि रिश्ते एक बड़े ट्रांसपेरेंट से रिश्ते होते थे और बड़े दिल से रिश्ते होते थे। आज दिमाग से रिश्ते होते हैं, आज रिश्ते दिल से नहीं होते, दिमाग से होते हैं। अगर मेरी आपसे कोई जरूरत है या कोई मेरा पर्पज हल हो रहा है तो मेरा आपसे रिलेशन है, अदरवाइज आप कौन है, मैं कौन है, मैं जानता ही नहीं। तो बेसिकली आज की डेट में रिश्तों के मायने ही बदल चुके हैं
1: जी, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स तो हर जगह देखने को मिल रही है, चाहे माँ बाप के साथ रिलेशनशिप हो, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ हो, पति पत्नी का तो है ही बहुत कॉमन, और हम सब रोज कुछ ना कुछ नया।
0: वृद्धाश्रम हमारे देश में इतने हुआ करते जितने आज हैं।
1: तो ये सब डिस्कशन का विषय है और जरूरी है कि इन पर बात करें और इन पर सोचें, थोड़ा ठहरें और अपने आप को, अपने लोगों को समय दें, और समय दें तो शायद समाधान भी निकल आएगा। और इस समाधान को और कैसे निकाल सकते हैं, हम बात करेंगे। अगर आपके साथ कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है किसी रिश्ते में, तो फटाफट फोन घुमाइए ना 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल लगाइए और डॉक्टर अनिल सेठी से अपनी बात, अपने दिल की बात कहिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं 9868107070। रेनबो हेल्पलाइन रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर आज बात कर रहे हैं हम डॉक्टर अनिल सेठी से।

अपने तो अपने होते हैं, हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अपने लोगों से हमेशा बनाकर रखो, रिश्तों को मैनेज करके रखो, कोई भी रिश्ता है छोटे बन के रहो या फिर सहन करना सीखो। लेकिन इतना कुछ सिखाने के बावजूद, करने के बावजूद, देखने के बावजूद, कई बार हम फैमिलीज़ में भी अच्छा कुछ देख रहे होते हैं, हमेशा अच्छी फैमिली में रहे होते हैं जहाँ पर बॉन्डिंग्स अच्छी थी, लेकिन आप कुछ और रिश्तों से मिलते हैं, फिर आप वहाँ पर ट्राई करते हैं, वो जो कुछ भी आपने सीखा है वो वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं फेल हो जाते हैं और वो रिश्ता टिक नहीं पाता है। तो ऐसे में रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या पकड़ कर रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, हमारे लिए बहुत बड़ी

0: प्रॉब्लम हो जाती है। आपके लिए भी ऐसी कुछ समस्या आती होगी ना, आपके पास अगर कोई ऐसी समस्या है जहाँ पर किसी भी रिश्ते को मैनेज करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आज का टॉपिक यही है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिस पर हमारे साथ डॉक्टर अनिल सेठी जुड़े हुए हैं जो कि लाइफ कोच हैं, और वो इस पर डिटेल में बात करेंगे, आपकी समस्या का हल सुझाएंगे। कैसे बात करेंगे? 2342-1080 से जब आप फ़ोन करेंगे, या 2342-1084 से आप कॉल करेंगे और उनसे बात करेंगे। अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाकर ये नंबर्स डायल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल भेज दीजिए, शो में शामिल हो जाएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन 9868107070, ये है हमारा व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर 9868107070। वैसे तो सवाल आने शुरू हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो आपका सवाल लेट आए और आपका सवाल कहीं ना कहीं रह जाए, तो फटाफट भेजिए, इन नंबर्स का लाभ उठाइए, इस शो का लाभ उठाइए। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी, और मेरे साथ डॉक्टर अनिल सेठी बताने वाले हैं कुछ और रीजंस जिनकी वजह से ये दरारें, ये तकरारें, ये खटास की बातें रिश्तों में होती हैं।
1: जी जी, देखिए पुराना जमाना था तो वहाँ पे एक जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, और वर्किंग स्टाइल भी डिफरेंट था, लोग इतने ज्यादा कमर्शलाइज या जॉब्स के इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं था, तो पुराने जमाने में करियर ऑप्शन भी लिमिटेड होते थे, तो उस समय पे लोगों के घर छोटे हों तो भी दिल बड़े होते थे। आज घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, उनका एक बच्चा है अमूमन, या मैक्सिमम दो बच्चे हैं। अब वो बच्चे कौन पाल रहा है, आया पाल रही है या क्रेश पाल रही है। बच्चों को जब माता पिता की जरूरत है, माता पिता नहीं मिलते, अब जो जो बंदा पेड सर्विस दे रहा है उससे आप प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। आप लकी हैं तो आपको मिल सकते हैं अच्छे लोग, मैं उसमें कतई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अब होता क्या है कि हम अपना समय ना दे पाने की गिल्ट से भरे होते हैं, और उस बच्चे को हम गैजेट्स देके, पैसे देके या खिलौने देके सोचते हैं हमने कंपनसेट कर दिया,
0: और बच्चा और जिद्दी होता जाता है।
1: बच्चा उसको जो एक्चुअली चाहिए वो नहीं मिल रहा, और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप सोचिए पुराने जमाने में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी ही हीरो हुआ करते थे बच्चों के, बच्चे उनके जैसा बनना चाहते थे। आज तो माँ बाप सामने नहीं होते, तो बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उस गेम में कोई आर्टिफिशियल करेक्टर है, इमेजिनेटिव करेक्टर है, बच्चा उससे इम्प्रेस हो गया, उसके जैसा बनना चाहता है। आप देखिए ना, रोज आप देखते हो कोई बच्चा गेम खेलते खेलते छत से कूद गया, कहीं कुछ हो गया, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ अटैच हो गया है। माता पिता के साथ अटैचमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि माता पिता समय नहीं दे पा रहे।
0: तो सर क्या समय की मजबूरी ही सबसे बड़ा कारण है?
1: वन ऑफ द मेन रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजन मैं कहूंगा, क्योंकि आज की डेट में ना क्वांटिटी ऑफ टाइम की जगह क्वालिटी ऑफ टाइम की जरूरत है।
0: हाँ बिल्कुल वही,
1: और वो कम्युनिकेशन बेसिकली सबसे बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन। अगर आप कुछ 15 मिनट 20 मिनट भी बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और बच्चे को एहसास दिलाते हैं कि बेटा हम आपके साथ हैं, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि होता क्या, देखिए कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हमारे देश में आपकी बात सुनने के लिए पेड सर्विस शुरू हो चुकी है। हाँ। कि जहां पे एक बंदा सामने, बंदा या बंदी बैठ के आपकी सिर्फ बातें सुनेगा, कितनी शर्म की बात है। मतलब हमारा देश जो कि रिलेशनशिप्स और फैमिली वैल्यूज के लिए जाना जाता है, वासुदेव कुटुंबकम को हम लेके चलते हैं, और यहाँ पे हमें दूसरों को पैसे देके, क्यों? हमें दूसरों पे भरोसा नहीं रहा। कि आज बंदा इतना कमर्शलाइज या इतना पैसे के पीछे पागल है कि अगर मैंने इसे कुछ बता दिया तो इसका मिसयूज ना कर ले, इसका कुछ फायदा ना उठा ले। तो आई ट्रस्ट यू इज अ बिगर कॉम्प्लीमेंट देन आई लव यू। और देखिए ट्रस्ट डेफिसिट वही होता है जहां पे आपको, मतलब जहां पे आपको ट्रस्ट होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: देखिए सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है पति पत्नी के बीच में, और आज जिस स्पीड से डाइवोर्सेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से क्राइम हो रहे हैं, मतलब देख के मुझे हैरानी होती है,
0: सब विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है।
1: मतलब ऐसे ऐसे खतरनाक इंसिडेंट सामने आते हैं, मतलब बिलीव नहीं कर सकते आपकी कैसे कैसी चीजें हो रही।
0: लोग तो, इंसान के रूप में किस तरह से भेड़िए घूम रहे हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये उपमा देना कई बार लगता है कि सही है।
1: आपको आज की डेट में बेटी की शादी करना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है,
0: बहुत रिस्की है। अब पहले ये, अब अगर हम सिर्फ पहले वाली चीज़ों को फॉलो करें तो पहले ये कहा जाता था कि दो फैमिलीज देख के, और आज एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप सबके सामने, हम सबके सामने आया कि फैमिलीज देख के शादी की जा रही हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और
1: प्री मैरिटल
0: फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है।
1: प्री मैरिटल काउंसलिंग में इसीलिए पति पत्नी सास ससुर इमीडिएट फैमिली सबको काउंसलर से मिलाया जाता है आज की डेट में, और जहां पे जरा सा भी डाउट होता है हम लोग उनको मना कर देते हैं कि ये घर आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है, या ये, क्योंकि दोनों के आपस में विचार मिलने बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी लेट मैरिजेज हो रही है, ये भी एक बड़ा रीजन है कि लेट मैरिज की वजह से अडॉप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है।
0: बिल्कुल, अडॉप्ट नहीं कर पाते उस फैमिली को, उस या हस्बैंड को,
1: बिल्कुल,
0: या वाइफ को।
1: एक दूसरे के व्यवहार को एक्सेप्ट करना तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे के उसपे मोल्ड होना ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
0: बिल्कुल, और लेकिन कोशिशें वही की जाती हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है।
1: बिल्कुल, मतलब अगर
0: तो
1: आप
0: वो नए जमाने के हिसाब से एक पार्टी अगर चेंज हो गई है दूसरी नहीं कर पाएगी तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर
1: दो महीने के बच्चे को आप, उसने दूध अगर नहीं उसको पीने की इच्छा तो आप जबरदस्ती पिलाओगे उल्टी कर देगा।
0: हाँ बिल्कुल,
1: एक दो महीने का बच्चा।
0: हाँ,
1: और आप 25-28 साल के बच्चे, लड़का या लड़की को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चेंज हो जाएगा,
0: नहीं होते,
1: नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: तो बेसिकली हमारे बेसिक्स बदल चुके हैं, हमारे बेसिक्स के हिसाब से हमें नए माहौल के हिसाब से नए फार्मूलाज बनाने पड़ेंगे।
0: तो चलिए सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि ये शो आप सब के लिए है तो आपकी जो बातें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिलहाल एक लाइन पर कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं फिर मैसेजेस लेते हैं कुछ। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी राकेश जी बताइए।
2: जी तो मेरा सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब को, नमस्कार बोल रहे हैं।
2: जी जी, तो
1: आवाज मुझे नहीं आ रही।
2: जी जी जी, तो मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि आजकल जो कुछ बच्चे और बच्चा कॉलेज और स्कूल में फ्रेंडशिप जो बना देते हैं, कई बार क्या होता है उन मुझे खटा आ जाते, कई बार जो है आपस में लड़ बैठते, तो उनको क्या राय देगी आप?
0: तो कई बार दोस्ती में खटास आ जाती है स्कूल कॉलेजेस में जो फ्रेंड्स होते हैं, तो ये सभी फ्रेंड्स पर लागू होगा, वैसे स्कूल कॉलेजेस के फ्रेंड्स भी और बाहर भी। तो हम बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम सवाल है, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिससे, जिसमें हम जो बातें माँ बाप को भी शेयर नहीं कर पाते कई बार उनको करते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप को भी मैनेज कर पाना लाइफ लॉन्ग बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों हो रहा है और क्या कैसे कर सकते हैं बताइए सर?
1: आज की डेट में अच्छे दोस्त मिलना,
0: हाँ,
1: अगर आपके पास जिंदगी में एक तो अच्छा दोस्त भी है,
0: हाँ,
1: तो आप खुशकिस्मत हैं।
0: जी,
1: तो इसमें टाइम टेस्टेड कहते हैं रिलेशनशिप को, जिसने टेस्ट ऑफ टाइम दिया हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप हर किसी को तो अपनी बातें बताते नहीं है, लेकिन बचपन से जो आपका दोस्त है यू शेयर, और शेयरिंग दोनों तरफ से हो रही है तो ठीक है, अगर सिर्फ एक ही बंदा शेयर कर रहा है तो गलत है। तो आपको थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा देखभाल के अपनी चीजें करनी चाहिए, और अगर आपको कहीं पे 1% भी डाउट है तो थोड़ा सा ब्रेक लगानी चाहिए मेरे हिसाब से।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर आपको एक भी अच्छा दोस्त आपको मिल गया है और उसके अंदर कुछ, देखिए कमियां भी हो सकती हैं, आपके अंदर भी कमियां हो सकती हैं, तो अगर उसके बावजूद दोनों आपकी दोस्ती बचपन से अभी तक बरकरार है, और जितनी पुरानी दोस्ती होती जाती है उतनी आपके लिए वो जरूरी होती है, क्योंकि दोस्तियां बहुत जरूरी हैं। क्योंकि किसी एक बड़े आदमी ने कहा था कि कोई भी इतना अमीर नहीं कि जो अपना बचपन खरीद सके, ये सिर्फ आपके बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ आप वापस बचपन में जा सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसी रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ होते हो। तो मतलब मैं खुद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे पास लाइफ में, और वो जब भी हम लोग मिलते हैं ना तो हमारा वो समय कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। अब लेकिन उसके अंदर हर एक की शेयरिंग कितनी है, हर एक ने अपने हिसाब से शेयरिंग की हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उसको कोई छोटी सी चीज शेयर करी और उसने वो आगे किसी को बता दी तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए।
0: ओके,
1: मेरा ख्याल है कि टेस्ट कर लेना चाहिए जरूर, कोई इसमें बुराई नहीं है बिल्कुल भी। दोस्ती फिर भी रहे, दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अपना दिल हल्का करने के लिए कुछ बता रहे हैं किसी को तो वो सामने वाले को एक बार टेस्ट तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिस बैंक में पैसे जमा कर रहे हो उस बैंक की क्रेडिबिलिटी तो देखोगे ना एक बार।
0: तो दोस्तों को भी बीच बीच में चेक करते रहना बहुत जरूरी है, और इस वजह से कई बार रिश्ते नहीं टिक पाते क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा या ब्लाइंडली भरोसा करते हैं।
1: एक रीजन और भी है उसमें कि देखिए आप हर वक्त उनके साथ नहीं है, हो सकता है इन बिटवीन उसकी परिस्थिति कैसी हुई हो, उसको कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो गई हो, वो गलत संगत में पड़ गया हो, आपको नहीं पता।
0: और कई बार हमारी गलतफहमी हो जाती है, हम उसके बारे में कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, हम खुद कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं।
1: तो कम्युनिकेशन गैप भी आल्सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट
0: बड़ी प्रॉब्लम है जी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं और फोन्स भी आ रहे हैं, फोन लाइन्स भी खुली हुई हैं आप सबके लिए। फटाफट इन नंबर्स का यूज़ कीजिए, 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करिए या 9868-107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए कि आपके रिलेशनशिप में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर अनिल सेठी लाइफ कोच हमारे साथ हैं रेनबो हेल्पलाइन में।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: दिल का रिश्ता हमेशा से ही प्यारा रहता है, बस वो सच्चा होना चाहिए, चाहे पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, या बच्चों का अपने माँ बाप से हो, या फिर टीचर से। ये रिश्ते जो है ना, हमें थोड़ा सा खाद पानी, जैसा कि सर ने कहा, डालते रहना चाहिए ताकि ये बने रहें। हम सबको पता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एफर्ट कितना लगा रहे हैं ये शायद हम कहीं मिस कर रहे हैं। टाइम नहीं दे पाना अलग बात है, आज का लाइफस्टाइल चेंज है अलग बात है, लेकिन हमें भी पता है कि जो असली खुशी है ना, वो रिश्ते ही देते हैं, और उसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिख रही हैं कि आफ्टर माई पेरेंट्स डिमाइज माई सिबलिंग्स हैव सॉलोड माई शेयर इन द इनहेरिटेंस, माई लव फॉर देम हैज़ डिसअपियर्ड। इफ आई फाइल अ सिविल सूट इन कोर्ट, दैट मीन्स रिलेशनशिप्स आर ब्रोकन फॉर होल लाइफ। वॉट वुड यू रिकमेंड?
1: जोया जी, आपने एक तो ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखा, ये बड़ी खुशी की बात है
0: जी।
1: देखिए, आप बहुत पेन में होंगे, क्योंकि अगर अपनों से तकलीफ होती है, अपनों से जब धोखा मिलता है तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या आपको पता है कि आपका कुछ था, मतलब आपके नाम पे कुछ था, या पेरेंट्स आपके लिए कुछ छोड़ के गए थे? मुझे नहीं पता। आपको उसमें थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखनी चाहिए, और अगर कुछ था और लीगली अगर उसमें अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने सिबलिंग से बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है बातचीत से भी सलूशन निकल सकता है। लॉ सूट लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप बातचीत करें और बातचीत से ही सलूशन निकल जाए तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप पहले उनसे बातचीत करें, अगर बातचीत से सलूशन निकल जाए बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो फिर एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पोजीशन, कि आपके पास कुछ लीगल उसका कुछ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो जरूर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी गलत है कि हर चीज में आप बिल्कुल गिव अप कर दें, लेकिन शुरुआत सीधे लॉ सूट से नहीं होनी चाहिए, बातचीत से होनी चाहिए। हर चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, हो सकता है उनको पता ही ना हो कि आपका भी कुछ उसमें शेयर था। मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे देश में विल बनाने का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, लोग बहुत सारे भूल जाते हैं। मतलब आइडियली होना चाहिए कि जो भी बुजुर्ग माता पिता हैं उनको अपना विल बना देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और बाद में दिक्कत होती है, बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप उसको थोड़ा अपने पहले अपनी ग्राउंड चेक करें, उसके बाद अगर आपको लगे हाँ आपका फेयर शेयर था कुछ उसके अंदर, तो आप अपने जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उनसे बात करें, और अगर वो एमिकेबली कुछ सोल्यूशन निकल आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकलता तो फिर आपको कोर्ट में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: बारिधि का मैसेज आ रहा है, और इन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड वर्किंग है और मैं ये स्टे एट होम मदर हूँ। मैं स्टे एट होम वाली मदर हूँ, जो मतलब घर से ही इन्होंने काम किया हुआ है, और चाइल्ड केयर इनके ऊपर ही है, और इसकी

0: से मैं बहुत थक जाती हूँ। कभी-कभी इस वजह से मेरा मूड बहुत खराब रहता है, क्योंकि मुझे अपने लिए पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है। घर के काम, मेरे हस्बैंड ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते घर के कामों में, मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ, और उनको ये बात शांति से कैसे समझाऊँ?
1: देखिए, आप अकेली ऐसी नहीं हैं जिनके साथ ये परिस्थिति है। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा, देखिए, बच्चा या बच्ची जो भी आपके पास है, वो कभी ना कभी कुछ समय तो आपको देती ही होगी, कभी सोते समय या कभी खेलते समय। तो मुझे लगता है कि आपको पति के आने के बाद पति को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, थोड़ा सा हेल्प करो, मेरे को थोड़ी मदद करो। और वो प्यार से होनी चाहिए। मतलब आप ये मत मान के करिए कि मैं इतना कर रही हूँ तो आप ये करो। मतलब इट शुड नॉट बी डिमांडिंग और कमांडिंग, इट शुड बी एक पोलाइट कन्वर्सेशन, इट शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव कन्वर्सेशन। क्योंकि अगर अथॉरिटेटिव होगा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कन्वर्सेशन में बहुत सी बार शब्द से ज्यादा किस ढंग से कहे गए शब्द हैं उससे ज्यादा तकलीफ होती है लोगों को। तो उसका जरूर ख्याल रखिएगा। और बात करने में कतई कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है, आपको जरूर बात करनी चाहिए। और आप अगर अपने लिए समय चाहती हैं तो समय निकलना चाहिए। अगर सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है तो उनको सैटरडे संडे में कुछ आपको टाइम देना चाहिए, बच्चे को टाइम देना चाहिए। और उनको ये बात समझानी चाहिए कि पेरेंटिंग में दोनों का रोल होता है और बच्चे को दोनों की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि वर्किंग है, पढ़े लिखे हैं आपके हस्बैंड, तो वो समझेंगे इस बात को। और अगर आपको इसमें कहीं पे दिक्कत आती है, वो नहीं, कुछ आपके एफर्ट्स उतने फ्रूटफुल नहीं होते, तो आप किसी काउंसलर से या ऑनलाइन पेरेंटिंग के सेशंस वालों से या काउंसलर से बातचीत करके सलाह ले सकती हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर कोई वहाँ पे दिक्कत आती है तो समबडी कैन हेल्प यू कि हाउ टू डील विद इट। क्योंकि देखिए, या उसके आपके बच्चे के दादा दादी ना नानी, उनको आप इन्वॉल्व कर सकती हैं कि आपको समय नहीं मिल रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि कैसे कुछ आपको अपने लिए समय निकाल पाएं आप। और मेरा ख्याल है कि आपको कुछ नहीं हो तो कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन रोज सुबह शाम शुरू कर देना चाहिए। वो ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन आप अगर वो देखेंगी तो आपको उससे आपको थोड़ी सी ये जो एग्रेशन है या जो आपके अंदर एंग्जाइटी है या जो आपको लग रहा है कि कुछ कमी है या गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो थोड़ा सा ठीक होगा। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप अच्छा खासा, आपका हंसता खेलता परिवार है, तो किसी एक छोटे से एक्शन रिएक्शन से वो गड़बड़ ना हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट।
0: प्रॉब्लम यही आती है कि हम छोटे से एक्शन रिएक्शन से कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके होते हैं, और उसके बाद रियलाइज़ होता है। जैसा कि अभी एक मेरे पास मैसेज आया है, और उनमें भी सर यही हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो चुके हैं, और अब उनको हस्बैंड को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी फैमिली को वापस पाने के लिए। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इनकी वाइफ और ये 3 ईयर्स से अलग रह रहे हैं, और 12 साल की इनकी बेटी है, 8 साल का बेटा है, और अब एक केस भी उन्होंने डाल दिया है इनके ऊपर, और बच्चों से वो मिल नहीं पा रहे हैं, डिवोर्स की मांग कर रही हैं वो। लेकिन अब 3 ईयर्स के स्ट्रगल के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको अपनी फैमिली वापस चाहिए, और इसके लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं।
1: देखिए, कहते हैं जब जागे तब सवेरा। कई बार बहुत देर हो जाती, जैसे इनके केस में बहुत देर हो गई है कि अलग रह रहे हैं और 3 साल के बाद इनको रियलाइज हुआ है। तो आई विश थोड़ा जल्दी होता तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अगर इनका जो इनका अवेकनिंग है वो जेन्युइन है तो इनको एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे मिसट्रस्ट इतना हो चुका है, क्योंकि 12 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा ऑलरेडी है, इसका मतलब 14-15 साल की रिलेशनशिप है, तो मिसट्रस्ट बनने में एक दिन नहीं लगा होगा। वो तो बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने एक अपनी कंडीशनिंग कर दी। और
0: फिजिकली
1: आप,
0: ये अपार्ट अभी हुए हैं, बट 3 साल पहले, लेकिन उससे पहले से ये सब शुरू हो
1: तो
0: गया था।
1: मतलब उन्होंने आपकी एक्शंस रिएक्शंस सब देखे होंगे। मुझे नहीं पता आपके बीच में क्या क्या हुआ, वर्बल कितनी ऊंची नीची बातचीत हुई या कोई फिजिकल भी एक्टिविटी हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आपको पूरा जी जान लगा के एफर्ट्स करने चाहिए। और क्योंकि अगर आज भी जुड़ जाएं वापस, कहते हैं ना रहीमन धागा।

0: का प्रेम का मत जोड़ तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ तो पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी ना होने से अच्छा है। तो मैं इसलिए आपको पूरी शुभकामनाएं दूंगा कि आप उसमें अपने एफर्ट्स पॉजिटिवली विदाउट शोइंग टेंट्रम्स, विदाउट शोइंग एनी नेगेटिव इफेक्ट, विदाउट यू नो गिविंग पास्ट रेफरेंसेस, क्योंकि जब ये डिस्कशंस होते हैं ना तो लोग पास्ट रेफरेंसेस बहुत देते हैं और वहां पे सारी कहानी खराब हो जाती है। अगर आपका सामने वाला, अगर आपने डिसाइड किया हुआ कि मुझे रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है तो आपको ठंडा होना पड़ेगा, बिल्कुल ठंडा होना पड़ेगा और आपको अपनी पास्ट गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कहते हैं आई एम सॉरी डज नॉट मीन यू आर राइट आई एम रॉन्ग, इट ओनली मीन्स आवर रिलेशनशिप इज बिगर देन अवर ईगो। तो अगर आपको माफी भी मांगनी पड़े तो मुझे लगता नहीं कि आपको उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर वो वाइफ आज आपकी इतनी जिद पे अड़ी है कि आपको अलग चाहती हैं, डिवोर्स चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मेजर डैमेज हो चुका है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे कि वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी वापस चालू हो जाए।
1: और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके सवाल आने चाहिए। 2342108023421084 पर कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फटाफट अपना सवाल भेज दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 9868107070 पर लिख कर भेजिए आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से और किस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जरूर लिखिए। और गाइडेंस देने के लिए डॉक्टर अनिल सेठी बिल्कुल तैयार हैं, जो कि लाइफ कोच हैं। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी, रेनबो हेल्पलाइन में।

रियली डरने की बात तो है, और हम सब जो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए हैं, और डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि ज़माना

0: बदल गया। अब बहुत सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं है, और जब पता चलता है तो हम कहते हैं हाँ ऐसा भी होता है क्या। और ऐसा ही कुछ एक सवाल लेकर एक पेरेंट है हमारे साथ, और उनका भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन है, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका जो सवाल है वो जेंसी को लेकर। हेलो
1: हेलो नमस्कार, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है शुभजीत।
0: जी शुभोजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी
1: डॉक्टर
0: रेनबो
1: साहब को
0: पर।
1: नमस्कार। मैम
0: नमस्कार
1: आपको भी
0: शुभजीत जी,
1: नमस्कार। जी,
0: नमस्कार।
1: मैं एक कठिन सवाल पूछने के लिए फोन किया, क्योंकि मेरे समझ में तो ये नहीं आता है। जैसे कि जेन जी में काफी सारा टर्म्स आ गया है, जैसे सिचुएशनशिप, डिल्यूशनशिप, घोस्टिंग, ये सब मैं जिंदगी में नहीं सुना। इवन ब्रेड क्रम्बिंग किसको बोलते हैं वो भी पता नहीं, लेकिन सुनते हैं। अभी जैसे कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो यही दिखता है। तो मुझे ये सवाल पूछना है कि ये टर्म हमारे जमाने में, जैसे कि मैं 80s का हूँ, तो हमारे जमाने में क्या ये सचमुच कुछ था, ऐसा कोई वर्ड, या शायद वर्ड नहीं, ऐसा कोई मतलब था, और न कि ये जेन जी का खुद ही इन्वेंटेड वर्ड है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को और भी कॉम्प्लेक्स की तरह देखते हैं, या फिर इसका वेराइटीज आ चुका है? और जो
2: देखिए
1: पेरेंट जो है ये इनको क्या एक्स्ट्रा केयर लेना है, क्योंकि मैं बहुत केयर्ड हूँ, क्योंकि काफी
0: चलिए
1: सारा केसेस आते हैं जहां पर पेरेंट्स को कोई शेयर नहीं करते बच्चे, और बच्चे कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले लेते।
0: ये सभी
1: देखिए हम
0: पेरेंट्स की
2: शुभ्र
0: लगभग
2: जी, सबसे
0: प्रॉब्लम
2: पहले
0: है, तो
2: तो
0: ध्यान से सुनिए
2: आपने
0: उनकी बात।
2: इतना बढ़िया सवाल पूछा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये आज सब माता पिता का परिस्थिति है, सब माता पिता इससे जूझ रहे हैं।
0: जी
2: अब देखिए जो जेंजी के टर्म्स हैं वो रोज नए नए आ रहे हैं, और उसकी वेकेबलरी और उसकी मतलब वो समझना कई बार सबके लिए उसे पेस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है, अगर आपका अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, ट्रस्ट बना हुआ है, आपको एक दूसरे पे विश्वास है, और बच्चा आपका आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा है, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखें अगर कहीं पे आपके बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन ब्रेक तो नहीं हुआ है, अगर हो रहा है तो प्लीज उसे अभी ठीक कर लीजिए।
0: जी
2: वो हो सकता है कि मम्मी पापा दोनों का कम्युनिकेशन सेम ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से एक के साथ उसका 100% कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि दिक्कत वहां होती है जब वो बच्चे आपको अपनी बात शेयर करने से घबराने लगते हैं, क्योंकि आपके रिएक्शंस कई बार उनको पसंद नहीं आते, आप बड़े डिफरेंट ढंग से रिएक्ट करते हो। आज की डेट में आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। रिएक्शन बहुत खतरनाक चीज है, आपको रिस्पांस देना चाहिए, सोच समझ के रिस्पांस देना चाहिए, क्योंकि आपकी कही हुई हर बात टीनेजर्स को तो खास तौर से बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एक्शन लेने पे मजबूर कर देती है। और आज की डेट में जब माता पिता पूरा समय नहीं दे पाते हैं, मुझे आपकी परिस्थिति का पता नहीं है कि आप कितना समय दे पाते हैं अपने बच्चे को, और आपके साथ कितना कम्युनिकेटिव है बच्चा आपका। अगर वो कम्युनिकेटिव है और आपको हर बात बता रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, अगर वो आपसे पूरी बातें बता नहीं रहा और आपको उसके सोशल मीडिया से या उसके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें पता चल रही हैं, तो इट्स अ बिग अलार्म फॉर यू। आपको अभी भी बच्चे के साथ अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिशें करनी चाहिए। बच्चे के साथ एक वो स्ट्रिक्ट पेरेंट वाले की जगह एक दोस्त बन के उससे बातचीत करनी चाहिए। कभी उसे आप बाहर वन टू वन, वन ऑन वन कॉफी पे ले जाएं, या जो उसको पसंद हो कुछ भी, तो उसमें जाएं और उससे इनफॉर्मल बातचीत करें, एक दोस्त के तरीके से बातचीत करें। उसको भी जब आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा कि पापा मेरे मेरे से हर बात कर लेते हैं, यू कैन शेयर योर पर्सनल स्कूल टाइम किस्सा, जस्ट टू गिव देम यू नो सम फेथ, सम ट्रस्ट।
0: और सर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अपनी गलतियां भी बतानी जरूरी
2: yes,
0: है।
2: वही वही वही वही
0: मैं क्योंकि
2: वही
0: बच्चों को लगता है कि पापा मम्मी परफेक्ट हैं,
2: हाँ,
0: और उन्होंने कभी
2: उनको
0: कोई गलती
2: हमारे
0: की नहीं।
2: पेडेस्टल पे बढ़ा देते मम्मी पापा।
0: हाँ हाँ और हम ऐसा ट्रीट भी ऐसे उनको करते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट भी ऐसे कई बार करते हैं अननोइंगली कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।
2: हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं, मेरे
0: जबकि हमने थाउजेंड्स ऑफ गलतियां की हुई होती हैं अपने।
2: बिल्कुल हम वो छुपा के रखते हैं, हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, बच्चों के सामने अपने आप को बड़ा पिक्चर रियलाइज करते हैं हमने बड़ी मेहनत की, हमने बड़े पापड़ बेले, हमने साइकिल चला के जाते थे स्कूल एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल से उसकी जरूरत आज बच्चों को नहीं है। बच्चों को लगता है फालतू की बातें क्यों कर रहे हो भाई, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, आपने अपने समय में किया। देखिए हर आज के जो 80s के लोग हैं उनके पास आज

0: थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा.
1: सर प्रॉब्लम ये है कि अभी आज के जो बच्चे हैं ना वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको सब क्लियर है कि
0: यस,
1: उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो इतना क्लियर है कि आप आपको डाउट में डाल
0: हम उस जमाने में
1: सकते
0: इतने क्लियर नहीं थे.
1: हो. बिल्कुल हम नहीं थे, हमें लगता था पापा मम्मी जो कह रहे हैं वो सही है.
0: सही है बिल्कुल.
1: तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए बल्कि इस
0: बिल्कुल.
1: चीज के लिए
0: देखिए आज
1: वो...
0: इंटरनेट के जमाने में, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चे हमसे ज्यादा समझदार.
1: हाँ, उनको
0: मान लेना
1: नहीं पता है. बिल्कुल
0: हमें यह मान लेना चाहिए
1: और हम ये मानने के लिए तैयार नहीं.
0: यही है तो जेन जी कुछ भी है वो देखिए बेसिक्स हमारे कभी नहीं बदलते.
1: हाँ.
0: तो अगर आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, कम्युनिकेशन चालू जारी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनसे.
1: सर एक रिश्ता हमने बात नहीं की, ऑफिस के रिश्तों की. ऑफिस में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पता होता है कि अगला हमसे जलता है, अगला को मेरे से प्रॉब्लम है, बट उनके साथ मैनेज करके रहना है.
0: देखिए ये एक बड़ा डाइसी सिचुएशन है.
1: ऐसे में खुश कैसे रहे?
0: नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि आप भगवान तो है नहीं कि सबको खुश कर दें.
1: हाँ,
0: आज की डेट में लोग भगवान से भी पूरी तरह खुश नहीं है.
1: हाँ.
0: तो मेरा मानना यह है कि अपनी तरफ से कोई उसमें कंट्रीब्यूट ना करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें. क्योंकि देखिए आप अपने कटोरे में मीठा रखें, कड़वा ना डालें कुछ भी. तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो परसों नहीं तो नरसों, उसको भी रियलाइज होगा कि नहीं यार इस बंदे ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया.
1: हाँ.
0: तो मैं इसके साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा हूं.
1: हुँ.
0: वो और वो रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन होगा, वो आपके कहने से नहीं होगा.
1: हाँ.
0: ये बात मान लीजिए.
1: थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा,
0: पेशेंस रखना पड़ेगा. रिलेशनशिप इस तरीके की जो है ना, ये देखिए आज की डेट में आपका शुभ होते देरी से चिंता हो जाए वो शुभ चिंतक है आपका.
1: तो बहुत शुभ चिंतक मिल जाते हैं ऑफिस में, ज्यादा मिलते हैं.
0: इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ, आपको मानना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए.
1: अच्छा.
0: कि दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, और आपके आपकी परेशानी में चिंतित होने वाले लोग कम मिलेंगे. आपके साथ आपके दुख में खड़े होने वाले लोग कम मिलेंगे
1: जी.
0: और आपके सुख में खुश होने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है.
1: तो ये मान के चले तो खुश रहेंगे मेरे ख्याल से.
0: बिल्कुल. अगर कोई आपके सुख में खुश है तो आप बड़े खुशकिस्मत है.
1: अच्छा.
0: नहीं तो
1: बिल्कुल
0: मतलब आज की डेट में
1: सर, लेकिन ये पता कैसे करें कि ये वाकई में खुश है?
0: पता चल
1: कई, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि लोग कई बार दिखा कुछ और रहे होते हैं, होते कुछ और.
0: देखिए वही वाली बात है ना, आपने जो बात कही वो एक जोकर से किसी ने कहा आप मुखौटा क्यों लगाते हो.
1: हाँ.
0: बोले जी मुखौटे तो सब लगाते हैं, मेरा दिखता है लोगों का दिखता नहीं.
1: हाँ.
0: तो अब उसको तो आपको देखिए ओवर ए पीरियड टाइम
1: समझ में आ जाएगा,
0: असेसमेंट पता चल जाती है कि बंदा कह क्या रहा है कर क्या रहा है. कथनी और करनी में जो डिफरेंस मिलेगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा.
1: यानी थोड़े रिश्तों को टाइम देना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है.
1: और वो टाइम अगर नहीं देते हैं तो वो कई बार वो बढ़ते चले जाते हैं, वो जो दरार है वो बढ़ती चली जाती है. तो खाई को बढ़ने ना दे किसी भी रिश्ते में, थोड़ा टाइम दे और थोड़ा विश्वास अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखे तो वो कोई भी रिश्ता है वो चलेगा. और इसी तरह का एक रिश्ता, रिश्ते की बात जिसके बारे में कितना भी बात करें वो कम ही पड़ जाएगा. सुनील का मैसेज नागालैंड से आया है और इन्होंने कहा है कि वो जो डिवोर्स के केसेस हैं, इतनी सारी फैमिलीज ब्रोकन क्यों हो रही हैं. ये काफ़ी लंबा मैसेज इन्होंने किया है लेकिन बात एक ही है और इसके बारे में हमने काफ़ी बात की है. अभी फिलहाल टाइम अलाउ नहीं कर रहा है लेकिन सर बहुत बातें जो आप बताते हैं दिल में बैठ जाती हैं और जिस तरह से आप बोलते हैं लगता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता होगा. और बहुत सारे तारीफें भी इन्होंने लिखी है कि इनको शो अच्छा लग रहा है और मैसेजेस भी आ रहे हैं. तो सर क्योंकि टाइम बहुत कम है, चलते चलते कुछ दो चार लाइनें आपकी हो जाएं जो आप हमेशा मोटिवेट करके जाते हैं.
0: ऐसा है कि अगर जिंदगी में रिश्ते नहीं हो तो कुछ बचता ही नहीं है. जिंदगी में रिश्तों की बहुत जरूरत है, हर किसी को जरूरत है. ये आपका सपोर्ट सिस्टम है. ठीक है. और अच्छे रिश्ते कमाने पड़ते हैं. उसके लिए आपको अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. अच्छे रिश्ते, अगर आपके आसपास कोई अच्छा रिश्ता नहीं तो आप बन जाइए ना. अगर आप एक अच्छा रिश्ता बन जाएंगे किसी के लिए तो दूसरा भी रिश्ता रेसिप्रोकेट करना ही पड़ेगा उसको. बदले में वो आपके लिए अच्छा रिश्ता बनेगा ही बनेगा, वो चाहे भाई का हो, दोस्त का हो, कोई भी हो. और इनवेरिएबली कभी ना कभी वो चीजें आपकी मर्जी के हिसाब से होंगी जब आप जैसा आप चाहते हैं. लेकिन कहते हैं ना कि अपना हर चीज दो लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बार बार सिग्नल गलत मिल रहा है तो रुको. वो भी देखना चाहिए
1: जी.
0: कि आप एक लिमिट तक ही जा सकते हो, आप बिल्कुल अंधे होके नहीं चढ़ सकते कि भैया ये तो बंदा समझता ही नहीं कुछ, अपना अलग ही दुनिया में जी रहा है, कुछ अलग ही कर रहा है. तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट.
1: यस, तो हमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और हमें थोड़ा सा टाइम देकर समझकर कम्युनिकेशन के साथ अपने रिश्ते

0: को मैनेज करना जरूरी है और ये की पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया चलेगा। और अगर तब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। सर आपको, आप एग्री करते हैं या नहीं, थोड़ा बता दीजिए।
1: क्योंकि आप टेंशन लेके नहीं मिलता,
0: बिल्कुल टेंशन लेके नहीं रहना,
1: आसमान नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि तेरे जहां में प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं,
0: वहां नहीं मिलता। और कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस ये जो छोड़ना है ना, ये भी बहुत जरूरी है रिश्ते में। तो कई बार जो जरूरी ना हो या आपको जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको छोड़ना भी जरूरी है। तो इस तरह से अपने रिलेशनशिप को मैनेज करके रखिए। फिलहाल बबीता त्रिपाठी आपसे कहती है बाय बाय। आपके साथ थी मैं और साथ में मेरे थे डॉक्टर अनिल सेठी, लाइफ कोच, जो कि आज बात कर रहे थे रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर। फिलहाल बाय बाय।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और अब बात घर परिवार की जिंदगी की आशियाने की। जी हाँ, जिंदगी को जोड़ता, हमारे वजूद को पहचान देता हमारा आशियाना, हमारा घर। यूं तो घर का हर एक हिस्सा इम्पॉर्टेंट रहता है, वहीं बात रसोई घर की हो तो किचन रसोई घर को घर का दिल माना जाता है और घर के इस दिल की धड़कन होती है फ्यूल, ईंधन, हमारा रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, किचन में एलपीजी सिलेंडर के ख़त्म होते ही यूँ लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया है, रुक सा गया है। तो आज आशियाना प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम रसोई ईंधन को सेव कर सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर को, रसोई के ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। यूं ही आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मामगेन।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर,
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: AIR@90 ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन, प्रोग्राम आशियाना। और आज आशियाना में हम उन टिप्स की बात कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं जिन टिप्स को अपनाकर हम अपने रसोई ईंधन की बचत कर सकते हैं, रसोई गैस की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम फैक्ट्स की बात देखें और समझें तो जो LPG गैस है, जो ईंधन है, प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो प्रकृति में लिमिटेड है। खाना बनाने वाली गैस के भंडार पृथ्वी में एक निश्चित मात्रा में ही है और अगर हम उनका ज्यादा दोहन करेंगे, उन्हें बेजा इस्तेमाल करेंगे तो वो वक्त से पहले खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये पूरी दुनिया के लिए है। अगर हमने बहुत ज्यादा गैस का इस्तेमाल

किया, बेजा इस्तेमाल किया और सोच समझ के इस जो प्राकृतिक रिसोर्स है उसको नहीं इस्तेमाल किया, तो एक वक्त आएगा जब ये पृथ्वी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमें सुविधा दी है प्रकृति ने, भगवान ने, इसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जो प्राकृतिक गैस है उसको सही से इस्तेमाल करें। और आज आशियाना में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उन टिप्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके हम अपने रसोई घर में गैस का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बजट को भी, जी हाँ, अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, बजट को बिगड़ने नहीं दे सकते हैं। और बात की जाए रसोई गैस ईंधन की, तो देखा जाए तो जी हाँ जनाब, बहुत ज़्यादा बजट को बिगाड़ भी देती है अगर आप सही से इस गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ज़्यादा दिनों तक आपकी गैस चले, आपका बजट बिल्कुल ना बढ़े, इसके लिए कुछ उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे आने वाले वक्तों में। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, कहीं मत जाएगा, यूँ ही बनाए रखिएगा अपना साथ आकाशवाणी रेनबो के साथ।

आज आशियाना प्रोग्राम में हम रसोई गैस को बचाने के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में बात की जाए प्रेशर कुकर की, तो गैस बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जी हाँ, कुकर में खाना जल्दी पकता है जिससे गैस कम खर्च होती है। प्रेशर कुकर पूरी तरह से बंद होता है और भाप को अपने अंदर ही रखता है। इससे कुकर के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है, क्रिएट होता है और इस हाई प्रेशर के कारण कुकर के अंदर का तापमान बहुत जल्दी से बढ़ता है जिससे खाना जल्दी पकता है। जी हाँ जनाब, और इससे खाना पकाने में ईंधन भी कम लगता है। जी हाँ, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम रसोई गैस की बहुत बचत कर सकते हैं और साथ ही जब हम प्रेशर कुकर में खाना बना रहे होते हैं और जैसे ही प्रेशर कुकर में पहली सीटी बजने वाली होती है तो गैस की फ्लेम को हमें कम कर देना चाहिए जिससे कि कुकर के अंदर जो प्रेशर बना है वो बाहर निकलकर वेस्ट नहीं हो जाए। और उससे होगा क्या, वो प्रेशर अंदर ही रहेगा और खाना जल्दी पकेगा। और जैसे ही प्रेशर की पहली सीटी आने वाली हो तो आप गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो जो प्रेशर बना हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा और गैस आपने कम कर दी है तो उसी प्रेशर में पहले वो खाना बनेगा और उसके बाद थोड़ा सा आप कुछ टाइम बाद आप उस फ्लेम को और थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से कम कर दीजिए। इस तरीके से आप खाना बनाएंगे तो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो वेस्ट नहीं होगा और कम गैस में आप अच्छे से खाना पका पाएंगे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
0: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

क्या आप रोज जलेबी खा के अपनी भूख मिटा सकते हैं या फिर बाहर का खाना खा के रोज आपकी भूख मिट सकती है? बिल्कुल नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता है। हम सभी को घर का खाना बेहद पसंद है और घर का खाना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहता है। और घर का खाना हमें तभी मिलता है जब रसोई में रसोई गैस अवेलेबल हो, रसोई में ईंधन हो। और आज आशियाना प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन टिप्स की जिन्हें अपना कर आप अपने रसोई गैस को बहुत ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं। ना केवल आप अपनी गैस की बचत कर सकते हैं बल्कि अपनी जो पॉकेट है ना उस पर जो बोझ पड़ता है ईंधन का उसको भी कम कर सकते हैं। अभी हमने बात की प्रेशर कुकर के इस्तेमाल की जो बहुत बेहतर रहता है खाना बनाने के लिए। इसी के साथ

अगर हम प्रेशर कुकर के सेपरेटर की बात करें तो क्या कहने जनाब, ताकत दुगनी हो जाती है। जी हाँ, प्रेशर कुकर में सेपरेटर लगाकर आप एक ही बार में कई सारी चीज़ें पका सकते हैं और ईंधन बचा सकते हैं। जैसे आप दाल बना रहे हैं तो सेपरेटर अलग बर्तन कुकर में सेट करके आप चावल भी पका सकते हैं, एक ही टाइम में दोनों चीज़ें पक जाएंगी। इसी के साथ आप सब्जी पका सकते हैं, गला सकते हैं सब्जियों को, और दो अलग अलग तरह की दालों को भी सेपरेटर का इस्तेमाल करके आप उबाल सकते हैं। दाल चावल बनाते हुए एक अलग बर्तन को कुकर में रखकर आप परांठों के लिए आलू भी उबाल सकते हैं, या फिर आप दाल में ही आलू छील के डाल दीजिए, उसकी मिट्टी को हटा के डाल दीजिए और जो दाल है उसी के साथ आलू को उबाल लीजिए और बाद में निकाल के उसके परांठे बनाइए। फ्री के परांठे मिलेंगे आपको। फ्री के मतलब कोई भी उसमें गैस नहीं लगी होगी, उन आलुओं को उबालने में किसी भी तरीके का ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, क्योंकि दाल तो हम उबाल ही रहे थे और साथ साथ हमने उसी दाल में आलुओं को भी उबाल लिया। इसी के साथ साथ आलू है, घिया, तोरी है, कद्दू है, ये कुछ ऐसी सब्जियाँ रहती हैं जिन्हें अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती या अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सेपरेटर का इस्तेमाल करके भी इसे कुकर में पका सकते हैं, बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए रसोई गैस की, तो रसोई गैस में जी हाँ, खर्चा तो बहुत कम आता है। खर्चा बहुत कम इसलिए आता है जब आप सही तरीके से, समझदारी से उन टिप्स का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाते हैं जिनसे गैस की बचत की जा सकती है। और इन्हीं में से एक और टिप है, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम दाल बना रहे होते हैं तो दाल हम कुकर में उसको उबाल लेते हैं, लेकिन जब हम उसको छौंका लगा रहे होते हैं तो छौंक लगाते हुए हम टमाटरों को काट के डालते हैं, और टमाटरों को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा गैस का जी हाँ खपत होती है, इस्तेमाल होता है। तो जब दाल बना रहे हों तो जो साबुत टमाटर होते हैं उनको अच्छे से धो के दाल में ही डाल लीजिए, और क्या होगा, टमाटर दाल के साथ ही उबल जाएंगे। जब आप छौंक लगाते हुए उन टमाटरों को पकाएंगे तो वो पहले से ही सॉफ्ट होंगे, और ऐसे में समय भी कम लगेगा और साथ ही साथ ईंधन भी कम लगेगा और सब कुछ झटपट और कम समय में जी हाँ बन जाएगा। साथ ही साथ इसी के साथ एक और बात बताई जाए आपको, तो खाना पकाने के लिए हमेशा अपने कुकर के आकार के अनुसार ही बर्नर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम गैस स्टोव को देखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के बर्नर होते हैं। अगर आपका कुकर बड़ा है तो आप बड़े बर्नर में उससे खाना बनाएं, और अगर आपका कुकर छोटा है तो छोटे बर्नर का इस्तेमाल करते हुए कुकर में खाना बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने आपकी जो फ्लेम है, जो चूल्हे की फ्लेम है, वो कुकर से बाहर जा रही है तो कहीं ना कहीं गैस वो वेस्ट हो रही है। इससे होगा क्या, जी हाँ, गैस ज़्यादा लगेगी और क्या आगे खुद आप समझदार हैं।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी। जिंदगी निहाल और आसान हो जाती है जब हम रसोई घर में ईंधन से, रसोई गैस से मोहब्बत करने लगते हैं। जी हाँ, कुछ आसान से टिप्स जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करके रसोई गैस की खपत में कमी ला सकते हैं। रसोई गैस LPG बचाना ना केवल हमारे मंथली बजट को बिगड़ने से रोकता है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हेल्पफुल रहता है। जब हम किचन में जाते हैं तो कई सारी दालों के डिब्बे हमें दिखाई देते हैं। जी हाँ, राजमा, उड़द, छोले, चने, मूंग दाल, लोबिया, कुल्थ की दाल और भी कई सारी दालें, और ये सारी दालें सख्त होती हैं और ड्राई रहती हैं। तो जब भी हम बिना इनको भिगोए एकदम से बनाने लगते हैं ईंधन में, तो ये ज़्यादा वक्त लेती हैं गलने में और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ईंधन वेस्ट चला जाता है। ऐसे में क्या करें, जब भी आपको दालें बनानी हो तो लगभग एक घंटा पहले इन दालों को धोकर भिगो लें और उसके बाद जब ये दाल नरम हो जाए, एक घंटे में बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाती हैं दालें, आप एक बार देखिएगा ज़रूर। राजमा की बात की जाए, छोले चने की बात की जाए, तो ये तो हम 4-5 घंटे पहले भिगो देते हैं। अक्सर मम्मियों को हम देखते थे कि अगर उन्होंने सुबह राजमा या छोले या चने बनाने होते थे तो वो रात को ही भिगो के रख देते थे, इससे गैस की बहुत बचत होती है। तो ये सारे मम्मियों वाले टिप्स हम भी इस्तेमाल करके गैस की बचत कर सकते हैं। और क्या होगा, दालें पहले से नरम होंगी तो उनको पकाने में कम समय लगेगा और ईंधन की बचत होगी। साथ ही साथ अक्सर हमें ये भी देखने को मिलता है कुछ घरों में कि अक्सर क्या होता है, फ्रिज में ठंडा दूध होता है, ठंडा खाना रहता है, वो सीधा फ्रिज से निकालते हैं और गैस पे उसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। होता क्या है, जो बर्तन है वो फ्रिज में बहुत ठंडा हो चुका होता है, फ्रिज जो बर्तन के अंदर खाना होता है वो भी ठंडा होता है, और ऐसे में उन खाने को गर्म करने में ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है, ज़्यादा ईंधन लगता है। तो इस चीज़ को भी हम अवॉइड करें तो हम बहुत सा ईंधन बचा सकते हैं, बहुत से अपने रसोई गैस की बचत

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: दोस्तों की मस्ती हो।

0: बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको बताने हैं। तो जब भी आप खाना पकाएं तो बर्तनों को ढक कर बनाएं। जिस बर्तन में आप खाना पका रहे हैं उसको प्लेट से या फिर जो उसका बर्तन का ढक्कन होता है उसे ढक कर पकाएं। इससे होगा क्या कि जो भाप है वो अंदर ही रहेगी और खाना जल्दी पकेगा। और अगर आपने खुला, अगर उसके ऊपर कुछ भी प्लेट नहीं रखी है, बर्तन को ढका नहीं है, तो फ्लेम उड़ती जाएगी, जो भाप अंदर बन रही है वो जो एटमॉस्फेयर है उससे मिलती जाएगी और कहीं ना कहीं खाना पकने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसी के साथ साथ खाना पकाने से पहले पूरी तैयारी कर लें। अक्सर क्या होता है कि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो हमें ध्यान आता है प्याज काट लिए लेकिन लहसुन तो छिला ही नहीं है, अरे टमाटर कम पड़ रहे हैं, थोड़ा एक दो और काट लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हम जो गैस है उसे वैसे ही चलने देते हैं और ऐसे क्या होता है कि गैस वेस्ट होती जाती है। इसलिए जब भी खाना पकाएं तो पूरी तैयारी कर लें। जी हाँ, जो भी आपने काटना है, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो और धनिया हो या फिर टमाटर हो, उन्हें पहले से काट के रखें। सब्जी भी ऐसा ना करें कि गैस जला दें और उसके बाद में सब्जी भी काट रहे हैं और साथ में गैस भी जली हुई है, इससे बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट होती है। इसके साथ साथ जितना ज़रूरी हो खाना पकाने में उतना ही पानी डालें। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है तो होगा क्या कि पानी को उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद उसको जो खाना है उसे पकने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी के साथ साथ जब आप खाना पका रहे हों तो ज़रूर देखें कि आपका जो बर्नर है, गैस का बर्नर है, उसकी जो फ्लेम है, जो लौ है, वो नीली है या फिर पीली है या नारंगी है। क्योंकि अगर नीली लौ है तो इसका मतलब आपका बर्नर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। वहीं अगर आपके बर्नर की लौ पीली है या फिर नारंगी दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं बर्नर अंदर से गंदा है और बर्नर के जो छेद हैं वो सही तरीके से गैस को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि खाना पकने में ज़्यादा वक्त लगता है और गैस भी वेस्ट हो रही होती है, क्योंकि वो निकल तो रही होती है लेकिन वो फ्लेम तक नहीं पहुंच रही होती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपना कर आप बहुत सारे ईंधन की बचत कर सकते हैं। और जब बचत करेंगे आप ईंधन की, रसोई गैस की, तो कहीं ना कहीं आप बचत कर रहे हैं अपने पैसों की और आपकी जेब भरी हुई है पैसों से, क्योंकि आपने वो टिप्स अपनाए हैं जिन्हें अपना कर आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार श्रोताओं, आज है 1 जून और 1 जून को प्रतिवर्ष ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माता पिता हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे पहले शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या योगदान होता है हमारे जीवन में और उनका महत्व हमारे जीवन में कितना है। ये तो सब हम मानते हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और उनकी भूमिका हमारी जिंदगी में ताउम्र हमारे साथ रहती है। लेकिन क्या सच में ये भूमिका निभाते निभाते कुछ बातों का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं? क्या जरूरी होता है कि माता पिता को भी बताया जाए कि उन्हें कैसे समझना है, कैसे सिखाना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है? ये कुछ बातें हैं जो हम उतना बात तो नहीं करते हैं रेडियो डॉक्टर में, लेकिन हमने सोचा इसको बात करना बेहद ज़रूरी है। और आज क्योंकि ये दिन है तो क्यों ना इस बात से आज हम शुरुआत करें इस महीने की, जो कि है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी 1 जून। और इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी भी हर बार की तरह बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से, हमारे आज के एक्सपर्ट्स से, जो नेविगेट करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में और आपको बताएंगे What is the role of parents? तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद हुबे अली। आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
2: नमस्कार।
1: और हमारी दूसरी गेस्ट

0: हैं अलका मल्होत्रा जी, आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आप दोनों यहाँ आए हैं। नमस्कार अलका जी।
1: नमस्कार। नमस्कार टू एवरीबॉडी।
0: और जैसा ये विशेष कार्यक्रम मैंने आपको बताया आज इस दिवस पर हम कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीधे सवाल कर सकते हैं, हमारे आज के गेस्ट से पूछ सकते हैं, क्या बताना है, क्या पूछना है आपको इस विषय के बारे में, ये आप हमें डायल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स वही हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, 011-2342-1080, 2342-1082। और व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर आप कुछ पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9868107070 पर। हमें इंतज़ार है आपके प्रश्नों का। और हम स्वागत तो कर चुके हैं अपने स्पेशलिस्ट का। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अली, क्या होता है उद्देश्य ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाने का, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट?
2: ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मना रहा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखा गया है कि जब पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारा ख़त्म होता जा रहा है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं और मोबाइल और टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो बच्चों का पेरेंट्स का आपस में जो कनेक्ट होना है वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कम हो रहा है। इसी कनेक्ट को वापस जोड़ने के लिए ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है, ताकि माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह से अपने घर में जुड़ सके।
0: जी, आपने कहा कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं अलका जी। आप ये बताइए कि ये कनेक्ट कम क्यों हो रहा है एंड हाउ इज़ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट? कम्युनिकेशन क्या जीवन में रोल प्ले करता है?
1: जब से बच्चा पैदा होता है तभी से बच्चा माता और पिता के साथ एक लगाव शुरू करता है, और सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन बच्चे की घर में शुरू होती है माता पिता के साथ। तो इसीलिए माता पिता का कनेक्ट बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल, दादी दादू, सबको, नाना नानी, सबको बाद में मिलता है, सबसे पहले माता और पिता के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए माता पिता के साथ का लगाव बहुत ज़रूरी है, और वो लगाव बचपन से शुरू होकर एडोलेसेंट्स में जब बच्चे अपने करियर चूज़ करते हैं, कैसे अपने माता पिता से डायरेक्शन ले सकते हैं, करियर में क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, वो सब भी गेटवे जो है वो माता पिता के द्वारा होता है। टीचर से सीखते हैं पर घर में क्या परिस्थिति है, घर में क्या करना चाहिए, वो माता पिता के साथ का कनेक्ट है। इसीलिए माता पिता का बच्चे के साथ नर्चरिंग, शुरू में लगाव, स्टिमुलेशन से लेकर जबकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, अंत में जब बच्चा घर छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, अपना परिवार बनाने लगते हैं, तब तक माता पिता का जुड़ाव और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो
0: जी। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम ये भी सुनते हैं कि जब बच्चे एडोलेसेंट में आते हैं, छोटे बच्चे तो फिर भी हम देखते हैं कि माँ बाप से हर चीज़ पूछ लेते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं स्कूल जाते वक्त, बच्चे पढ़ाने लिखाने में भी बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं माँ बाप उसमें पूरी तरह से दखल रखते हैं। लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो हम अक्सर माँ बाप को कहते सुनते हैं कि अब तो बच्चा सुनता ही नहीं है, अब तो हमारी चलती ही नहीं है, अब तो हमें डरना पड़ता है बच्चों से। तो ये जो डिफरेंस आता है ये एडोलेसेंट एज में जब आता है, इसको कैसे डील किया जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है?
1: सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता का बच्चे के साथ जुड़ना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं। बेसिकली क्या है कि बचपन से एडोलेसेंट्स में जाते हुए और ज़्यादा इंटेंस चेंजेस होने लग पड़ते हैं बच्चों में, वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंस की सोच रखने लग पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि अब हाइट तो मेरी बढ़ गई है, अब मेरा ओपिनियन भी बढ़ना चाहिए, तो उनको ज़्यादा जानकारी मिलती है स्कूल से। तो माता पिता का रोल उसमें शुरुआत से ही है लिसनिंग का, सबसे पहले सुने अपने बच्चों को, उनको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उनकी, उनको जज नहीं करना है, उन्हें अपने बच्चों से डरना भी नहीं है, उन्हें बच्चे को साथ लेकर चलना है, सुनना है, समझना है, उससे बातचीत करनी है। अगर बातचीत करते रहेंगे अपने बच्चों के साथ तो जुड़ाव रहेगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जहाँ पर वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं और बच्चे की सोच को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वो ज़माना गया जब हम लोग छोटे थे और हम अपने माता पिता की बात, क्योंकि वो पिता कह रहे थे तो उस बात को समझ लिया। अब बच्चों को जानकारी है, मोबाइल है, स्कूल है, उनके दोस्त हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। कभी कभी किसी किसी विषय में उनकी जानकारी माता पिता की जानकारी से भी ज्यादा होती है। तो उस

0: में उस सिचुएशन में बच्चे की बात सुनना, उसे समझना और अपनी समझ से उसे बातचीत में, बातचीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात बनेगी तो बात बढ़ेगी ना,
1: बढ़ेगी, बात से
0: तो
1: बात बनेगी,
0: बात से
1: बिल्कुल।
0: बात बनेगी।
1: और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि पहले से हम कंपेयर करते हैं कई बार कि हम जब छोटे थे तो हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमें जो कहा जाता था हम सुन लेते थे, लेकिन इसको जज नहीं करना है, जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली। और जैसे समय बदलता है उसी हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना है। बच्चों का एक दूसरी जनरेशन जब होती है तो उसका एक अलग माइंडसेट होता है और अलग उनका एक सारी दुनिया से कनेक्ट होना है। जैसे आजकल डिजिटल एज है तो बहुत सारी चीजें आ भी गई हैं, तो इस बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1080, 2342-1082 पर। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आपको सुन रहे हैं कार्यक्रम डियर टू डॉक्टर, मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल और आज बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। और आज हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अली और अलका मल्होत्रा जी। और हम बात कर रहे थे पेरेंट्स की आवश्यकता क्या होती है, बच्चों के लिए उनकी क्या महत्ता होती है, इस पर तो कोई वाद विवाद है ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए वो लाइफ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिसकम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया कि सही कम्युनिकेशन या कनेक्ट ना हो तो भी प्रॉब्लम्स बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग में अक्सर महिलाओं को ही ज़्यादा फोकस में रखा जाता है और पुरुषों से उतनी ना तो उम्मीद की जाती है ना उनको पेरेंटिंग में उतना शामिल किया जाता है। तो अगर हम पुरुषों के रोल पर बात करें, फादर के रोल पर बात करें, तो अलका मैम आप क्या कहेंगी, क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से फादर का?
1: पेरेंटिंग जो है ना, ये एक जैसे शादी 50-50 का रोल होता है ना, वैसे पेरेंटिंग भी 50-50 का रोल होता है। बहुत सारे स्टडीज़ की गई हैं और बार बार निकल के आता है कि माता से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, माता उसे समझाएगी, बचपन से माता केयर का रोल करेगी, माता स्टिमुलेशन करेगी, माता खाना खिलाएगी, जबकि ये सारी चीज़ें पिता कर सकते हैं। और पिता जब करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बढ़ती है। तो चाहे वो स्टिमुलेशन है, कितने पिता हैं जो अपने बच्चे को उठाते हैं, गोद लगाते हैं, गले लगाते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं, ये सब चीज़ें जो फिजिकल कांटेक्ट होता है ना पिता और माता के साथ, उसके साथ लगाव बढ़ता है। तो पिता के साथ अगर पिता ये ही रोल करेंगे तो उनके साथ भी लगाव जो है बच्चे का वो बढ़ेगा बचपन में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी के गाने में भी हमने सुना से पिता से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, चॉकलेट
0: जी
1: जो कि बिल्कुल ठीक है, आप चॉकलेट एक्सपेक्ट करिए अपने पिता से, पर साथ साथ आप पिता से कहानी भी एक्सपेक्ट करिए, आप पिता से ये भी एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको घूमने लेके जाएंगे। एक हमने स्टडी करी थी 3 प्रदेशों में और निकल के आया कि पिता जो है वो घर लौट के बच्चे को अपना मोबाइल फोन दे देते हैं, वो सोचते हैं कि हमने टॉय दे दिया, ये हो गई मेरी पेरेंटिंग का रोल। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा मोबाइल फोन नहीं चाह रहा है, बच्चा माता पिता से बात करना चाह रहा है। तो बच्चे के साथ खेलिए, उसे बातें बताइए, उसको कहानियाँ सुनाइए, उसको उठाइए, उसको गोद में लीजिए। एडोलेसेंट्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मली फादर जो है ना वो एब्सेंट और फन पेरेंट माना जाता है, चॉकलेट देने का पेरेंट, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे से बातचीत करना, लगाव बनाए रखना, उसे गोदी में बिठाना और उससे अपना प्यार बढ़ाना। तो चाहे वो खाना खिलाने का समय है या वो हग करने का समय है, सुलाने का समय है, पिता इक्वल रोल पे कर सकते हैं
0: जी। और जैसे आपने कहा, हमने और जिक्र किया कि कई बार अगर हम पुरानी कुछ पीढ़ियों पर नज़र डालें तो बहुत कैटेगोरिकली रोल डिस्ट्रीब्यूटेड था, जैसा कि अब वो लाइंस थिन हो रही हैं या ब्लर हो रही हैं या कहीं कहीं गायब भी हो रही हैं, क्योंकि अब इक्वली वुमेन भी वर्क कर रही है, घर से बाहर निकल रही है और उतना ही दिन या समय वो अपने कार्यस्थल पर भी रहती है। तो उसको पूरी तरह से बच्चे को देखना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह देख पाए, वो भी

0: इजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब रोल या चेंजेस होते हैं समाज में, तो उस तरह से एक माइंडसेट में भी रोल या डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस बारे में आप, कि कैसे ये चेंजेस माइंडसेट्स में आने चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैडम ने बताया 50-50 का जो रोल है, क्योंकि अभी जैसे महिलाएं भी वर्क्स प्लेस पे बहुत टाइम गुजारती है, तो दोनों अगर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे गाने में सुना कि माँ लोरी सुनाएगी, तो ये पिताजी भी लोरी सुना सकते हैं। एक मेरे को लगता है कि जो स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई फादर है बच्चे को देख रहा है तो बहुत चैंपियन है, वो स्टीरियोटाइप बदलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो बच्चे का अपब्रिंगिंग भी होगा, और बहुत से जगह में बहुत से स्टडीज़ भी ये निकल के आ रहा है कि अगर दोनों माता और पिता दोनों बच्चे के अपब्रिंगिंग में इक्वल ये लगते हैं, तो बच्चे का मानसिक, फिजिकल और इमोशनल तीनों भी अपब्रिंगिंग अच्छे से होते हैं।
0: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरी तरह से एक पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं कि वो बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी बने। और यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं। डॉक्टर अली और डॉक्टर अलका जी, आपको, शालिनी मैम को ग्लोबल पेरेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, वर्तमान में 3 जनरेशन मौजूद हैं, 1950s, 1990 और 2026। आज के समय में पेरेंट्स को शिक्षित और अनुशासित होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और बिल्कुल यही मेरा अगला प्रश्न भी था अलका जी आपसे, कि कई बार होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, लेकिन हम कई बार वो खुद फॉलो नहीं कर पाते, चाहे फोन से रिलेटेड बात हो कि हम मोबाइल पर हैं और हम बच्चों के कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, ज़्यादा तुमको नुकसान करेगा, या फिर ईटिंग हैबिट्स हो, या फिर अपने हेल्थ या हाइजीन की बात हो, या स्लीप की बात हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए?
2: मेरे ख्याल से तो जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग, जब तक आप पेरेंट नहीं बनते हैं ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे ही आप पेरेंट बन जाते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं वो उसका ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है आपके बच्चे के ऊपर, बनिस्पत के जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को वॉच नहीं करेंगे, अगर आप सच नहीं बोलेंगे और आप कोई भी बात को टाल देंगे, तो बच्चा भी टालने की आदत फटाफट सीख लेते हैं। बच्चे फोन तो एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चे को कह रही हैं कि देखिए तुम अपना समय फोन के ऊपर आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, और आप सारा टाइम फोन पे लगी हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा समझ रहा है कि ये रूल इनके लिए नहीं अप्लाई करता, मेरे लिए करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या डिफरेंस है जो कि इनमें नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो भी आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे खुद करके दिखाइए, तो उससे बच्चा सीखने लग पड़ता है। अब हम जेंडर सोशलाइजेशन की भी बात करते हैं कि महिला काम करने जाने लग पड़ी है, पुरुष किचन में जा सकते हैं, पुरुष खाना बना सकते हैं, पुरुष खाना परोस सकते हैं, केयर कर सकते हैं बच्चों की भी घर में और बड़े बूढ़ों की भी। यही चीज़ अगर वो अपने घर में देखेंगे कि मेरे पिता भी किचन के अंदर जाते हैं, मेरी माता लाइट बल्ब बदल लेती है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये कोई जेंडर्ड रोल्स नहीं है कि ये पिता ही कर सकता है और ये माता नहीं कर सकती, और ये माता ही कर सकती है और पिता नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग। तो जब आप पेरेंट बन जाते हैं तब ऑल द मोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं, पर आप क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चे को, और वही चीज बच्चे बार बार सीखते हैं। शाउटिंग इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोलिएगा कि आप ऊंची आवाज में बात मत करिए, और आप माता पिता एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हर एक बात में डिसअग्री कर रहे हैं, हर एक बात में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बच्चा तो समझ गया ना उसी समय कि ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के
0: और माता पिता ये समझ रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सब ऑब्जर्व करते
2: सब
0: हैं।
2: ऑब्जर्व करते हैं।
0: जी जी जब हम स्लीप की बात करें, हाइजीन की बात करें, अलका जी ने बताया किस तरह से हमें करके रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई घरों में कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ बनना है, या कुछ उनकी ऐसी पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं हैं जो वो नहीं कर पाए या कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वो उनको प्रेशराइज़ करते हैं बच्चों को, और इससे कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ तो

0: कई बार वो ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं कि अपने को नुकसान पहुंचाना या सुसाइड तक बात कई बार पहुंच जाती है, मेंटल उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से उनको हैंडल किया जाए इमोशनली कि मेंटल हेल्थ उनकी सही रहे, और अगर ऐसा कोई डील कर रहा है तो क्या सिम्टम्स उसमें देखने चाहिए कि उन्हें पता लगे कि मेरा बच्चा उस तरफ तो नहीं जा रहा है।
1: हाँ, सबसे पहले प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें ये देखें कि हमने एक स्टडी की थी कि ड्राइवर्स क्या है ये मेंटल हेल्थ के बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, एनजाइटी है, डिप्रेशन है या सेल्फ हार्म है। तो उसके हमको तीन ड्राइवर्स मिले हैं। ग्लोबली भी ये स्टडी है, यूनिसेफ WHO की, और इंडिया में भी ये स्टडी है। एक तो जो घर में कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों के, ख़ास तौर के यूथ, यंग अडल्ट्स के ऊपर जो मानसिक प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे इसे कोप नहीं कर पाते, इसलिए ये सेल्फ हार्म टेंडेंसीज या घर से बाहर रहना, दूर रहना, अकेले रहना ये शुरू कर देते हैं। ये एक हुआ। दूसरा, इस एज में पर्टिकुलरली यूथ्स और यंग एडोलेसेंट्स में लव अफेयर्स की वजह से भी काफ़ी बच्चे एनजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और तीसरा जो आपने बताया, प्रेशर, या तो एग्ज़ाम का प्रेशर है या जॉब लगने का प्रेशर है, ये तीन जो ड्राइवर्स है ये बच्चों के लिए मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत काम कर रहा है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स यही होते हैं कि बच्चा खाना अगर आपके साथ बैठा है तो आपके साथ बैठना नहीं चाहता, बात आँख मिला के करना नहीं चाहता, अकेले अकेले ज़्यादा रहना चाहता है बच्चा बच्ची जो भी हो, तो आइसोलेशन अपने आप को कर लेना, ये फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा, खुल के बात ना करना, हंस नहीं पाना और आँख में आँख डाल के बात नहीं कर पाना। और इसमें जो पेरेंट्स का जो मेन रोल है, थेरेपिस्ट तो जो करेगा सो करेगा, पेरेंट्स को चार चीज़ें, अगर आपका बच्चा इस किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, सोशली अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, तो चार चीज़ें करें। एक तो उसकी बात को आप समझे, पहले उससे बात करें, लिसन एंड डू नॉट एडवाइस। हम लोग बहुत जल्दी बच्चे को एडवाइस करना शुरू कर दें, तो बच्चे की बात को हम सुने, एक। दूसरा, हम उसको ये बताएं, उसको रीअश्योर करें कि भाई मेरा आपको सपोर्ट होगा, जो भी परिस्थिति आप गुजर रहे हैं वी आर देयर टू हेल्प यू और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा, अगर उसको कोई ख्यालात आ रहे हैं या उसको कभी कभी हेलुसिनेशन डेल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली चैलेंज ना करें, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, एकदम से जो नहीं करके हम कहते हैं तो ये ना करें। और चौथी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, बच्चे के साथ में मिलके उसके साथ सॉल्यूशन को ढूंढें, ना कि अपना सॉल्यूशन उसके ऊपर थोपे। तो अगर ये चार चीज़ें हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को हम इसमें से निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। या एक और होता है कि बच्चा अगर ऐसे कुछ कर रहा है तो उसका ये स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल चेंज कर दिया, यहाँ पे है माँ के घर भेज या नानी के घर भेज दिया, शादी करके दे दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। उसको आप बात को समझिए, थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। अभी तो बहुत से सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत काम की है। टेलीमानस में आप बात कर सकते हैं 144-16 नंबर 14416 पे 24/7 कॉल करके अपना वार्तालाप कर किया जा सकता है, काउंसिलिंग की जा सकती है, मनोदर्पण के थ्रू इसे बात की जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक से आप सब डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो उसके नीचे CSC यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो काउंसिलर है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वहाँ जाके भी आप वार्तालाप किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे की भावना को समझें और उसको सही दिशा में ले जाएँ।
0: जी, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमें इस कार्यक्रम में आज पता लग रही हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए 2342-1080 2342-1082 पर, व्हाट्सएप के लिए 9868-107070 पर आप हमें लिख सकते हैं। हमें श्रोता लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, विषय हमें पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी आपके विशेषज्ञों के माध्यम से मिल रही है। तौसीफ अहमद हमें लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कि इनकी एक बेटी है अभी 2 साल की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि किस तरह से उसको पाले पोसे, इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ मदद मिल सके।
1: 2 साल का बच्चा है, सबसे पहले तो बच्चे के जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका हुआ होगा तो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड करके आता है, उस कार्ड में लिखा होता है कि 2 साल के बच्चे की क्या माइलस्टोन्स रहने चाहिए। बच्चे को आप साथ में रखिए, बच्चे को आप खिलाने में आप माता और पिता दोनों भी भागीदारी करिए, बच्चे से बात करिए। हम लोगों को लगता है कि 2 साल का बच्चा क्या ही बात करें, मगर आप जितना उससे बात करेंगे उतना सोशल और इमोशनल कनेक्ट माता पिता के साथ बच्चे का बढ़ता है। तो जैसा जैसा बच्चा आपके साथ बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को उसी तरह से साथ में बड़ा करिए, ना कि अभी बहुत से घरों में देखा जा रहा है कि माता पिता दोनों जॉब पर है तो नैनी के साथ ही बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो वो कनेक्ट हमारा बच्चे के साथ रहा नहीं जाता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपका बच्चा वो छोटा है बच्ची, उसके साथ अगर आप ग्रो होंगे तो जो एडोलेसेंट अवस्था में आके अगर हम बच्चों को

0: वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं और बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि अब इनको मेरी याद आ रही है और ये अब मेरे ऊपर जो है बॉसिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। तो ये छोटे बच्चे के साथ जब आप खुद बड़े होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे।
1: साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत कमज़ोर है इनकी बेटी, तो इसका मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा आपने बताया इमोशनल तो देना ही है, फिजिकल पे भी इन्हें ध्यान देना होगा। देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि इन्हें ये विषय बहुत पसंद आया है और एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आपको धन्यवाद, आप इस तरह से हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर विशेष रेडियो डॉक्टर। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक गीत सुनकर वापस आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स 4 बजे तक स्टूडियो में रहेंगे।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार शानी जी, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी जी यशपाल जी, बताइए क्या पूछना है आपने। हाँ, विषय सुन लिया हमारा।
2: हाँ, टॉपिक अच्छा है, दोनों एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट। आज बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
2: मेरा शानी जी, मेरा इशू है ना, वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, मतलब जो 40 से जिनकी कम है, 40 से कम के, तो उनकी खुद की ये जो लाइफ स्टाइल है, मतलब ऐसे अनहेल्दी है, डिसिप्लिन नहीं है, दोनों वर्किंग भी हैं, तो उनको ज्यादा हेल्थ का इम्पोर्टेंस भी नहीं इतना, आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस। तो वो इस वजह से या कुछ दूसरी मजबूरी से दे, मतलब वो बच्चों को भी उतना नहीं टेक केयर कर पाते हैं। तो सबसे मुझे ये फियर है, लगता है कि मतलब बच्चे भी जो आगे भविष्य में भी उनको हेल्थ वाइज उनका जो है ना इशू वो रहेगा, दे विल नॉट बी हेल्दी जनरेशन। बस एक मेरा इसी पॉइंट।
1: जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यशपाल जी, और इसीलिए जरूरत पड़ रही है हमें ये कार्यक्रम भी करने की, क्योंकि सीधे कहीं ना कहीं ये जो रोल है पेरेंट्स का, ये उनके स्वास्थ्य पर, हमारे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है, जैसा आप डर दिखा रहे हैं, ये डर हमारा भी है। और इसीलिए हम आज गेस्ट लेकर आए हैं, स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं, कि वो बता रहे हैं कि सीधे सही अच्छी पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए और हेल्थ पर कैसे ध्यान देना चाहिए। कुछ आप और कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे?
2: हाँ नहीं, बस इनकी एडवाइस थोड़ा लेना चाह रहा था कि इसमें कैसा कुछ कम कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब ठीक होने का कुछ।
1: जी जी, मैं हमारे विशेषज्ञ से पूछ लेती हूँ, किस तरह से माइंडसेट चेंज किया जाए बच्चों का?
3: देखिए, हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही समय पर जो भी भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सही समय पर खाएं। आप जब भी खाना खाते हैं तो अकेले अकेले ना खाएं, हम जब आप पेरेंट्स खा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर खाना खाएं। और खाने में जो जंक फूड है, इसको हम लोग अवॉइड करें अगर हेल्दी रहना है। खाने के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और जो कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, तो फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। तो आप खाने के एक घंटा पहले और खाने के एक घंटे बाद तक चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अच्छी आदतें डालें, हम लोग खुद भी हेल्दी रहें, बच्चों को भी इस हेल्थ की आदत डालें, हेल्दी फूड की।
4: हेल्दी फूड और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और ये आजकल देखा जा रहा है कि जो सर्वेज हुए हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप में नहीं खेल रहे हैं, जैसा आपने एक्सरसाइज की बात की कि बैठे बैठे ही, क्योंकि आजकल गैजेट्स बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन पर या टीवी पर या मोबाइल पर वो मैक्सिमम समय अपना यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जैसे नेक पेन और ये, इस पर हम भी हम कार्यक्रम करते रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो इस तरह की जब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और उनको समझ नहीं होती है उस एज में, कई बार बहुत यंग छोटे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं दे दी जाती है पेरेंट्स द्वारा, तो जब बहुत छोटे हैं उनको पता नहीं है किस तरह से साइबर फ्रॉड हो सकता है उनके साथ, तो ये सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, या ऑनलाइन सेफ्टी, और किस तरह से पेरेंट्स भी खुद समझें और बच्चों को समझाएं?
4: एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन स्पेस में ये है कि आप खुद अपना बिहेवियर मॉडल करें। तो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में कम रहेंगे तो फिर ही आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप भी ऑनलाइन कम रहिएगा फर्स्ट। तो अपने आप को मॉडल करिए कि आप अपना समय कितना बिता रही हैं फ़ोन पे, कितना समय पिताजी बिता रहे हैं फ़ोन पे, कितना वो स्क्रॉल कर रहे हैं ये सब रील्स को, और फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि चलिए आप दोनों, अब उसमें फिर कॉन्वर्सेशन, बातचीत बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बच्चे के साथ तय किया जाए कि आप फ़ोन पे कितना समय बिताएंगे। देखिए, कुछ तो ऑनलाइन काम आजकल स्कूल से भी आने लग पड़ा है, तो इसीलिए अगर हमें उसको भी डिस्काउंट करना है तो दोनों को अग्री करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के काम के लिए इतना समय, और आपकी अपनी एंटरटेनमेंट, आपके फ्रेंड्स को कैचअप या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए इतना समय, वो आपको बच्चे के साथ तय करना पड़ेगा। यदि आप बच्चे के साथ तय करेंगे तो फिर उसका, उसको बच्चे के साथ ही ट्रैक करिए कि अगर हमने फैसला किया था दोनों ने मिलके कि आधा घंटे का समय हम लोग बिताएंगे, उसमें से एक घंटा मान लीजिए आपको स्कूल के काम के लिए चाहिए, आधे घंटे का टाइम आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हैं, तो आपने कब फोन उठाया और आपने कब उस फोन को रखा, ये दोनों ट्रैक करेंगे, माता पिता और बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बाउंड्रीज, दूसरा उसको ट्रैक करिए खुद दोनों मिलकर, और तीसरी चीज़ खुद आप भी समझिए कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकती है। ये जानकारी चाहे आपको स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके करनी पड़े या आपको स्कूल की टीचर

0: टीचर से बात करके जानकारी लेनी पड़े और पेरेंट्स से जानकारी लेनी पड़े, उनके बच्चे कितना समय बिताते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा अपने आप को इस बारे में जागरूक रखना पड़ेगा कि बच्चे कितना समय मोबाइल फोन पर और इंटरनेट पर, मोबाइल फोन के इंटरनेट पर बिता रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या-क्या सेफ्टी मेजर्स आप कर सकती हैं, क्या कितना स्क्रीन टाइम, आजकल तो ऐप्स आपको बता देते हैं कितना स्क्रीन टाइम आपका बच्चा यूज कर रहा है। तो वो उन सब डायमेंशंस को खुद को पहले जानकार पढ़ना पड़ेगा। तो वो जानकारी आपको टीचर से, आपको प्रिंसिपल से, आपको अपने फ्रेंड से मिल सकती है। तो अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक करिए, फिर अपने बच्चे के साथ तय करिए कि कितना समय के वो बताएंगे। और जो अभी डॉक्टर अली कह रहे थे, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर देखते रहिए कि उनको उस ऑनलाइन स्पेस से ज़्यादा मेंटल प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, वो आइसोलेटेड तो नहीं हो रहे हैं। यू हैव टू वॉच द चाइल्ड्स बिहेवियर, आपको खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे की आई कांटेक्ट की बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर अली ने। तो क्या आपका बच्चा आपसे बात करने में, ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात करने में, क्या वो खुलकर बात कर पा रहे हैं, कि वो बच्चे कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं? तो ये आपको ओपननेस रखनी पड़ेगी, फिर ही आप खुद दोनों मिलकर एक ऑनलाइन सेफ स्पेस तय कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: इस बीच हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार
1: जी।
2: शालिनी
1: जी
2: जी,
1: नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: मैं अभिषेक बेदी बोल रही
1: जी
2: हूँ।
1: जी, स्वागत है
2: हाँ
1: कार्यक्रम
2: जी,
1: में। क्या
2: आप सबको
1: कहेंगी?
2: नमस्कार। डॉक्टर शालिनी जी, आजकल कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जैसे मेरे पास ही स्कूल है, मेरी दीवार के साथ, वहाँ टीचर ये ग्रज करती हैं कि अगर बच्चे का रॉन्ग है, उस पर अगर काटा लगा दिया तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं। बच्चों को थोड़ी हमें ना सुनने की आदत होनी चाहिए। हम हर बात उनकी मान लेते हैं, तभी हम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं।
1: जी, ये एक बात इनकी सोच है और कुछ हद तक सही भी है, ऐसा हमने भी देखा है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस
2: सबसे
1: बारे में?
2: ज्यादा ऐसा है ना। हेलो, नहीं,
1: जी
2: मैं बीच में सॉरी बात करती हूँ। ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली बिल्कुल जीरो हो गए हैं।
3: ये जो मुद्दा है, बहुत से पेरेंट्स अभी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप बच्चे को जिस भी स्पोर्ट्स में हो, ज़रूर ये कोशिश करें कि अपना बच्चा स्पोर्ट्स में रहे। स्पोर्ट्स में बच्चा रहेगा तो कभी जीतेगा कभी हारेगा, और इससे बच्चे को हार और उसके पेरेंट्स को हार में भी किस तरह से खुश रहना चाहिए, ये स्पोर्ट्स सिखाता है। तो जो ओवर प्रोटेक्शन का जो मसला आ रहा है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, घर में बैठे हैं तो आप अंताक्षरी खेलिए, कुछ ना कुछ इस तरह से गेम्स करते रहिए जिसमें बच्चा हारना और जीतना, पेरेंट्स हारना और जीतना दोनों को फेस करे। तो आपस में फिर सीख जाते हैं कि किस तरह से, भाई गलती हो तो गलती को गलती मानो, तो उससे फिर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी
2: सबसे बड़ी टीचर है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ साल मदर जो जॉब भी करती हैं, कुछ छुट्टी लेके बच्चों साथ इमोशनली जुड़े, उनको बचपन अपना सुनाए, उनकी बातें सुने, एक दूसरे के दिल में घुसे जैसे।
1: बिल्कुल यही बात अभी अलका जी कह रही थी कि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जब कनेक्ट होगा, एक दूसरे की बात समझेंगे, तभी बात से बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वेदी जी हमसे कनेक्ट करने के लिए। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्कार
1: जी।
4: सालिनी मैम
1: नमस्कार जी,
4: और
1: बताएं।
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार,
4: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताएं, क्या पूछना है?
4: मुझे ये पूछना है कि जैसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और उनको उनका कैसे हो। आजकल के बच्चे ये देखे जाते हैं कि वो कमजोर टाइप के हैं, जैसे हमारे बराबर वो उतना काम या कुछ कर नहीं सकते, और जैसे उनको कुछ चीज बताओ तो ऐसे माइंड से हो जाते हैं। तो ये बच्चों का विकास और शारीरिक विकास कैसे होगा?
1: जी
3: बच्चों को अपने वार्तालाप के सेंटर में रखिए। मैं आपको एक बताता हूँ, बराक ओबामा को जब नोबेल प्राइज़ मिला था तो उन्होंने फ़ोन करके अपनी बच्ची को, जो 11 साल की है और दूसरी बच्ची 8 साल की, उन्होंने कहा मुझे देखो गो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो बच्ची ने कहा अरे आज आप भूल गए, आज बो का बर्थडे है, बो है उनका पोर्चुगीज़ पोर्चुगीज़ कुत्ता, घर का फैमिली डॉग। दूसरी बेटी ने कहा अरे 3 दिन का वीकेंड की छुट्टी है, आप कैसे भूल गए हमारा? तो मतलब जो नोबल प्राइज़ है, आप हम जान रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। मगर बच्चे को अगर सेंटर, बच्चे के लिए उसकी समस्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर माता पिता बच्चे को सबसे ज़्यादा सेंटर पे रखे, भाई वो खा रहा है।

0: क्या नहीं खा रहा है, वो खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है, वो उसका मानसिक मतलब स्कोलेस्टिक, स्कूल में परफॉर्मेंस, घर में परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रह रहा है। अगर वो टच और कनेक्ट आप शुरू से रखेंगे तो ये जो समस्या आ रही है कि बहुत बच्चा मेरा कमज़ोर हो गया मैं, तो ये बातें नहीं आएंगी, बहुत हद तक आप इसको ख़त्म कर सकते हैं।
1: जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। ये मैसेज हमें लिखा है नानी तरिंग जी ने अरुणाचल प्रदेश से, और उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी अकेले पेरेंट हैं, बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी, बट लास्ट वीक पिताजी और मेरा झगड़ा हो गया, नाउ आई डोंट नो वॉट टू डू, ये पूछ रहे हैं।
0: देखिए आप पिताजी, आपने पहले ही बताया कि पिताजी ने मुझे जो है बचपन से ये किया है और आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप वार्तालाप कीजिए। जैसे अलका जी ने बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कम्युनिकेशन। डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, अभी तो आपकी शुरुआत है डिसएग्रीमेंट की, आगे जाके और बहुत सी बातें होंगी जिसमें डिसएग्रीमेंट होगा, पर ये डिसएग्रीमेंट का हल जो है आपस में बात करने से ही सुलझा जा सकता है।
2: और इसमें पहले आपका तो सवाल ही नहीं उठता ना, आप फ़ोन उठाइए, सीधा जाइए और पिताजी से बात करिए और अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करिए। ज़रूर जब आप एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा।
1: जी, अगर और मुझे लगता है कि आप अभी देर ना करिए, जैसा अलका मैम कह रही हैं, जैसे अली सर कह रहे हैं, आप फ़ौरन कॉल लगाइए अपने पिताजी को, उनसे बात कीजिए और जो भी आपकी मिस कम्युनिकेशन या जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर करिए, और हमें मैसेज करके या मेल करके हमें ज़रूर बताइए कि आप कितने खुश हैं अब, क्योंकि आप बहुत, आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आप अपने पिताजी से बात कर पाएंगे और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर पाएंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर, और अपने फीडबैक्स भी आप सभी हमें उस पर भेज सकते हैं। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार। मैं
1: जी नमस्कार,
3: दीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी, स्वागत है, बताएं।
3: हाँ, मेरा कहना है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक शब्द आता है डिमेंशिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं मति भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो मेरा पूछना है कि वास्तव में इसमें क्या होता है, मतलब ब्रेन में कुछ कमी आ जाती है, और बच्चों में भी ये बीमारी होती है क्या, कृपया विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं पूछती हूँ, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपकी बात को। जी सर,
0: डिमेंशिया मतलब मेमोरी में स्लोली स्लोली कमी हो जाना। आमतौर पे ये बच्चों में नहीं होती है, आमतौर पे ये होती है 60-70 साल के बाद, स्लोली स्लोली जब एजिंग का शुरू होता है तब लोग अपनी अपनी मेमोरी खोलने लगते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक जो पुरानी मेमोरी है, जो पक्की मेमोरी होती है, बचपन की मेमोरी, वो इंसान बहुत जल्दी खोता नहीं है। बहुत जल्दी क्या खोता है, जो रिसेंट पास की जो मेमोरीज है वो चली जाती है। पर अगर बच्चे में अगर इस तरह की कोई बात है कि वो भूल रहा है, तो उसको जो है स्वास्थ्य कर्मी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज के साथ ये होता है, पर उसके अंदर जो है घर वालों को समझ के उसके साथ ये करना ज़रूरी है। पर अगर बच्चे में अगर किस तरह से अडल्ट है, यंग अडल्ट है, एडोलेसेंट है, या बच्चे में अगर डिमेंशिया का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दिखाना चाहिए।
1: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे पास मैसेज, दो मैसेज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग एक सी बात है, इसमें मैं दोनों को एक साथ लेना चाहूँगी। इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंट फादर, अगर सिंगल मदर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी में। और दूसरा प्रश्न किया है अशोक जी ने दिल्ली से कि मेरा 8 साल का बच्चा है और वो मेरे साथ रहता है, वाइफ मेरी वर्किंग है, 600 किलोमीटर दूर रहती है, बच्चे के इमोशंस को कैसे पहचाने, क्या करें कि उनको मदर की एब्सेंस फील नहीं हो। तो कहीं भी जहाँ पर एक पेरेंट मिसिंग है तो कैसे डील किया जाए।
0: एक पेरेंट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं तो इशू तो है, क्योंकि दोनों पेरेंट का बच्चे का बड़ा होना और एक पेरेंट में बच्चा बड़ा होना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होगा। आप एज ए सिंगल पेरेंट, यही है कि हम बच्चे को अगर माता है तो माता पिता दोनों की तरह से प्यार दें, क्योंकि आप और अब आप काम कर भी करें हो, जैसे बच्चे को आप नींद में से उठने से देख रहे, लास्ट में सोए तक खाना खिलाने का सारा कुछ काम आप कर रहे हो, तो आप बड़ा काम तो कर रहे हो। या तो आपका पेरेंट एब्सेंट है, या मतलब या तो डाइवोर्स केस है, या फिर दूर है किसी काम की वजह से, तो आप वो अपना प्यार बच्चे को तो दे रहे हो। इसमें यह है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई सिंगल पेरेंट है, आप भी अपने काम में व्यस्त है, तो जो ज़रूरी है वो ज़रूरत वाला काम कर दिए, फिर उसके बाद अपने काम में लग गए। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इफ़ द सर्कमस्टेंसेस अगर ये मांगता है तो आपको माता पिता दोनों बनना पड़ेगा अगर सिंगल भी है तो।
1: जैसा अभी उन्होंने भी लिखा था अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने कि उनके फादर ने भी उनको बचपन से अकेले पाला और कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी मदर की।

0: तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से एक डेवलप्ड पर्सनालिटी हो सकती है। अनिल कालरा जी, डॉक्टर अनिल कालरा हमें गुरुग्राम से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और ये हमें लिखकर भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने साकेत मेरठ से, नमस्ते डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे दूसरे बच्चे से कंपैरिजन बहुत करते हैं और एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम है, ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, किसी के पास फुर्सत नहीं है इसको सिखाने की।
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन सबसे पहले हमको बच्चों में और आपस में भी बात कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन हमको ख़त्म एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। जो भी बच्चा कर रहा है, कितना एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, वो उस बच्चे की आप कितनी स्ट्रेंथ है वीकनेस है उस पर काम करें, ना कि हम किसी को भी कंपेयर करें। तो जो कंपेरिज़न की टेंडेंसी है हमारी टीचर्स को, हमारे घर में, पेरेंट्स को और दोस्तों में भी, इसको पहले ख़त्म करना चाहिए। अननेसेसरी, दिस इज़ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन।
2: और इसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट है ना वो खुद कंपैरिजन करना बंद करें।
1: बंद करें
2: सबसे पहले आप खुद कंपेयर करना बंद करिए, और फुर्सत की तो बात करिए ही मत, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप बच्चा दुनिया में लाए हैं ना और आपके घर में बच्चा है तो आपको फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। उसकी सिर्फ फिजिकल केयर और फिजिकल नीड्स को नहीं लुक आफ्टर करना है, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसकी सोशल नीड्स को भी आपको लुक आफ्टर करना है। इसीलिए अगर आपने पेरेंट बनने का जिम्मेवारी ली है तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आई मीन दैट्स अ गिवन। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि बिफोर यू बिकम अ पेरेंट बी रेडी फॉर पेरेंटहुड, बिकॉज पेरेंटहुड इज अ लॉन्ग जर्नी और उसके लिए उसका कोई एस्केप रूट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चे को लाए हैं तो उसको समय देना होगा।
0: जी, और आजकल हम यही देखते हैं कि ये जो बात हो रही है फुर्सत नहीं है, ये तो एक अलग बातचीत का मुद्दा है, लेकिन लेट मैरिजेस हो रही हैं, मदर्स और फादर दोनों लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनके, तो जब लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे प्लान कई बार नहीं कर रहे हैं या बहुत लेट कर रहे हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट डालता है?
2: एब्सोल्युटली डालता है। और उसके लिए अगेन, जब आपने लेट मैरिज करी, आप अपने अपने करियर पाथ में बहुत एंट्रेंच हो गए हैं दोनों माता पिता, पर अगर आपके लाइफ में एक बच्चा है, जैसे डॉक्टर अली भी कह रहे थे, तो बच्चे को नैनी, बच्चे को दादी नानी के ऊपर ना छोड़कर अपना समय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए भी आपको बच्चे के साथ समय, सबसे ज़रूरी बच्चे के साथ समय, बच्चे को सुनना, बच्चे के साथ कनेक्ट बनाना, उसको कडल करना, उसको इमोशनल उसके साथ चीज़ें करना, कहानी साथ बनाना, सैर पे साथ जाना, उसके साथ खेलना, तो एक बॉन्डिंग आपको बचपन से ही अपने बच्चे के साथ बनानी पड़ेगी, फिर अडल्टहुड में वही बॉन्डिंग आसान होती चली जाती है।
0: अच्छा, बहुत एक सेंसिटिव इशू मैं अभी लाना चाह रही हूँ जो हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों को, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको डील करना थोड़ा सा टिकलिश होता है पेरेंट्स के लिए, तो कैसे उनको अलग से डील किया जाए, ये भी एक मुद्दा है समझने का।
1: हाँ, अगर आपका बच्चा फिजिकली स्पेशली एबल्ड है या मेंटली स्पेशली एबल्ड है, तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसको सही डॉक्टर के पास दिखा के अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके एक्सेप्ट करें। बहुत से पेरेंट बहुत सा समय आदत डाल देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, या हुआ है तो क्यों हुआ है, या हमको श्राप हो गया है, या ये, तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये है। कोई भी बच्चा हो या किसी में भी कोई भी फिजिकल एक स्पेशल ये है, तो कोई ना कोई उसका दूसरा बात ऐसा होता है कि वो उसमें चैम्पियन बन सकता है, तो उस बात को हम देखें, उसको मैं बच्चे को भी ये बताए कि भाई तुम्हारा एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे लोकोमोटर प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो दूसरी कोई बात हो सकती है, उसको हम निखारे बाहर और बच्चे को उसके अंदर एक्सेल करने के लिए उसकी मदद करें, उसका साथ दें। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स समझते हैं मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ, तो पेरेंट्स के एसोसिएशन इंडिया में बहुत जगह है, आपके गांव में आपके शहर में होंगे, पेरेंट्स एसोसिएशन एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में परिवार के नाम से चलता है, उस एसोसिएशन से आप जुड़िए। उसमें ऐसे ही बच्चों के बहुत से पेरेंट्स एक साथ आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, गाइडेंस बताई जाती है, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा सरकार से ये बताया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, बहुत से लोग हैं, तो एक साथ मिलकर उस बच्चे को क्या उसके अंदर निखारा जा सकता है, उसको निखार के उसको चैम्पियन बनाया जा सकता है।
0: जी, तो प्रयास किए जा सकते हैं, और आपने बताया कुछ जो

0: ये साइट्स हैं क्या हैं जिनके बारे में आपने बताया कि उनसे
1: ये
0: जोड़ा जा
1: साइट,
0: सकता
1: हाँ
0: है?
1: परिवार करके आप डालोगे, वह एनजीओ फॉर पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ये साइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं इसके साथ।
0: अच्छा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मुद्दा होता है कि कम्युनिकेशन तो कई बार होता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन जो है उसमें अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जब एक ग्रोइंग बच्चा है घर में, एडोलेसेंट हो, तो कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं दोनों का व्यूज़ जानना चाहूँगी, अलका जी आपका भी और डॉक्टर अली आपका भी इस बारे में।

0: आप सेक्स एजुकेशन क्या होगा, तुम्हें लगता होगा लड़कों की रुचि तुम्हारे में बढ़ रही है, या लड़कों के साथ भी बात की जाती है? मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे बेटे के साथ, ये सबसे पहले उनका जो पहला लंच हुआ था इकट्ठा, ऑफ कोर्स हैविंग बीन टुगेदर, बट एक मैन टू मैन लंच उनका इकट्ठा हुआ था, वही बात थी कि तुम्हें अब लग रहा होगा कि तुम अपनी क्लास की लड़कियों के साथ आइडेंटिफाई करो, किसी के साथ ज़्यादा घूमना चाहते हो। ये इनके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, और ये बातचीत जब हम करने लगेंगे एज पेरेंट्स, तो वो फिर एक बॉन्डिंग बनती है, वो एकदम से नहीं हो सकती। अगेन, बचपन से अगर आप अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करना शुरू करेंगे, तो 10, 11, 12 साल की उम्र पे ये बातचीत बहुत आसानी से हो सकती है। पर हमने बचपन से ही कभी बात ही नहीं करी, कहानियां नहीं सुनाई, कहानियों से जुड़ते हुए क्यों क्यों के सवालों के जवाब नहीं दिए, सच जवाब, तब तक फिर आप बाद में एकदम से ये बात नहीं उठा
1: जी।
0: सकते।
1: और जब पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन होगा तो फिर उन्हें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि वो सोर्स कई बार गलत भी होते हैं, गलत डायरेक्शन में भी उनको भेज सकते हैं। आप क्या
2: तो सेक्स एजुकेशन के बदले अब हम लोग काम बात शुरू करें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे इंडिया से कहना चाहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इसमें 8 अलग अलग बिंदु है। सबसे पहले हम बात करें रिलेशनशिप्स की, हम बात करें वैल्यूज़ कल्चर, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, जेंडर को हम अंडरस्टैंड करें, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, वायलेंस और कैसे स्टे सेफ कर सकते हैं इसकी बात करें, हेल्थ हेल्दी वेलबींग की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें कि लड़के में लड़की में क्या है, उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर और लास्ट में आता है सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सब चीज़ों की बातें अगर हम बच्चा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है स्लोली स्लोली अगर हम इन बातों पर करेंगे तो ये जो दिक्कतें आ रही है, डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन की बात करना इंडिया के कल्चर में बहुत डिफिकल्ट है। पेरेंट्स के लिए हमने आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी है, बट अभी भी टीचर ये बोलते हैं कि भाई कैसे पढ़ाएं यंग बच्चों को, बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं, क्यों क्यों वाला जो सवाल जवाब होता है, तो आप यू कैन रीच टू दैट पॉइंट व्हेन पेरेंट्स एंड बच्चा आपस में बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 पॉइंट्स जो आपने बताए हैं ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। और चल, अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो चलते चलते बस मैं चाहूँगी थोड़ा नटशेल में आप बताएं क्या आज का जो विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को बोलना चाहेंगे चलने से पहले।
0: आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कब बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड शुरू होगा बात करने से, लिसन करने से, उन्हें अंडरस्टैंड करके रिस्पेक्ट से उनको सपोर्ट करने में। तो बात करिए, सुनिए उनकी बात, समझिए उनकी बात, और फिर रिस्पेक्टफुली मिलकर सॉल्यूशन ढूंढिए। ज़रूर आपके लिए ये जर्नी बहुत ही सिंपल और आसान रहेगी।
1: डॉक्टर अली,
2: सारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट देखिए, मानसिक फिजिकल स्पिरिचुअल सोशल किस तरह से बच्चा कर रहा है, और शुरू से अगर बच्चे से जैसे मैडम ने कहा कि बॉन्डिंग अगर होती है तो ये सब के पता करना बच्चा हमारा किस स्थिति से गुजर रहा है, और स्पेसिफिकली फिजिकल तो दिक्कत आता है, मेंटल दिक्कत नहीं आता, बच्चे से वार्तालाप करने से कम्युनिकेशन करने से ये चीज़ों को हम लोग हल कर सकते हैं।
1: जी, तो अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हुए कि जो इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया। आप अगर हमें कुछ और लिखना चाहते हैं, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब धन्यवाद दूंगी अपने आज के रेडियो डॉक्टर्स का, डॉक्टर सैयद हुबे अली हमारे साथ रहे। आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, और अलका मल्होत्रा जी आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों आए इस विशेष अंक में, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर हमने ढेर सारी बातें की, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: और स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई। सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। वस्तु और सेवा कर का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन। और वक्त की बात की जाए तो वक्त हुआ है 4:05 और पूरे 40 सेकंड। वक्त है ये अल्फा जेन प्रोग्राम का और आज है, जी हाँ, वो खास दिन जिस दिन हमारे साथ एक यूथ गेस्ट रहते हैं और आज हमारे साथ है भावना। हाय भावना।
2: हेलो मैम,
1: हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी गुड।
1: क्या बात है भावना, क्या करते हो और आज आप स्टूडियो में हो, कैसा लग रहा है आपको?
2: पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ।
1: हाय,
2: माय नेम इज़ भावना, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आचार्य नयन देव कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। करेंटली मैं जूलॉजी परस्यू कर रही हूँ, रिसर्च इज माई थिंग और आगे जा कर के मुझे रिसर्च में ही अपना फ्यूचर देखना है,
1: आगे बढ़ाना है।
2: हाँ जी, और आपने पूछा यहाँ आकर के कैसा लग रहा है, इट फील्स अमेजिंग।
1: अमेजिंग? डर लग रहा है, नर्वसनेस समथिंग?
2: हाँ, थोड़ा लग रहा था लेकिन आपसे मिल करके मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ काफी।
1: ओह दैट्स ग्रेट। इसी के साथ किस किस को बताया हुआ है, कौन कौन सुन रहा है प्रोग्राम?
2: मेरे पेरेंट्स, मेरे नेबरहुड में सारे लोग, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे इवन टीचर्स एंड माई स्कूल टीचर्स, एंड दे वर मोर एक्साइटेड देन मी कि तुम ऐसे लाइव आओगे, हम तुमको सुनेंगे।
1: क्या बात है, तो पार्टी होगी इस प्रोग्राम के बाद?
2: बिल्कुल।
1: और हम लोगों को पार्टी कब मिलेगी?
2: जब आप बोले मैम।
1: अभी पार्टी कर देते।
2: श्योर।
1: जी बिल्कुल, आज हमारे साथ है भावना। भावना दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में है और आज यूथ गेस्ट बनकर हमारे साथ अल्फा जेन प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। आप भी यूं ही जुड़ी रहिए क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी भावना से। फिलहाल भावना की ही पसंद का गाना हम यहाँ पे प्ले करते हैं और इसी से करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत।

0: आज आपने पाया है भावना को अल्फा जेन प्रोग्राम में यूथ गेस्ट बनकर, वो हमारे साथ है। और भावना जरा इधर तो नजरे करम कीजिए।
1: जी मैम।
0: जी मैम, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: जी मैम, बिल्कुल।
0: हर्षा। जी बिल्कुल। भावना, आपने कहा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं।
1: जी।
0: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी खास क्यों है कि दिल्ली में जो रहते हैं वो स्टूडेंट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो देश के अलग अलग शहरों में जो युवा रहते हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो क्या है कुछ ऐसा खास दिल्ली यूनिवर्सिटी में?
1: मैम, सबसे खास बात तो यही है कि जैसे कि हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से बच्चे आते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्राइमरी मैं बोल दूंगी कि डाइवर्सिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मेरे बहुत सारे दोस्त अलग अलग स्टेट से हैं, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम इवन कश्मीर टू कन्याकुमारी, हर जगह से कोई ना कोई दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपोजर जो है वो काफ़ी बेहतर मिलता है बच्चों को, रदर देन लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के। बाकी अगर कुछ खास बात है तो स्टूडेंट होने के तौर पर मैं बोलूँगी फेस्ट, हमारे यहाँ के एनुअल फेस्ट जो होते हैं, मतलब साल भर इंतज़ार करते हैं हम लोग ईयर ख़त्म होने का कि लास्ट में आएगा फेस्ट और जमकर मस्ती करेंगे। इवन हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे कि यूनिवर्स हर कॉलेज की अपनी अलग सोसाइटीज़ होती हैं हर एक एक्टिविटी के लिए। मान लीजिए डांस की एक एक्टिविटी हो गई, म्यूज़िक हो गया, तो हर एक एक्टिविटी के लिए आपकी एक करिकुलर सोसाइटी होती है। और वो सोसाइटीज़ इंटर कॉलेज, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपस में कोलैबोरेशन करके प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं एंड कैश प्राइजेस भी जीते हैं हम लोग। तो देयर इज समथिंग यू नो विच कीप्स यू ड्राइविंग, ऐसे मोटिवेट करता है। हाँ, मच मच। उसमें भी हम लोग जैसे अभी हमारे यहाँ का आचार्य नयन देव यूनिवर्सिटी में जो एनुअल फेस्ट होता है उसका नाम लियोथ्रिक्स है, एंड मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि दो बारी उसका हिस्सा रह चुकी हूँ एंड दो बारी परफॉर्म करने के लिए मेन स्टेज पे हमें मिला है, एंड द एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स।
0: तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने सारे स्टूडेंट्स,
1: क्रेजी, थोड़ा नर्वसनेस होती है जनरली, बट अगेन वो जो किक मिलता है ना आपको इतने सारे लोगों के बीच परफॉर्म करने का, आपके जानने वाले वहां पर होते हैं, बच्चे बाहर से भी आते हैं, तो जो क्राउड होता है दैट इज on some another level, तो वो क्रेजी कर देता एक्सपीरियंस।
0: बिल्कुल, ये तो आपने 16 आनी बात बिल्कुल सच कही कि दिल्ली के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फेस्ट रहते हैं उनका कोई सानी नहीं है, वो बिल्कुल यूनिक रहते हैं और जब कॉलेज लाइफ ख़त्म भी हो जाती है उसके बाद भी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं यादों में।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: है ना। अब पढ़ाई की बात कर ली जाए कुछ?
1: हाँ, पढ़ाई की बात पर आते हैं। ये तो मस्ती हो गई, लेकिन मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ जैसी भी फैकल्टी है, जैसे प्रोफेसर्स हैं, जैसे टीचर्स हैं हमने पाए हैं, दे आर अमेजिंग। आई मीन पहले जब मैं कॉलेज में आई थी तो तभी तक सुना था कि टीचर्स जो होते हैं कॉलेज में वो ध्यान नहीं देते बच्चों पे, क्योंकि यूजुअली स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि कॉलेज में जाकर के कोई इतना ध्यान नहीं देता बच्चों पर,
0: स्टूडेंट्स
1: भी नहीं देते। मगर जब मैं कॉलेज में आई और टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि टीचर्स वाकई ध्यान देते हैं,
0: बहुत ध्यान देते हैं,
1: और काफी, मतलब बहुत एक ऐसा लगा कि टीचर नहीं बल्कि हमारे मेंटोर हो और हम उनके अंदर काम कर रहे हैं। बहुत चिल होते हैं, फ्रैंक होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अगर आप कुछ गेन करने के लिए आए हैं ना, तो ट्रस्ट मी इससे बेहतर प्लेस नहीं हो सकती है।
0: बिल्कुल, कहीं तो जो यूनिवर्सिटीज के और जो कॉलेजेस के जो टीचर्स रहते हैं ना, वो दोस्त की तरह होते हैं।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, दोस्त की तरह बातें करेंगे, दोस्त की तरह ही समझाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है तो दोस्त की तरह ही बातों को संभाल लेते हैं।
1: आयरोनिकली हमारे यहाँ पर एक प्रोफेसर है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, सरिता मैम। शी इज लाइक हम सारे बच्चों की फेवरेट टीचर, शी इज़ अ सीनियर मोस्ट टीचर हमारे यहाँ पर, हमारे डिपार्टमेंट में, और सबसे ज़्यादा चिल टीचर हैं। उन्हें देख के लगता ही नहीं है, मतलब वो हमारे हिसाब से चलने के लिए हो जाएंगे, मतलब हमारा ऐसा लगता है कि वो हमारे ही एज ग्रुप की हैं। उनके साथ में वो जनरेशनल गैप और एक टीचर वाला रिस्पेक्ट हमेशा रहती है, लेकिन वो फियर ऑफ जजमेंट या हम उनके आगे कुछ भी बोल सकते हैं, वो फिल्टर नहीं रखना पड़ता,
0: मतलब फियर नहीं रहता कि अगर हम ये बात मुंह से निकल गई तो कहीं टीचर गुस्सा ना।
1: हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: ओके, तो आप आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लियर किया है, उनको क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से वो कॉलेज को चूज करें, और आपने किस तरीके से कॉलेज को चूज किया था?
1: जी पहले मैं आऊँगी, जैसे हमारी स्कूल लाइफ ख़त्म होती है 12th के बाद में एक शिफ्ट आता है, बच्चों की बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, मेरी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। डीयू का नाम सुनते ही, जैसे मैंने पहले बताया, फेस्ट आता है, बच्चे आते हैं, कॉलेज लाइफ एक्सपोजर आता है, पूरा करण जौहर टाइप कॉलेज दिमाग में आ जाता है। मगर फिर जब हम कॉलेज में आते हैं तो लाइफ हमेशा सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही मिला। एटलीस्ट ऐसा है कि अगर बच्चों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मान लीजिए किसी को कोर्स स्पेसिफिक कोई टारगेट करना चाह रहा है कि एक स्पेसिफिक कोर्स चाहिए किसी को, या किसी को सिर्फ वो कॉलेज लाइफ वो एक्सपोजर एक्सपीरियंस करना है। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, उन्हें कोर्स से मतलब नहीं था, उन्हें बस डीयू में आना था, तो उन्हें जो कोर्स मिल गया वो आ गए, और अभी वो कोर्स कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। मेरा पर्सनल स्पेसिफिक था कि मुझे अपना जूलॉजी ऑनर्स करना था, और मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है साइंस के उसमें, तो मैंने स्पेसिफिकली जो प्रेफरेंस लिस्ट जिस हिसाब से तैयार की थी कोर्स स्पेसिफिक हो करके, मुझे बिल्कुल अपनी पसंदीदा कॉलेज मिल गया।
0: तो आप खुश हैं?
1: एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब बाकी लोगों

0: को जिन लोगों ने अभी 12th पास किया है तो उन्हें बताऊंगी कि आप लोगों को बहुत ही स्पेसिफिक रहना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप करियर में एक्सेल हर कोई करना चाहता है ऑब्वियसली, बट व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, कि आपको सिर्फ एक नर्ड बुक में रह करके एक पूरा अपना लाइफ देखना है, या फिर आउट ऑफ द बुक भी एक्सपोजर भी एक्सपीरियंस करके खुद को पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट डेवलपमेंट करना है, तो वो आपका क्या मतलब गोल है अल्टीमेट। तो अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि कैंपस वाइज हमारी यूनिवर्सिटी में कैंपसेस हैं, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कैंपस। तो हाँ, बच्चों का ड्रीम होता है नॉर्थ कैंपस जाना है, नेवर माइंड। लेकिन डीयू के हर ऐसा कैंपस स्पेसिफिक कोई नहीं है, सारे कैंपसेस बहुत अच्छे हैं, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है तो वो देख करके। बाकी कोर्सेज सारे ही अच्छे हैं मैं कहूँगी, लेकिन अगर आपको अपना मन पसंदीदा कोर्स मिल रहा है तो आप प्लीज़ कहीं और पे मत जाइए। डी यू इज़ अ यूनिवर्सिटी, आई मीन Which is hands on. The best.
1: हाँ जी। ओके, तो जब आपने 12th क्लियर किया तो कितने कॉलेजेस में आपने फॉर्म भरा था?
0: मैंने स्पेसिफिकली बोलूँ, मैं मथुरा से हेल करती हूँ, तो मेरे घर के पास में सबसे ज़्यादा मुझे लगा था, मुझे घर की बहुत याद आती है, तो मुझे था कि मुझे दिल्ली वॉज द नियरेस्ट, तो मुझे था कि मुझे DU ही जाना है। मैंने सारे कॉलेजेस जो भी थे वो DU के ही टारगेट किए थे। अपना प्रेफरेंस लिस्ट मैंने कोर्स स्पेसिफिक बनाया था, जैसे मैं बायोलॉजी डिवीजन से आती हूँ, सेक्शन से आती हूँ, तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मुझे जुआलॉजी टारगेट करना था, मुझे जुआलॉजी कोर्स चाहिए था। एंड उसके बाद मैंने बॉटनी को लगाया था अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, देन लाइफ साइंसेज विच इज़ अ प्रोग्राम कोर्स जिसमें कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी और जुआलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यही तीनों कोर्स सब्जेक्ट्स मैंने लगाए थे। लकीली मेरा प्रेफरेंस जुआलॉजी था और मुझे ये कॉलेज मेरा इनिशियल प्रेफरेंसेज टॉप 10 प्रेफरेंसेज में था और मुझे मिल गया।
1: क्या बात है। तो मिठाई विठाई खाई थी और खिलाई थी?
0: बहुत। इट वॉज लाइक मेरा एक्सपीरियंस, जब मुझे पता चला जो एलोकेशन लिस्ट आउट होती है, मैं जा करके सीधा रोते रोते मम्मी को हक किया। उन्हें लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ हो गया है। मैं बाहर थी और मैं भागते हुए आई, एंड आई वॉज इन हैप्पी टीयर्स। सो द एक्सपीरियंस वॉज अनरियल।
1: जब आप कभी जी बीच में छुट्टियां होती कॉलेज लाइफ की, वापस मथुरा जाते हैं फैमिली से, फ्रेंड से, कजन से, तो कहानियां तो किससे कहानियां तो बड़े सुनाते होंगे।
0: किससे कहानियां तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं।
1: आपसे हम भी एक किस्सा कहानी और किससे कहानियां सुनना चाहेंगे आपके कॉलेज के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में। आपने एक गाना चूज किया है MS धोनी फिल्म का, पलक मुंजाल की आवाज है, तो क्रिकेट के बारे में और गेम्स के बारे में भी बात करेंगे। आपको खेलों में कितना इंटरेस्ट है?
0: मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और आपने क्या सही मौके पर ये बात कही है, मेरी फेवरेट टीम IPL में इस RCB जो कि कल ही मैच जीती है।
1: तो कांग्रेचुलेशंस।
0: थैंक यू सो मच।
1: और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है?
0: देखना अच्छा लगता है। हाँ जी, खेलती हूँ मैं, लाइक वॉलीबॉल खेलती हूँ, बट जस्ट खेलने के लिए खेल लेती हूँ।
1: और क्रिकेट एक होता है ना कि लास्ट के ओवर देखने हैं,
0: नहीं
1: बीच बीच में से देखना है,
0: नहीं पूरा मैच शुरू से लेकर मैम आखिर तक देखने में जो मजा आता है,
1: देखना ही देखना है।
0: बिकॉज क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, किसी भी पॉइंट पे पलट सकता है, तो शुरू से लेके लास्ट तक देखने में जो मजा है।
1: चलो फिर तो बात बनती है कि अब MS धोनी फिल्म का गाना सुन ही लिया जाए।

हाय, मैं हूँ भावना। आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो FM पर। आप लोगों के साथ, जैसे कि हम पहले भी बातचीत में जुड़ चुके हैं, आगे आप लोगों के साथ मैं एक मज़ेदार सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का और कॉलेज में। एक अनूठा एक्सपीरियंस, एक इंसिडेंट शेयर मैं करना चाहूँगी आप सभी के साथ में। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे कॉलेज में जो फेस्ट होते हैं वो थोड़े से अतरंगी होते हैं, और उतनी ही अतरंगी होती है उसके पीछे की साज सज्जा, सजावट और उसके पीछे की तैयारियाँ। जैसा कि हम देखते हैं BTS बनते हैं, यानी कि बिहाइंड द शॉट्स ऑब्वियसली। तो उस समय पर हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त। हम लोग म्यूज़िक से आते हैं, म्यूज़िक सोसाइटी। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में एक म्यूज़िक सोसाइटी है जिसका नाम है धुन। हम सभी उसी के अंडर काम करते हैं और एक मत होकर के उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। उसी के इवेंट को हम आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रोग्राम को अच्छे से, मज़ेदार तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। और उसी दौरान हमारे कुछ जूनियर्स भी थे, अब जो कि हम सीनियर्स हैं, तो हमारे साथ में हमसे सीनियर्स लोग भी थे। तो हम सभी आपस में प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिस सेशंस हो और उसमें मस्ती ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो भी यूनिवर्सिटी में। तो थोड़ा सा टांग खिंचाई, थोड़ी सी डांट डपट होती रहती है। वहीं पर हमने शुरू किया था कि हम गाने गाएंगे। मैं और मेरी दोस्त एक सेटलिस्ट तैयार कर रहे थे उन गानों की जो हमें स्टेज पर परफॉर्म करने थे, लेकिन वहीं पर हमारे छोटे मोटे से प्यारे प्यारे जूनियर्स आते हैं और दीदी दीदी करके अपने अपने सजेशंस देने लगते हैं। और किस्सा यूं ख़त्म होता है कि हमने गाने तो शुरू किए थे कि हमें गाने हैं, लेकिन लास्ट हमने किया उन पर नाचते हुए, और वो सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड भी किए जो हमने बाद में हमारे मेमोरीज़ के तौर पे आज हम उन्हें साझा करते हैं। वो यादें भुलाई नहीं जाती। और आखिर में जब हम अपने फेयरवेल पर आते हैं, जब हमने इस वक्त अभी आखिरी महीने में अपने सीनियर्स को जब फेयरवेल दिया, तो जब वो यादें हमने एक प्रेजेंटेशन के तौर पर चलाई, तो जब अपने सीनियर्स की आंखें नम होती देखी और उन मेमोरीज में छुपा हुआ प्यार, उस उनकी वो डांट डपट में भी वो जो प्यार छुपा हुआ था ना, वो जब देखा तो महसूस हुआ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। आप जितना रिश्तों को संजो कर रखते हैं, उतना ही अपने आप को खुश और बेहतर महसूस कर पाते हैं। अगर हम रिश्तों की बात पर आए ही हैं, तो रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एहसास, और एहसास बहुत सी चीज़ों से किया जा सकता है। जैसे कि हम नाचकर भी अपने एक्सप्रेशंस जता सकते हैं, हम गाकर भी अपने एक्सप्रेशंस जता सकते हैं, जो कि मैं गाने में थोड़ी रुचि रखती हूँ, तो मैं आप सभी के आगे कुछ लाइन पंक्तियाँ जो होंगी उन्हें गुनगुनाना चाहूँगी। मैं गाना गाना चाहूँगी सजदे किए हैं लाखों। ये गाना खट्टा मीठा मूवी से है, एंड सिंगर हैं KK।

मैंने सच में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूँ ना फिर क्यों मैं तुझे, जिस दिन से चाहा।

0: वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल.
1: थैंक यू मैम.
0: भावना, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप बोलते इतना अच्छा है, तो आरजे बनने के लिए क्या सोचा है आपने? कभी सोचा है कि आप आरजे भी बने रेडियो पर? आज प्रोग्राम कर में आए हैं आप बनकर.
1: मैंने अभी तक ये बात किसी से साझा तो नहीं की थी, लेकिन आज मैं बताती हूँ. मैं एज वॉइस आर्टिस्ट भी काम करती हूँ. एडवर्टाइजमेंट वॉइसिंग में मैं अपनी आवाज़ देती हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा वाकई सोचा नहीं था. मुझे बस एक दोस्त के थ्रू एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब ऑफर आया था, तो जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इट वॉज वेरी, आई वॉज वेरी कीन टू वर्क विद देम. तो मैंने कहा पार्ट टाइम है, थोड़ा सा पैसा आता हुआ किसी को बुरा लगता है. तो फिर मैंने वो जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, एंड देन आई एम वर्किंग करेंटली ऑल्सो. बट देन आरजे बनने का मैंने कभी सोचा नहीं है, एंड यू नेवर नो.
0: आपको यहाँ लेके कदम उठा चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, और जो आपकी जितनी भी क्वालिटीज हैं उनको देख के तो लग रहा है कि आप में पोटेंशियल है आरजे बनने का.
1: आपने देखा है तो शायद हो गई.
0: एक और बात भावना, आपने केके का गाना गुनगुनाया. हाँ जी. और अब जो आप गाना प्ले करने वाले हैं वो है जगजीत सिंह जी का.
1: हाँ जी.
0: तो इतनी वैरायटी म्यूजिक में कैसे पसंद आती है? कैसे, कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जो आपको पसंद आते हैं?
1: सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा रेट्रो लगते हैं. किशोर कुमार अरा, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, देवर द ओजीज.
0: तो अगर हम जैसे बात करें युवाओं की, कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो आजकल किस तरीके के गाने सुनना वो पसंद कर रहे हैं?
1: मैं वापस आना चाहूंगी कि स्टूडेंट आज एक मूड में नहीं रह रहा है. लाइक जो यूथ है उनका जो मूड का जो सेट ऑफ मूड है ना, वो टोन चेंज होता रहता है विद इन एज अ टाइम के स्पैन के साथ साथ. 3 AM थॉट्स हम बोलते हैं हिट करते हैं स्टूडेंट्स को रात में, कि अगर उनका कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं रातों को याद आता है कहीं. या फिर अलग अलग जॉनर होते हैं जो लोगों को पसंद है, जैसे मैं ही हूँ.
0: गजलें सुनते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत. बल्कि मैं एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर हम लोगों ने, धुन म्यूज़िक सोसाइटी ने कोलैबोरेशन में उर्दू सोसाइटी के साथ में, उर्दू एकेडमी उसके साथ में, हमने कोलैबोरेशन में एक कवाली करने के लिए हमने बाहर से संजीदों को बुलाया था और सिंगर्स को बुलाया था. तो MS निज़ामी ब्रदर्स, उन्हें हमने अपने कॉलेज में इन्वाइट किया था, और जो सक्सेसफुल वो इवेंट हुआ था, मतलब वो हमारे कॉलेज में शायद फेस्ट को भी फीका कर दिया था उसने, और बच्चों में जो गूंज थी, आज भी बच्चे पूछते हैं मुझसे

0: कब ऐसा एक इवेंट आप फिर से कराएंगे, एंड हम उन्हें बोलते हैं कि इस साल भी हम ये इवेंट करा के रहेंगे, कोशिश हमारी पूरी है।
1: तो तब चीज कुछ नहीं छोड़ते, चाहे भजन हो चाहे गजल,
0: जी नहीं,
1: 70-60 के दशक के गाने भी अच्छे लगते,
0: बिल्कुल बहुत ज्यादा। एंड आप मानेंगी नहीं, हमारे यहाँ पर मालिनी अवस्थी जी आई थी अभी कॉलेज में स्पिक मके के प्रोग्राम के लिए, और बच्चों ने क्या उत्साह दिखाया है उस प्रोग्राम में आकर के। मैम राग गा रही थी, क्लासिकल म्यूजिक, एंड आप मानेंगे कि बच्चे रागों पे वाइब कर रहे हैं, मतलब भजन वाइबिंग होती है हमारे कॉलेज में। इस्कॉन के लोग भी आते हैं, तो
1: रिस्पांस कैसा रहता है?
0: बहुत अच्छा होता है। सबसे मेन बात जो होती है वो होती है प्रसाद जो आता है यमी यमी, वो बच्चों को बांधने का काम कर देता है। लेकिन बांधने के सिर्फ प्रसाद ही नहीं, बच्चे आते हैं, बच्चे चैंट करते हैं, बच्चे अच्छा सीख के जाते हैं, बच्चे एक्ट करते हैं, बच्चे अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं खुद एक पार्ट रही हूँ, मैंने भी उसके लिए भजन क्लबिंग के लिए गाया भी है और जगह पर भी गई हूँ, तो बच्चों को जो वाइब करते हुए देखा है। बच्चों का एक अलग क्रेज़ है अभी कि उनको क्लबिंग से ज़्यादा भजन क्लबिंग में मज़े आते हैं।
1: रियली
0: इट इज़,
1: क्या बात है। तो आपकी एक बहुत ही खूबसूरत पसंद को सुन लिया जाए, जगजीत सिंह की आवाज़ में है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, खामोशी फिल्म से, सरफरोश फिल्म से।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हूँ मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
7: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
6: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
8: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
8: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
7: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
6: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
6: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
7: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
6: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
7: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
6: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
7: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
6: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
7: याद रखिए, साइबर क्राइम

0: इनकी दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और आप मुझे यहाँ सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर और मैं हूँ आज के यूथ गेस्ट। अभी तक हमने यादों की लेन में बात करी है हमारे कॉलेज लाइफ की। जैसा मैंने बताया कि मैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट हूँ जो कि जूलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही है। आगे बात करते हैं हम करियर के लाइन में। तो मेरा पर्सनल करियर एस्पिरेशन है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप करते करते ये मैं साइंस बैकग्राउंड में कहाँ से आ गई। तो हाँ, मेरी जर्नी शुरू हुई थी बायोलॉजी से। मुझे बहुत फैसिनेट करती थी बायो और रिसर्च मुझे आज भी बहुत फैसिनेट करती है। इवन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि हमारे बायोलॉजी से ही रिलेटेड है और हम उसी पर काम कर रहे हैं। जो कि आगे मैं अगर बताऊँ तो मैं किसी कॉस्मेटोलॉजी में किसी मेकअप प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रही, मगर मैं काम कर रही हूँ अपने स्किन केयर ब्रांड पर, जहाँ पर मेरा मेन एम है लोगों को उन्हीं की स्किन में बेटर फील कराना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग काफ़ी इनसिक्योर महसूस करने लगे हैं आजकल, और ख़ासकर यूथ। उनको बहुत टेंशन है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे दिख रहे हैं, क्या वो अप टू द मार्क हैं, क्या वो पिक्चर परफेक्ट हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मन में इनसिक्योरिटीज़ को क्रिएट कर रही हैं। तो बस मेरा मन था कि मैं उसी पर काम करके और लोगों को उनकी इनसिक्योरिटीज से दूर करूं। हाँ, इसमें मुझे सपोर्ट तो लगा, मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और यहीं से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि यूथ है आज का, जो भारत का युवा है, उसमें कितना काबिलियत है, कितना सक्षम है वो, कितनी कैपेबिलिटीज़ रखता है अपने अंदर। बस कहीं ना कहीं अगर वो मात खा जाता है तो समाज के थ्रू। और वही बात चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच बोलूँ तो आज के यूथ को उतना फ़र्क पड़ता नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे, अगर उसके अपने साथ हैं। और अपने से मेरा मतलब है उसके माता पिता, उसका अपना निजी परिवार। मेरी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को सक्षम मानकर, जो कि हर बच्चा एक सक्षम होता है अपने तौर पर, लेकिन उनमें विश्वास दिखाकर, उनके भरोसे पर भरोसा करके, उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें और उनके जो करियर एस्पिरेशंस हैं उन पर एक बार विश्वास करके, उन्हें भरोसा दिला के उनका मनोबल बढ़ाते रहिए। उनकी वो हिम्मत बनिए जो कभी ना टूट सके, क्योंकि बच्चे बाहर की चीज़ों को देखकर उतना हताश नहीं होते जितना कि अपने घर से सपोर्ट मिलने पर ना होते हैं। तो बस यही रहेगा मेरा कहना कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ना कि सिर्फ पेरेंट्स बल्कि मैं बोलूँगी कि जितने भी आपके प्रियजन हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके मैं बोलूँगी कलीग्स हो गए, जिनको भी, जिनके लिए भी आप मैटर करते हैं या आपको पता है कि आप किसी के लाइफ में वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो प्लीज़ सेंसिटिव रहिए, चीज़ों के बारे में सोचिए और उनका मनोबल गिरने ना दीजिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हाय, मैं हूं भावना और आप मुझे सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन और मैं हूं आज के यूथ गेस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जीवन शैली बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण हो चुकी है। तनाव हमारे जीवन का एक अनचाहा हिस्सा बन गया है। भविष्य की चिंताएं, करियर बनाने का दबाव, रिश्तों को संभालना, इन सब के बीच हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति लोग काफी जागरूक होते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा हो सकता है। पुरानी पीढ़ी में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अक्सर एक प्रकार की झिझक या गलतफहमी देखने को

0: सोशल मीडिया और भविष्य की चिंताओं का सामना कर रहा है। वे स्वयं को एक काल्पनिक परफेक्ट छवि में ढालने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया ने जो दबाव बढ़ा दिया है, हर जगह तुलना, बेहतर अंक, बेहतर दिखावट और बेहतर जीवन शैली। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत से लोग मदद मांगने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उनका आकलन करेगा।
1: बिल्कुल सही बात भावना आपने कही है। और जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो शारीरिक स्वास्थ्य अपने ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे, उनके खान पान पर डिपेंड करता है किस तरीके से हम लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो फ्रेंड्स, फैमिली और आसपास के लोग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो अब प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंच चुका है, लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला है। तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं, फ्रेंड्स को और आपके आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं यही बोलना चाहूँगी, यदि मानसिक स्वास्थ्य पर खुल के बातचीत करेंगे अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से, और थोड़ा सा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है लोगों को, और क्योंकि पेरेंट्स हमारे सबसे क्लोज होते हैं, एंड हम सबको पता है बच्चों से पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। मैं अपने माँ बाप से कितना प्यार करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि आज के युवा के क्या इमोशंस हैं खुद, मतलब अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स को लेकर के। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि ऐसे लोग सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें सुनिए, उनकी बातों को सुनिए। रिएक्ट करने से ज़्यादा आप उनकी बातों का रिस्पॉन्स दीजिए और उन्हें एक सेफ स्पेस दीजिए, ताकि वो एक बिना जज फियर ऑफ जजमेंट के अपनी बातों को रख सकें, ताकि उनके पास एक जगह हो, एक ऐसा सेफ स्पेस हो जहां उन्हें कोई फिल्टर लगाने की या दिमागी तौर पे इतना सोचने की स्ट्रेस उन्होंने की जरूरत ना हो।
1: बिल्कुल ना हो, मीठा सा रिश्ता हो, बहुत ही प्यार। हाँ, मथुरा के पेड़े।
0: बिल्कुल।
1: तो मथुरा के पेड़े तो आपको बहुत पसंद है क्योंकि आप मथुरा से हैं। हाँ। दिल्ली की कौन सी चीज़ है जो आपको बेहद पसंद है, और चलते चलते जो मैसेज आप सभी स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को देना चाहते
0: हैं? दिल्ली के मोमोज। दिल्ली के मोमोज।
1: ओके, और आप अपने फ्रेंड्स को और कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपका गाना चलाएंगे और टाटा बाय बाय होगा वो।
0: मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आखिरी में आते आते आप बोलना चाहूँगी, आज आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हो चुकी हैं।
0: हाँ, पूरे कर लिए हैं उसकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, वो बाकी मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगी और जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पेरेंट्स का रिश्ता हो, या आपके जितने भी खास रिश्ते हो। तो प्यार से रहिए, इस देश में प्यार की ज्यादा जरूरत है रदर देन किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करने से।
1: बिल्कुल सही बात कही है भावना। हम यही चाहते हैं कि आज का युवा कदम से कदम बढ़ाते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़े, और जो हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें अपना विशेष तौर पर योगदान दे। आपके सारे सपने पूरे हों और आप अपनी प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना योगदान दें, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के प्रोग्राम से विदा लेते हैं। मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ विदा, और मेरे साथ
0: भावना।
1: बाय
0: बाय,
1: टेक केयर,
0: बाय बाय एवरीवन।
1: या ये थे हमारे साथ यूथ गेस्ट भावना, और इसके बाद 5 बजने वाले हैं, और 5 बजे आपके साथ रहेंगी सभीहा नकवी। प्रोग्राम होगा सिटी लाइट्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउ लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
3: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह फिट एंड फाइन इसी आशा उम्मीद के साथ आन पहुंची है स्टूडियो में आपके साथ आपके दिल की आवाज आरजे सबिया नकवी। जी हाँ, वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो प्रोग्राम लेकर, जी हाँ, जिसका नाम है सिटी लाइट्स। वर्डे वाला वेलकम है जी आप सभी का प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं सिटी लाइट्स में हम आपके साथ दोहराते हैं सिटी यानी दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी कुछ खास हलचले। दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी क्या कुछ खास बात है जो हम बताएंगे आज आपको सिटी लाइट्स प्रोग्राम में, ये ब्यौरा आपके साथ जरूर दोहराएंगे हम। लेकिन सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि म्यूजिक भी जरूरी है और आपके सारे दिन के जो स्ट्रेस को रिलीफ करने वाला माध्यम है वो है म्यूजिक। तो बिल्कुल म्यूजिक जारी रहेगा। मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज आरजे सबिया नकवी। सुनते रहिए अपना डेली डोज म्यूजिकल शो और जिसका नाम है सिटी लाइट्स। सिटी से जुड़ी ताज़ा तरीन हलचलों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

वाल वाकई ये दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इश्क प्यार मोहब्बत के अलावा भी दोस्तों यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का जो सेशन है फिलहाल खत्म ही हो चुका है, बहुत सारे रिजल्ट्स आ भी चुके हैं और ऐसे में आप जल्दी जल्दी होड़ लग जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग जो एडमिशन्स लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ऐसे में हम बता दें कि बीटेक प्रोग्राम में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इंतजार खत्म हो चुका है। एडमिशन का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। डीओ के इंजीनियरिंग एडमिशन पोर्टल पर जाकर एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जी हां ध्यान से सुनिए, आपको बता दूं कि इसकी लास्ट जो डेट है वो है 15 जून तक। जी हां, 15 जून तक का वक्त है आपके पास। जल्दी जल्दी जाइए और जल्दी जल्दी अपने ऑनलाइन जो पोर्टल पर जाकर आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है वो कर दीजिए। फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ ये अगला ट्रैक। बने रहिए दिल्ली और दिल्ली से जुड़ी एनसीआर खबरों के लिए मेरे साथ। मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़ आरजे सभी नकवी।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। बिना का गीतमाला एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हिंदी फिल्म संगीत को घर घर तक पहुंचाया और रेडियो की दुनिया में धूम मचा दी। 1952 में रेडियो सिलोन से शुरू हुआ ये साप्ताहिक काउंटडाउन शो हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों को एक रैंकिंग प्रणाली के साथ प्रस्तुत करने वाला अपने तरह का पहला कार्यक्रम था। प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी की जादुई आवाज और अंदाज ने इसे श्रोताओं के दिलों में खास जगह दिलाई। लगभग 3 दशकों तक रेडियो सिलोन पर प्रसारित होने के बाद 1989 में ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का हिस्सा बन गया, जहां ये 1994 तक प्रसारित होता रहा। समय के साथ इस लोकप्रिय कार्यक्रम का नाम बदलकर सिबा का गीतमाला कर दिया गया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एक बार फिर से आपका बर्थडे वाला वेलकम है जी आपके डेली डोज म्यूजिकल शो जी हाँ जिसका नाम है सिटी लाइट्स। मैं हूँ आज आपके साथ आपके दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी। एक बार फिर से आप सभी का बर्थडे वाला वेलकम है जी। दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी खास खबरों के लिए हम हैं हाजिर आपके पास आपके साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो समर ब्रेक्स हैं वो सभी लोगों के लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अपने उरूज पर आ गई हैं और जो लोग बाहर से आकर दिल्ली एनसीआर में बस गए हैं यानी जिनके होम टाउन अलग अलग जगहों पे हैं या जो यहाँ परमानेंट भी रहते हैं लेकिन छुट्टियों में तो कहीं ना कहीं लोग जाते हैं भाई घूमने फिरने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होता है ट्रेनों में बहुत ज़्यादा देरी, टिकट ना मिलना और इतने सारे लोगों की एक साथ व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आने जाने में बहुत परेशानी होती है, ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है और इसी के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी हो जाती है। और यूपी बिहार के अलावा जितने भी तीर्थ स्थल यानी जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं हमारे, वहाँ के लिए भी ट्रेनें लगभग फुल दिखाई जा रही हैं। ज़्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी मिलना अब बंद हो चुका है। ऐसे में अगर हम बात करें दिल्ली रेलवे की, तो दिल्ली रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत देने का एक अच्छा कदम उठाया है। दर्जनों ट्रेनों का इंतजाम इस वक्त किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से करीब 80 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली से बिहार के लिए इन दिनों कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। दिल्ली दरभंगा पटना मुजफ्फरपुर सहरसा के अलावा वैष्णो देवी कटरा के लिए भी सप्ताह यानी वीक में 3 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और ये जो सहूलियत ये जो सेवा है मिलेगी 16 जुलाई तक। तो बिल्कुल गर्मियों की छुट्टी मनाइए, खूब एंजॉय करिए, घूम के आइए, चाहे तो तीर्थ स्थलों पे जाइए, अपनी इन गर्मियों की छुट्टी को खूबसूरत यादगार बनाइए। फिलहाल यादगार मैं बना रही हूँ म्यूजिक के तौर पर आपके लिए। एक और गाना लेकर आए, जल्दी से लौट के आते, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपने डेली डोज म्यूजिकल शो सिटी लाइट्स विद योर आरजे सबिहा नकवी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।

वेल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वर्थडे वाला वेलकम है जी, आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दिल की आवाज आरजे सभिया नकवी। आप सुन रहे हैं अपना डेली डोज म्यूजिकल शो जिसका नाम है सिटी लाइट्स, यानी दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी खास खबरों के साथ हम हैं आज आपके पास। आज है आपके साथ आपकी दिल की आवाज, और जी हाँ, आपके मैसेजेस भी इस बात की मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं कि आप भी हैं मेरे साथ। इस बात को जानते हुए कि ये शो मैसेज बेस्ड शो नहीं है, लेकिन आप अपना ढेर सारा प्यार मुझ तक पहुंचा रहे हैं, और मैं क्या कहूं कि आप लोगों की आभारी हूं, कर्जदार हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ये हमारा जो शो है मैसेज बेस्ड शो नहीं है, फिर भी आप भारी तादाद में अपने मैसेज मुझ तक पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए आपके सभी मैसेजेस मैंने पढ़े हैं और दिल से आप सभी का शुक्रिया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैसेज भी शो नहीं है तो आपका नाम तो शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप भी शो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया है, जो मुझ तक बहुत खूबसूरत बातें पहुँचाई हैं, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल लेकिन वादा रहा कि आगे आने वाले शो, जी हाँ, आपकी याद आती रही, और रंगे महफिल में जो कि रहेगा 4 तारीख के दिन, उस दिन ज़रूर आपसे मुलाकात होगी और ढेर सारी बात भी होगी। फिलहाल तो सिटी लाइट जारी रहेगा आपके साथ। सिटी लाइट्स में कुछ और खास खबरों के साथ मैं जुड़ी रहूंगी आपके पास। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, जल्दी से लौट के आते हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी, मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज आरजे सबीहा नकवी। और आपको बता दें कि आकाशवाणी से जुड़ी ही खास खबर है। आकाशवाणी की ओर से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम मन की बात की अगर बात करें तो मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नागरिक संगठनों के साथ मिलकर इस बार लगभग 7,568 बूथों पर और इसके अलावा अलग अलग स्थानीय स्थानों पर यह कार्यक्रम सुना गया। कह सकते हैं कि आकाशवाणी के लिए और मन की बात के लिए एक अच्छी और खूबसूरत पहल है। और इसी तरह आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम अपने स्तर पर, अपनी तरक्की पर, अपनी कामयाबी पर पहुंचते रहें, इसी कामना के साथ बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपना डेली रोज म्यूजिकल शो जिसका नाम है सिटी लाइट्स। दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी खबरों के साथ लगातार बने हुए हैं आपके पास, आपके साथ कुछ और खबरों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, म्यूजिक भी साथ साथ इंजॉय करना है भाई। और वैसे ही बाहर जब मैं आई थी, बहुत खूबसूरत सा मौसम था, बादल छाए हुए थे, खूबसूरत हवाएं चल रही थी, और क्या कुछ अब बाहर हाल हो गया और मौसम का ये तो मुझे नहीं पता, अब जाकर पता चलेगा। लेकिन जब आई थी तब बड़ा खूबसूरत मौसम था और बड़े अच्छे माहौल में मैं आई थी, दिल एकदम बाग बाग हो गया था। खैर, वेदर से रिपोर्ट भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे आपके साथ कि क्या रहेगा मौसम के हाल, मौसम के मिजाज, ये आप जानेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, जल्दी से लौट के आई हमारे साथ।
1: Make some noise!

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शो सिटी लाइट्स खासकर पहचाना जाता है दिल्ली और दिल्ली से जुड़ी खास खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी ढेर सारे मैसेजेस मेरे तक आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैसेज पढ़ लें। लेकिन आपको बता दूं कि भाई सिटी लाइट्स में आपके मैसेज शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन सिटी लाइट्स नेक्स्ट जो शो है जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, इसमें आपके ढेर सारे मैसेजेस ज़रूर शामिल कर लिए जाएंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारा ये शो बना ही आपके मैसेजेस के लिए। जी हाँ, जिसका नाम भी है मैसेज मसाला मिक्स, इसको लेकर आने वाली हैं मुक्ति सैनी। जी हाँ, मुक्ति सैनी के साथ आप ये शो सुन सकते हैं और बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। ढेर सारे मैसेज आप मुक्ति सैनी के लिए बचा के रखें, मुक्ति आएगी और आपके ढेर सारे मैसेजेस का जवाब भी देगी और आपके साथ ढेर सारी बातें भी करेगी। फिलहाल मैं तो आपके साथ दिल्ली और NCR से जुड़ी बातें ही कर सकती हूँ जनाब, तो फिलहाल मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। एक अगला गाना आपके लिए प्ले कर देती हूँ, फिर जल्दी से लौट के आती हूँ। कहीं नहीं जाना है आपको, बने रहना मेरे साथ, सुनते रहना है अपना डेली डोज म्यूजिक शो जिसका नाम है सिटी लाइट्स विद द आरजे सबिहा नकवी।

वाल दोस्तों, जैसे आपसे कहा था कि जाते जाते बताएंगे आपको मौजस का मिजाज। जी हाँ, मौसम का मिजाज कैसा है, कैसा रहेगा आपके आसपास आज मौसम का हाल, ये जरूर बताएंगे आपकी। मौसम की अगर बात माने तो आज आसमान में हमेशा की तरह, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था कि बादल छाए हुए हैं और इसी तरह छाए रहने का भी अंदेशा है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मध्यम मध्यम बारिश को इंजॉय कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ इलाकों में गरज बरस के साथ तेज हवाएं चलने का भी संकेत बताया गया है। 40 से 50 प्रति किलोमीटर घंटा ये रफ्तार पहुंच सकती है मौसम विभाग की माने तो। मंडे यानी कि आज का दिन लगभग बीत ही चुका है, लेकिन अभी रात भी बाकी है और कल यानी ट्यूसडे के दिन भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बदलते मौसम को अगर देखें तो लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, यानी खुली जगहों पर रहें आप, पेड़ों के नीचे ना अपनी गाड़ी पार्क करें या किसी भी तरह का ट्रैवल कर रहे हैं तो इस दौरान आप जरूर बचें। वैसे तो जब मौसम बदलता है तो एक खूबसूरत पॉजिटिविटी ही आपके अंदर आती है, तो इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करिए एहतियात के साथ, हम तो यही कहना चाहेंगे। फिलहाल मुक्ति सैनी आ चुकी है आपका अगला शो लेकर, जिसका नाम है ट्रिपल एम। ट्रिपल एम में रहेंगे आप उसके साथ, और फिलहाल वेस्टर्न म्यूजिक आप एंजॉय करेंगे देवांशी रावत के साथ। इसी साथ आपकी याद आती रही, आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं प्रज्ञा तिवारी के साथ, रंगे महफिल में भी प्रज्ञा तिवारी का साथ रहेगा। फिलहाल मुझे अपनी आवाज़ सभिया नकवी को दीजिए इजाज़त आज के शो से, बस इंशाल्लाह फिर से होगी मुलाकात 4 जून के दिन। आपकी याद आती रही और बस में रंगे महफिल में, फिलहाल तब तक के लिए अपना रखिएगा एकदम खासम खास ख्याल, क्योंकि आप ही किसी के लिए बेहद खास। सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स फिलहाल मेरे लिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजी दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। और मैसेज मसाला मिक्स में होगा आपका साथ, होंगी प्यारी प्यारी बातें, और किस बात पर, किस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हमें ये समझना चाहिए कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। तो सब हैं, हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो आई एम द बेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और फिर क्या है आज का वो सवाल या विषय जिस पर हम करेंगे चर्चा, बताऊंगी बस थोड़ी ही देर में।

बस यही यही यही बोलते रहिए कि आई एम द बेस्ट।

और हमसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम अपने आप से बेहद प्यार करते हैं तो फिर क्या आपको लगता है कि आपसे बेस्ट कोई और हो सकता है। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। और आज हम बात करेंगे, किस विषय पर बात करेंगे और किस पर आप हमें भेजेंगे मैसेजेस, 9868107070 पर। वैसे एक बात बताइए, जब आपका ऑफ होता है या फिर ऑफिस से छुट्टी लेते हैं या लीव लेते हैं या फिर कोई छुट्टी होती है, या चाहे आप ऑफिस में हो, स्कूल हो, बिजनेस हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, या फिर जो भी आप काम करते हैं या जिस जगह भी आप बिजी रहते हैं, तो आप क्या करना पसंद करते हैं उस समय? या तो आप आउट ऑफ स्टेशन जाना पसंद करते हैं या फिर अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, क्या चीज़ आप पसंद करते हैं और क्यों? समझ गए ना, जब भी आपका ऑफ होता है, आप लीव लेते हैं या फिर आपको लगता है कि अब तो छुट्टियां हैं ही जो आपको लेनी भी ना पड़े, पर वो ऑटोमेटिकली कोई फेस्टिवल की छुट्टी हो सकती है या फिर किसी भी तरीके की छुट्टी हो सकती है, महीने में आपको 2 छुट्टियां मिलती हैं, 3 छुट्टियां मिलती हैं, आपको लेनी है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाना, घर पर ही रहना, या फिर क्या पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। कहाँ पर? 102.6 आकाशवाणी रेनबो, 102.6 पर, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी हम आप तक पहुंच रहे हैं। आप खास अपना साथ यहाँ पर बनाकर रखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें करनी है और बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं जो आपके आने वाले हैं। अब ये कि जब भी आप ऑफ लेते हैं या फिर छुट्टी होती है आपकी, तो आप क्या करना पसंद करते हैं और क्यों, बताइए, जुड़ जाइए हमारे साथ में। फिलहाल सॉन्ग्स का सिलसिला तो जारी रहेगा आपके लिए।

और ये मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं कि जब भी ऑफिस से छुट्टी होती है या फिर आप लीव लेते हैं तो क्या आप घर पर रहना पसंद करते हैं या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या फिर आपको लगता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर सो जाओ या फैमिली के साथ इंजॉय करो या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप क्या करते हैं और क्यों ऐसा डिसीजन आप लेते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर 9861070770 पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस हम तक पहुँचा सकते हैं और मुक्ति आपके मैसेजेस आपके अपनों तक और साथ ही साथ ऑन ईयर भी मैं करूंगी आपके मैसेजेस। तो ये पहला मैसेज हम तक पहुंचा है मोहम्मद सरफराज आलम का दर्शा बाजार अररिया बिहार से। वो लिखते हैं कि आजकल गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर समय घर पर ही बिताना पसंद करता हूं, परिवार के साथ समय बिताता हूं, किताबें पढ़ता हूं, रेडियो सुनता हूं और शेर व शायरी लिखता हूं और सोशल मीडिया पर रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेता हूं, कभी कभी किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलने आउट ऑफ स्टेशन भी चला जाता हूं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही सही समय आप व्यतीत करते हैं अपने साथ और अपनों के साथ। ये मैसेज है, हमारे ड्यूटी में वर्ष में 10 दिनों का CL अवकाश मिलता है जिसमें मैं अपने फैमिली के साथ भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल भ्रमण में जाता हूँ। अच्छा लगता है, कई जानकारी भी मिलती है और हमारे जीवन और हमारे परिवार जन हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। हीरामणि वर्मा का छत्तीसगढ़ से ये मैसेज आया। वही सही बात है, छुट्टी अगर मिल रही है ना तो उनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। दिनेश कुमार भंडारी का ये हमें मैसेज आया है, मुझे जब भी छुट्टी मिलती है दोस्त को अपने घर में बुलाकर मनोरंजन करता हूँ, खेल खेलता हूँ और बहुत ही मज़ा आता है और खूब सारी बात करते हैं और दूध वाली चाय बना के पीते हैं, मज़ा आ जाता है। भाई बहुत बढ़िया बात है, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरी हर दिन छुट्टी रहती है। हाँ, हर दिन लेखन शौक से खुद को व्यस्त रखता हूँ, कविता शायरी और कई सारे लेख लिखता हूँ, फिर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उन्हें पोस्ट कर देता हूँ और इसी में मैं व्यस्त रहता हूँ। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज है। भाई चलिए, आप अपने साथ साथ और लोगों को भी साथ में इस सब चीज़ों का लुत्फ साथ में इन सबको शामिल करते हैं तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। रितिका का मैसेज है गाज़ियाबाद से, वो लिखती हैं कि मुझे वेकेशन में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। या तो कहीं मूवी देखने चले जाओ या फिर छोटी मोटी जगह कहीं घूमने चले जाओ, बस उनके साथ सबसे बड़ा वेकेशन है मेरे लिए। भाई ये तो बात है कि भाई अगर पतियों को छुट्टी मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आता है, या तो आप पहले से ही प्लान करके रखते हैं या मूवी एक ऐसा ऑप्शन है ना जो आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। विनायक का दिल्ली से मैसेज है, आई वॉन्ट टू रेस्ट एट होम बट बच्चों के लिए निकलना पड़ेगा। ये मैसेज हम तक पहुँचा है। भाई ये तो है कि बच्चों के लिए निकलना पड़ेगा, फैमिली के लिए करना पड़ेगा और फिर कह सकते हैं कि हमेशा बाहर ही रहते हैं ऑफिस के सिलसिले में, लेकिन हाँ, लेकिन बच्चों के साथ फैमिली के साथ जाने का मज़ा कुछ और ही होता है। और ऐसा आप क्यों पसंद करते हैं बाहर जाना वो भी आप हमें बता सकते हैं कि जब भी आपकी छुट्टी होती है, लीव होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि आपको पता है कि अब आपको घर पर रहना है तो फिर आप क्या प्रेफर करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कुछ ऐसी जगह जाते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, क्या कुछ करना पसंद करते हैं, बताइए ना, हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं भी कुछ बताऊंगी कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं क्या करती हूँ। फिलहाल आपसे जानना चाहती हूँ ढेर सारी बातें और यही बातें यहाँ पे चलती रहेंगी, खूबसूरत बातें आप हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।

वैसे कुछ लोग सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि भाई छुट्टी है तो फिर क्या करना है, बस सो जाना है, रेस्ट करना है, बहुत सारा दिमाग चला लिया इतने दिन ऑफिस जाते जाते, कुछ तो ऐसा है कि जो अब अपने लिए कर सकते हैं तो बस यही दिमाग में रहता है, और यही करना कहीं ना कहीं हम पसंद भी करते हैं। ये मैसेज हम तक पहुँचा है। मेरा ऑफिस हमारे निवास स्थान से थोड़ी दूरी पर ही है, और जब भी मॉर्निंग शिफ्ट होती है श्रीमती जी द्वारा हर दिन बेटे के द्वारा लंच ऑफिस में भेज दिया जाता है। मीडिया में कार्यरत होने के कारण रविवार के दिन अवकाश हो हमारा निश्चित नहीं होता। जब भी रविवार के दिन ड्यूटी होती है तो हम विशेष रूप से मना कर देते हैं कि आज लंच मत भेजना, कम से कम एक दिन तो आराम कर लो। यही तो है रविवार के दिन की बात। वैसे भी अवकाश के दिनों में घर के काम बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और उन्हें ही करना मैं जरूरी समझता हूँ। ये मैसेज हम तक पहुंचा है मुल्तानी डांडा से अनिल, उषा टिल्लू और मधु का। भाई ये तो अच्छी बात है, लेकिन अवकाश के दिनों में जरूर

0: भी काम करना होता है, लेकिन कुछ और भी तो कर सकते हैं। वो दिन भर हर रोज़ आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा कुछ अलग हटके कर सकते हैं उनके लिए। पूजा का कर्नाटका से मैसेज आया, मैं अपने फ्री टाइम में घर पे फैमिली के साथ रहना प्रेफर करती हूँ, मम्मी पापा के साथ ढेर सारी बातें करती हूँ, पता ही नहीं चलता कैसे दिन बीत जाता है। वही ये तो बात है। दानिश का मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि मुझे तो गर्मी पर घर पर रहना ही अच्छा लगता है और रेडियो सुनना पसंद आता है, और बस मैं तो यही करता हूँ। अरे और भी तो कुछ करते होंगे। साथ ये कि ऑफिस से छुट्टी मिलती है, बस रिटायरमेंट वाली लाइफ जीना चाहता हूँ। कोई किताब, कोई मूवी, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमंस कम से कम हो, वहाँ रहना चाहता हूँ। ओमकार का ये मोहाली से मैसेज आया है। वैसे ये तो है कि अपने साथ समय बिताने का मन करता है कई बार, पूरे दिन, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस में हो, या जो भी काम आप करते हो, स्टडी आप करते हैं, बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं, बहुत सारा दिमाग चलाते रहते हैं, कहीं होता है एक बार सुकून से बस चले जाएं और खामोशी के साथ बैठ जाएं। या तो फिर वो लोग जो हमें बेहद पसंद है, जिनसे हम डेली भले ही घर में रहते हैं पर बात नहीं कर पाते, तो रहता है कि इनसे भी बात करनी चाहिए। भाई यही तो है हमारे अपने, जिनसे हम ढेर सारी बातें अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगी जिंदगी। तो वो कहीं ना कहीं बूस्ट जो है ना, वो अपने लोगों से ही मिल पाता है। और आप सभी का क्या कहना है कि आप क्या करते हैं जब आपको पास अपनों का साथ हो जाता है? आप भी बता सकते हैं हम कि जब भी आपकी छुट्टी होती है, आप ऑफ लेते हैं या लीव पर होते हैं, तो फिर आप क्या प्रेफर करते हैं? घर पे रहना पसंद करते हैं या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पसंद करते हैं, और क्यों? बताइए 9868107070 पर और जुड़ जाइए हमारे साथ। मुझे लगता है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके पास।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000,
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, आपको एक सिंपल सी कॉफी पीनी हो या फिर एक चाय पीनी हो, जिससे भी आपको सुकून मिलता है वो आप कर लीजिए, अपने के साथ कर लीजिए, या फिर कुछ और कहना चाहते हो तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अपनों के साथ जो सुकून मिलता है, जो आराम मिलता है, वो शायद ही आपको कहीं और मिल सकता है। लेकिन आपका जो सुकून है वो कहाँ पर है, बस वही जानना चाह रही हैं आपसे कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमें बता सकते हैं कि जब भी आपका ऑफ होता है, आपकी छुट्टी होती है या फिर आप लीव पर होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं। आउट ऑफ स्टेशन घूमना बजाना पसंद करते हैं या फिर घर पर ही रहना पसंद करते हैं, तो बस वही जान रहे हैं आपसे। अगर आप अभी अभी सुन रहे हैं तो बताइए, मैं 9868107070 पर मैं हूँ आपके साथ, आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। और ये मैसेज है कि व्हेनेवर आई हैव अ हॉलीडे आई लाइक टू स्टे एट होम, दिस वे आई नॉट ओनली गेट अ गुड रेस्ट बट इट गिव्स मी अ चांस टू प्ले माई पियानो एंड हैव फन विद माई फैमिली, बट व्हेनेवर आई हैव अ फैमिली फंक्शन आई अटेंड दैट फंक्शन ऑल्सो, दिस वे आई मीट माई कजन्स। भाई ये बात है, कजन से मिलना भी एक सुकून से, एक राहत से बड़ी चीज नहीं है। उनसे मिलना मतलब सारी चीजें आसान हो जाना। जब भी फुर्सत मिलती है मैं अपनी फैमिली के साथ किसी कैफे में खाना खाती हूँ और पार्क में बैठकर जिंदगी के कुछ सुकून भरे लम्हे जीते हैं। शमशुल कमर राही का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। उसके अलावा है कि समर वेकेशन में हम ऐसी जगह चुनते हैं जहां ज़्यादा भीड़ ना हो, सुकून से एंजॉय करें। रवि का मेरठ से ये मैसेज हम तक आया। भाई हमें भी बता दीजिए ऐसी वो कौन सी जगह है जहां भीड़ ना हो, जहां हम भी जा सकें। ये मैसेज है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का सोनीपत से, और वो लिखती हैं कि परिवार के साथ घर पर रहना पसंद करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। अरे कभी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, कहीं घूम के आइए, कहीं जाइए और कहीं भी अपने लिए सुकून के पल निकालिए ना, थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठ के बातें शातें कीजिए और फिर उसमें भी एक अलग मज़ा है। ये है, मैं डॉक्टर सुधा दिनकर द्वारका दिल्ली से, मैं छुट्टियों में सबसे पहले सूर्य उदय से पूर्व प्रभात वेला के दर्शन करना चाहती हूँ। सुबह का समय मुझे बहुत ही सुंदर और सुकून भरा लगता है, प्रकृति का ये दृश्य मन को मोह लेता है जो रोज की भाग दौड़ में नहीं महसूस कर पाते हैं, और दिन में घर के काम करने के बाद शांति से सुकून से बैठना, किताबें पढ़ना और अपनी निजी कविताएं लिखना मुझे बेहद पसंद है। मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं अपनी कविताएं लिखती ही रहूं, और ये मेरा प्रिय संदेश अवश्य शामिल करें। भाई देखिए सुधा जी, जो भी हमें मैसेज आते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मैसेजेस आप तक, आपके अपनों तक जरूर पहुंचाएं, और आकाशवाणी की आन बान शान भाई आप ही लोग तो हैं, आप हैं तो हम हैं, और आपके साथ जो जुड़ा हुआ, देखिए परिवार जो साथ में होते हैं ना, तो उसे बताने की जरूरत पड़ती कि आप कितने खास हैं, लेकिन हाँ कभी कभी वो दर्शा देना भी बुरा नहीं होता। तो इसलिए जब भी ऐसे प्रोग्राम आते, चाहे मैसेज मसाला मिक्स हो, चाहे कॉलिंग प्रोग्राम हो, हम सभी को शामिल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेते हैं कि आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हम पर सभी पर बना रहे। और इतने खूबसूरत मैसेजेस अगर आप हमें भेजेंगे तो क्या हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं? ना जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे आप, मैं एकदम बढ़िया हूँ, और यह है कि मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुन रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप बताइए ना हमें कि आप क्या पसंद करते हैं, जब भी आपकी छुट्टी होती है या आप छुट्टी लेते हैं या फिर आप ऑफ पे होते हैं या फिर किसी कारण वजह आपको छुट्टी मिल जाती है तो आप क्या करना पसंद करते हैं, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए 9868107070 पर। फिर मैं भी आपको बताऊंगी भाई मैं क्या करना पसंद करती हूँ। फिलहाल बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपके खूबसूरत मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। लेते हैं आपके मैसेज। ये मेरठ से रूपाक्षी का मैसेज है और वो लिखती है कि छुट्टी वाले दिन ये होता है कि मैं बाजार का खाना खाना पसंद करती हूँ और साथ ही रेडियो सुनती हूँ और फोन पर बात करती रहती हूँ। ये है कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो वही बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा लग रहा है। ये है कि मैं गार्डनिंग करना बहुत पसंद करता हूँ और साथ ही वेजिटेबल्स के दाम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे अपनी गार्डनिंग करना, अपनी फार्मिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कोई अच्छी बात है। और ये है कि अन्य सप्ताह में 2 दिन अवकाश हमें मिलते हैं, अन्य अवकाश के दिनों में ज़रूरी कार्य करने के अलावा जो विशेष कार्य हम करना चाहते हैं उसके बारे में बताना आपको भूल गए थे, इसलिए दोबारा संदेश भेज रहे हैं। तो पहले से ही मन बना लेते हैं कि वो ज़रूरी कार्य क्या है और फिर वो कर लेते हैं। तो भाई वो ज़रूरी कार्य क्या हो तो आपने हमें अभी भी नहीं बताया। मुझे तो घर पर ही रहना अच्छा लगता है, कहीं बाहर जाने का मन करता है तो मैं शॉपिंग करना पसंद करता हूँ। प्रवीण चौहान का मध्य प्रदेश से ये मैसेज हम तक पहुँचा है। समय मिलने पर भ्रमण करने का शौक

है, नई नई जगहों पर जाना है और वहाँ के दर्शनीय स्थलों का दीदार करना और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना मुझे बेहद पसंद आता है। ये है भीवलाल का मैसेज, हमें आया है मध्य प्रदेश उज्जैन से ये मैसेज आया है। तो भाई आप भी अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, क्या क्या पसंद है आपको और क्या क्या करते हैं जब भी आपको छुट्टी मिलती है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि बस आपको छुट्टी मिले और आप वो काम कर ले तो आपका दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है, तो आप भी हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। छुट्टियां होती है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? वैसे अगर मेरी छुट्टी हो, मुश्किल से अगर हमें छुट्टी मिल जाती है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे सबसे अच्छा लगता है सोना या फिर पहाड़ों में जाना, और वहाँ जो सुकून मिलता है, वहाँ जो शांति मिलती है ना, वाकई में सबसे खास, सबसे अलग और बेहद दिल के करीब होती है। तो कुछ वेकेशंस तो लाइफ में ज़रूरी होती है, चाहे आप 2 महीने में एक बार जाएं, चाहे हर महीने जाएं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप क्या करते हैं बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी और बनी रहूँगी आपके साथ में। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमसे, कहिए ना, हम तो हैं ना आपको सुनने के लिए।

आप हमें लिखती हैं कि जब भी वक्त मिलता है तो फैमिली के साथ अपनों से मिलने के लिए निकल जाता हूं, ठीक जैसे मैं आज फरीदाबाद हरियाणा में मिलने आया हूं। पूरे 8 दिनों के लिए यहां पर 2 शादियां अटेंड करने के लिए आया हूं। फारूक अली खान का गुन्नौर यूपी से हमको ये मैसेज भेजा गया है। और इस साथ ही गुड्डू का मैसेज है उज्जैन से, वो लिखते हैं कि मुझे दुकान और खेती से कभी छुट्टी नहीं मिलती है, पर कभी फुर्सत में रहता हूँ तो घर वालों को मनपसंद खाना बनाकर खिलाता हूँ, मुझे खाना बनाना बेहद पसंद है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। और ये है कि मैसेज हमारे पास, एक छुट्टी का दिन, 2 कप मस्त अदरक चाय और वीक की खूब सारी गपशप जो है, गॉसिप जो है, वो हम कर लेते हैं अपने पति के साथ में और इसी से हम खुश हो जाते हैं। मुनमुन का न्यू दिल्ली से ये मैसेज आया है। और ये मैसेज है हमें कृष्ण कुमार मिश्र का, और लिखते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं पूरे दिन घर पर आराम करता हूँ और घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करता हूँ। भाई ये बात तो है कि सुकून के जो पल है ना, वो घर में ही मिलते हैं। एक्स्ट्रा छुट्टी गई तो फिर सोचते हैं कि चलिए बाहर घूम कर आते हैं। सभी दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूं। आज के प्रोग्राम में मेरा मैसेज भी ले लीजिए। मैं नवल हूं गोवा से और छुट्टी के दिन तो घर का छोटा मोटा काम कर लेता हूं और सिर्फ रेडियो सुनता हूं। प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं। भाई और भी कुछ करते हैं या नहीं करते, या फिर घर में आपको डांट भी पड़ती होगी, बस सारे दिन रेडियो सुनते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे? चलिए बेहद अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन और भी कुछ काम जो है ना घर के, वो भी करते रहने चाहिए, वरना फिर ये भी है ना, इन चीज़ों से भी छुट्टी मिल जाती है। पारस का चंडीगढ़ से मैसेज है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। छुट्टी वाले दिन मुझे मूवीज, म्यूजिक और मंदिर जाना बेहद पसंद है और मैच देखना बेहद पसंद है, स्पेशली वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग। और साथ ही साथ मुझे बहुत पसंद है फैमिली के साथ बैठ कर टीवी देखना। तो चलिए ये अच्छी बात है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है ना कि इतना बिजी हो जाते हैं ना, 9 to 5 की जॉब हो सकती है, किसी की 10 to 7 की जॉब हो सकती है, या अलग अलग ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो हो सकते हैं, तो फिर मन करता है कि बस जब भी समय मिले ना फैमिली के साथ बैठकर दिल खोल कर समय बिताया जाए, और कुछ नहीं चाहिए होता। तो चलिए अगर और कुछ अभी आपको नहीं चाहिए ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा क्या रहेगी। 7 बजे आप सुनेंगे देवर्षि रावत के साथ में कंट्री कार्निवल, और फिर 8 बजे लेकर आऊँगी मैं आपके लिए म्यूजिक मस्ती, और फिर आपकी याद आती रही में रहेंगी प्रज्ञा तिवारी आपके साथ। तो ढेर सारी मस्ती का सिलसिला यहां पर जारी है। बहुत सारे काम करते रहिए और प्रोग्रामों में भी अपनी शिरकत जो है वो जरूर शामिल रखिए। आपके सुझाव, आपके फीडबैक बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं, जैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का स्वागत करते हैं। तो फिर कहीं और क्यों जाना है, तो मुक्ति मिलेगी आपसे। अब भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है, मुक्ति जल्द ही मिलेगी आपको।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा

0: सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमार संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जी हाँ, क्या वाकई में आप भी खुलकर जी पा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं दिल में कुछ कसक सी आपकी है? तो बिल्कुल भी इस कसक को ना रखिए और दिल खोलकर झूमिए, दिल खोलकर नाचिए और दिल खोलकर गाइए, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जिंदगी में रुक जाती हैं और फिर लगता है कि शायद ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा, लेकिन चलने का नाम ही जिंदगी है। कुछ सुनहरी यादें बनके हमारे दिलों में कैद ज़रूर हो जाती हैं और वो गोल्डन मेमोरीज ही हैं जो हमें जीने की एक नई राह दिखाती है। तो फिर आप क्यों हैं परेशान, आप क्यों हैं खामोश, हमारे साथ जुड़ जाइए प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में। मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्ज दोस्त मुक्ति सैनी, जो बिल्कुल भी आपको एक घंटे मुक्ति नहीं देने वाली है और चाहती है कि आप भी हमारे साथ बने रहे और इस प्यार की कश्ती में, इस प्यार के रेनबो में आप भी हमारे साथ डूबे रहिए और

झूमते रहिए, गाते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ हमारी है और हमसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। इसे खूबसूरत बनाना, इसे मस्ती में रंग देना सिर्फ और सिर्फ हमारा काम होना चाहिए। तो चलिए एक और प्रोग्राम, जी हाँ, जो आपके लिए आ चुका है म्यूजिक मस्ती, इसमें एक और बेहतरीन से गीत के साथ आपको लिए चलते हैं प्यार की कश्ती में।

से वाकई में देखा जाए तो सौदा तो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि खरा ही खरा है भाई। गर्मियों का मौसम है, ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ रही, ज़्यादा वर्कआउट करना भी नहीं पड़ रहा है और वज़न जो है अपने आप खुद ब खुद कम होता जा रहा है। पसीना ही शरीर से इतना बह रहा है कि बस एसी भी कह सकते हैं कि फेल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, बीच में जो झमझम बारिश हो रही है ना, उससे कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव हो रहा है और कहीं ना कहीं एसी भी बंद हो रहे हैं।

0: और ठंडक का एहसास हो रहा है। लेकिन एक बात तो मानने की, अभी भी कह सकते हैं कि दो तीन दिन जो थोड़ी सी बारिश हुई ना, थोड़ी सी जो गरज के साथ मौसम जो चेंज हुआ है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा तला भुना आपने खा लिया होगा, पकौड़े, जलेबी, चाय और खूब सारे पकौड़े, भजिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाई होंगी। लेकिन अगर गर्मी की बात की जाए ना, तो इस कदर गर्मी है कि हर समय मन करता है कि कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहे, कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहे, ताकि जो बॉडी है वो एकदम तरोताज़ा महसूस करती रहे और ना केवल बाहर से हमें ठंडक हो, अंदर से भी हमें ठंडी का एहसास हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप कर सकते हैं, और ये सौदा भी एकदम खरा है कि आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि आकाशवाणी रेनबो पर जुड़ सकते हैं। और यहाँ का जो सौदा है ना, वो बिल्कुल भी आपको जाया नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक घंटा जुड़ जाते हैं ना म्यूज़िक मस्ती के अंदर या बहुत सारे प्रोग्रामों में, तो आपको बहुत सारी कह सकते हैं कि इंफोटेनमेंट तो मिलता ही है, साथ में इंटरटेनमेंट वो भी आप तक पहुंच ही जाता है, वो भी कहीं आपसे दूर नहीं होता है। तो ऐसा सौदा कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए कोई भी बहाना नहीं है। 102.6 के माध्यम से या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए, पहुंचते रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सॉन्ग्स का सिलसिला जारी रहेगा खास आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

यहाँ हिट तो आप भी हैं, एकदम सुपर हिट हैं, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वहाँ जहाँ पर आपको बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार और प्यार ही प्यार मिलता है, क्योंकि दिल से दिल तक हम पहुँच रहे हैं सीधा आप तक म्यूज़िकली। और तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दूर भी चली जाती हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक यादें जब ताज़ा रहती हैं तो बहुत कुछ दिल को सुकून पहुँचा जाती है। तो बस आपको सुकून इस समय क्या पहुँचा रहा है, ये मौसम, ये वादियाँ, या फिर जहाँ भी कहीं आप घूमने गए हैं? आप कहेंगे भाई घूमने की तो बात मत कीजिए, बस ट्रैफिक जैम में हम अटके हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ये कुछ पल जो आपको रुके हुए मिले हुए हैं ना, तो बस यही है वो आपके पल जहाँ पर आप सोच सकते हैं और अपने संयम का कह सकते हैं ना कि आप ये दिखा सकते हैं कि आप में कितना संयम है और आप कितने धैर्य के साथ जीवन को जीते हैं, कितने धैर्य से आप चलते हैं। क्योंकि अगर आप गुस्सा भी होंगे, जल्दबाजी भी करेंगे, किसी पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो भी जितना टाइम लगना है उतना तो लगना ही है। तो जो टाइम आपका है ना, बस उसमें खुशी के साथ जीना है। मुझे पता है कि भाई कहना बहुत आसान होता है लेकिन उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार जल्दी कहीं पहुंचना भी होता है। मुझे लगता है अगर कहीं जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए समय रहते निकल जाना चाहिए, और कहते हैं ना वो बफर टाइम लेकर तो ज़रूर निकलना चाहिए। आप कहेंगे भाई 15 मिनट का बफर टाइम लिया था, इससे ज़्यादा क्या, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि पीक टाइम कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में लेकर चलते हैं, और कहीं ना कहीं जब रोड पर आते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सामने आती है, और कोई हमें देख के हंसता है तो कोई देखता है कि अरे वो इतना गुस्सा क्यों, क्योंकि घर से लड़के आया होगा। तो ये सब बातों को ना चिढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि इसको दरकिनार कीजिए कि ठीक है सबके लिए ऐसा ही कहा जाता है, शायद हम किसी के लिए करेंगे तो कोई हमारे लिए ऐसा कहेगा, और किसी के लिए हम ऐसा करेंगे तो कोई हमारे लिए ऐसा कहेगा। तो कुछ ना कुछ ये जीवन में चलता रहता है, कहते हैं साइकिल की तरह ही चल रहा है और गोल गोल गोल गोल घूमता रहेगा, बस हमको भी इसी चक्कर में घूमना है। लेकिन कुछ अलग अगर आप करना चाहते हैं तो अलग यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी चीजें ऐसी कीजिए कि बस दिल को लगे कि यही सुकून है, यही वो पल है जो सिर्फ हमारा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा पल है जो आपका है, आपका अपना है? अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया ना तो जल्द ही आपको समझ में आ जाएगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 में हूँ आपके साथ, आपके अर्जित दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में और जबरदस्त चल रही है, मस्ती है ना। चलिए भाई, आपकी तरफ से मैंने बता दिया और अगर नहीं भी चल रही तो भी आप बता सकते हैं भाई। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जबरदस्त इस मस्ती को पहुंचाते रहें आप तक। और ये जो एक घंटा है ना, सिर्फ आप अपने साथ बिताएं, कुछ भी ना सही तो थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को थिरका लेंगे ना, थोड़ा सा आप नाच लेंगे तो वो भी पूरे दिन की जो एक्सरसाइज है उसमें काउंट कर लिया जाएगा। ये सुनकर खुशी हुई ना, बस खुश रहना है आपको। परेशान करने के लिए पूरी दुनिया है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके दिमाग को लगातार चलाती रहेंगी, बेफिजूल चलाती रहेंगी, लेकिन आपको अपने फ्यूल को बराबर रखना है, अपने दिल को खुश रखना है। और मैं आपको बता देती हूँ आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा। अब आप सुनेंगे 9 बजे आपकी याद आती रही प्रज्ञा तिवारी के साथ, फिर आप सुनेंगे 10 बजे प्रोग्राम रहेगा रेनबो शोकेश, और उसके बाद 11 बजे का समय रहेगा रंगे महफिल, प्रज्ञा रहेंगी आपके साथ में। तो फिलहाल कहना मैं ये चाहती हूँ कि मुक्ति सैनी को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: FM Rainbow.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाना

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रज्ञा तिवारी को, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। आई होप कि आपको गाने अच्छे लग रहे हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

और आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर धीरे धीरे समय हो गया है 9:57 यानी हमारे अगले प्रोग्राम के आने का टाइम और मेरा यानी प्रज्ञा तिवारी का अगले एक घंटे के लिए जाने का टाइम। अभी आपसे मिलेंगे देवर्षि रावत, प्रोग्राम होगा रेनबो शोकेस। मैं मिलती हूँ एक घंटे बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारी के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने

भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Alrighty, that was George Michael performing live at Wembley Stadium. That was Somebody to Love. Time right now is 10:32 and we'll be right back after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Alrighty, we guys are back again on the show Rainbow Showcase, and yes, tonight we are showcasing the artist, the legend George Michael. And yes, George Michael, after going solo, continued his success in the 1990s with amazing and critically acclaimed albums like Listen Without Prejudice, Volume 1. Which featured the hit track Freedom 90. That's the first track that you just heard at the beginning of the show right now. And up next is going to be another track, beautiful track from 1984, which is Freedom. And it's from the album Make It Big.

0: There we go. That was Sir Elton John and George Michael, a beautiful duet over there. Don't Let the Sun Go Down on Me. And we'll be right back after these messages. Don't go anywhere.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के

12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर वक्त हुआ है 10:09, यानी वक्त हुआ है गजलों की गुनगुनाहट का, प्रोग्राम रंगे महफिल का। तो आइए हाथ पकड़ के साथ चलते हैं इन गजलों के। मैं प्रज्ञा तिवारी और

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। गजलों का दौर जारी है। बेगम अख्तर की आवाज़।

आपसे लूंगी इजाजत, पर गानों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मेरी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी बात अगले सोमवार रात 9 बजे FM रेनबो पर। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की गालिबाना धुनों पर। प्रगति वाड़ी की तरफ से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान तेज करने के साथ बेरूत में नए हवाई हमलों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध में एक बड़ा मोड़ बताया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी दी गई है। मौसम

विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करेकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 12:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में कितने दिनों के बाद मिले हो। आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो मेरे यानी अलचित के साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: 12:36 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

12:57 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे जीरो आवर शो। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कार्यक्रम सुहानी रात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज एक बार फिर से आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

कुमार सानू जी की आवाज में अब तेरे बिन जी लेंगे हम। 1:12 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: 1:28 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: मिल गया है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी

अयामा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना UBT को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। ये समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ। 2:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भुलाए ना बने।

कार्यक्रम भुलाए न बने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस प्रोग्राम को लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं, आपका दोस्त अर्चित। कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें जो गाने आप सुनते हैं वो कभी

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 2:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए ना बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: दो बजकर 50 मिनट हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अर्चित के साथ।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के

प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए दो अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करिकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज़ का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ, समय छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अय

और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों की गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जाँच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस

साझा किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्शी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। किसी एक स्थान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का असर सभी मोर्चों पर पड़ेगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है, प्रातः के 5:05 और 6 मिनट। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।